मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेब ओटीटी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 की श्रावण मास की चौथी तिथि, तदनुसार दिनांक 26 जुलाई 2026 ईस्वी। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 5:56 और 46 सेकेंड हो रहे हैं। आरंभ हो रही हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपे ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजीपे प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव

0: कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवा जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है सामयिक कृषि कार्य। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम सामयिक कृषि कार्य की चर्चा करेंगे। अगर आप शकरकंद की खेती करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं। इसकी बेलों की रोपाई का समय जुलाई माह से लेकर अगस्त माह तक होता है। गन्ना की खेती के लिए भुरभुरी बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2-3 जुताई देसी हल से करके खेत को तैयार कर लेते हैं। इसकी अच्छी खेती के लिए 100 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद खेत में थोड़ा पहले मिला देते हैं। इसके अतिरिक्त अंतिम जुताई के समय 30 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दे देना चाहिए। खेत तैयार हो जाने के बाद 45 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़े बना लें और फिर इन्हीं मेड़ों पर शकरकंद की बेलों को लगाएं। मेड़ पर एक बेल से दूसरे बेल की दूरी 30 सेंटीमीटर

0: रखनी चाहिए। बेल को सीधे नहीं लगाया जाता, बल्कि इसके 30 से 45 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लें। ध्यान रहे कि एक टुकड़े में कम से कम 4 गांठें हों। टुकड़ों को इस तरह लगाएं कि टुकड़ों का अंतिम सिरा जमीन में दबा हो तथा बीच में दोनों गांठें जमीन से बाहर हों। फिर रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। शकरकंद की जो प्रजातियां हैं वह हैं पूसा लाल, पूसा सफ़ेद, पूसा सुनहरी, FA17, AH41 और H42। इनमें से जो प्रजाति मिल जाए लेकर के बुआई करें। धान की फसल में खैरा बीमारी का प्रकोप हो जाता है। यह जस्ते की कमी के कारण होता है। जस्ते की कमी के लक्षण पौधों के ऊपरी भाग, दूसरी या तीसरी पूरी तरह परिपक्व पत्तियों से प्रारंभ होते हैं। पौधों की बढ़त रुक जाती है और पौधे छोटे रह जाते हैं। तने के ऊपरी हिस्से में गांठें नज़दीक बनने लगती हैं तथा पत्तियों पर छोटे छोटे पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जो कि बाद में बड़े होकर आपस में मिल जाते हैं तथा फसलों में बालें देर से निकलती हैं। जब निश्चित हो जाए कि धान में जिंक की कमी है तो फिर इसको नियंत्रित करना चाहिए। इस हेतु हम जिंक सल्फेट प्रयोग करते हैं। इसे या तो रोपाई के पहले खेत में मिला देते हैं या तो खड़ी फसल में छिड़काव करते हैं। अगर रोपाई से पहले खेत में मिला रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से खेत में मिलाना चाहिए, और यदि खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं तो 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 8 किलोग्राम यूरिया को 400 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। जो धान पहले रोपे गए हैं उनकी देखभाल बहुत ही आवश्यक है। अगर खेत में नमी की कमी हो तो उसमें सिंचाई की व्यवस्था जरूर करें। कल्ले फूटते समय भी खेत में पर्याप्त पानी होना चाहिए। इसके अलावा धान की फसल में निकाई गुड़ाई करके खरपतवार भी निकालते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खरपतवारों के कारण फसल को काफ़ी हानि होती है। यदि रासायनिक दवाओं से खरपतवार नष्ट करना चाहते हैं तो 2-4 D ईस्टर दवा प्रयोग करनी चाहिए। इसकी 400 ग्राम मात्रा को 300 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। फिर 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से रोपे गए धान में कल्ले बनते समय बुरका करना चाहिए। इस समय मध्यकालीन फूलगोभी की खेती कर सकते हैं। इसके बेहन डालने का समय जुलाई माह से अगस्त माह तक होता है। इसकी जो किस्में हैं वह हैं अर्ली स्नोबॉल, जायंट स्नोबॉल, हिसार 1, पंजाब जायंट 26 और पंत शुभ्रा। एक हेक्टेयर खेत की रोपाई के लिए 700 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई के लिए क्यारियां बनानी पड़ती हैं। यदि एक हेक्टेयर रोपाई हेतु बेहन तैयार करना है तो 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी तथा 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी 5 क्यारियां बना लेते हैं। इन क्यारियों में 15 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर खेत तैयार कर लेते हैं। जब पौध तैयार हो जाए तो फिर रोपाई करनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर सामयिक कृषि कार्य करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था सामयिक कृषि कार्य, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

भक्ति कभी न छोड़िए चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में है परम सुख, यही है सब वेदों का सार।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आवाजें थी हरिहरन, संजय तलवार और जगजीत सिंह की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हो चुके हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय है नैतिक मूल्य।
1: जो दुर्दशा व्याकरण विहीन भाषा की एवं व्यायाम विहीन शरीर की योग विहीन मनोबल की पाई जाती है, वही स्थिति नैतिक मूल्यों से विहीन जीवन की होती है। रुचि और नैतिकता में कुछ लोगों को टकराहट दिखाई देती है, पर रुचि को कुरुचि बन जाने से बचाते हुए उसे सुरुचि रूप में पुष्ट और तृप्त करने का उत्तरदायित्व नैतिक मूल्य वहन करते हैं। अनीति से अन्याय बढ़ता है और अन्याय से पतन, पराजय, विपन्नता के अपमान भरे दुर्दिनों से जीवन काटे नहीं करता। पर जितना भी अंधेरा क्यों हो, नैतिक मूल्यों से जुड़ जाते ही साहस का गांडीव कर्मठ हाथों में आ जाता है। प्रयत्नों की बाण वर्षा

0: आरंभ हो जाती है और प्राप्तियों का धनंजय नीति सम्मत योद्धा बन जाता है। व्यक्ति के शून्य से शिखर का सेत इस प्रकार नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्यों के ही भूखे विश्व के सारे धर्म, दर्शन, सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्थाएं हैं। नैतिक मूल्यों के समर्थक एवं व्यवस्थापक होकर छोटे से छोटे राज्य और उनके सूत्रधार विशाल साम्राज्य निर्माता एवं इतिहास निर्माता तक बन जाते। चाणक्य ने नैतिक मूल्यों को पहचाना था, गांधी ने नैतिक मूल्यों की ऊर्जा को जाना था और नैतिक मूल्यों की दुराधर्श क्षमताओं ने गांधी के नैतिक मूल्यों वाले नेतृत्व में एक ऐसे साम्राज्य को उसका सूर्यास्त दिया जिसके पास सूर्योदय ही सूर्योदय था। दो व्यक्ति एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ समान अन्न जल हवा रोशनी का उपयोग करते हैं, एक ही समय भी उनके पास होता है, किंतु एक दस्यु हो जाता है, एक संत महापुरुष बनकर युग का उद्धारक कहा जाता है। यह भेद कैसे हो जाता है जीवन की समानता में? नैतिक मूल्यों के अभ्यास से चराचर प्रेम में लेकर एक गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध बन गए और नैतिक मूल्यों के आचरण से दूर जा पड़ा दूसरा अंगुलिमाल बना। इस अंगुलिमाल को भी पुनः मनुष्यता का भिक्षुक नैतिक मूल्यों का तथागत ही बनाता मिलता है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, कवि और कर्णधार के रूप में सम्मानित हो जाना ही मानसिक सुख शांति नहीं प्रदान कर सकता। यदि नैतिक मूल्यों की थाती नहीं संजोई है उस लोक साधक ने अपने जीवन में, नैतिक मूल्यों के अभ्यास से जीवन सरस, शीतल, सुखी, समृद्ध, संपन्न और विनम्र होता है। वह बौद्धिक कुशाग्रता किस काम की जिसमें नैतिक मूल्यों का लावण्य, निष्ठा, आस्था, समर्पण और सेवा की लगन न हो। नैतिक मूल्यों मूल्य का आधार नीति और धर्म है, नीति गतिशीलता की ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को धारण करने वाला धर्म होता है। नीति ही आत्मोन्नति का संस्रोत है। आज के समाज शास्त्रियों एवं विधि शास्त्रियों की राय में नीति और कानून में भेद है। कानून का उल्लंघन राज्य द्वारा दंडनीय है, जबकि नैतिकता के उल्लंघन पर राज्य का कानून उतना हस्तक्षेप नहीं कर पाता। पर विधि शास्त्रियों की ये अवधारणा प्राकृतिक न्यायपूर्ण राज्य की नैसर्गिक कसौटी पर वर्तमान में अस्कृत कर दिया है और इकोलॉजी की चुनौतियों ने घोषित किया है कि नैतिक मूल्य खोकर मानव ने अपने परिवार, समाज, देश, दुनिया के चराचर के कानूनों को ही तोड़ना आरंभ किया है, जिसकी सजा है प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, अनावृष्टि, अतिवृष्टि के बीच बर्बरता का विकास। अतः विधि व्यवस्था का सम्मान भी नैतिक मूल्य के अभ्यास से ही संभव है, दंड के थाप से नहीं। नैतिक मूल्यों में आस्था से विधि व्यवस्था के सम्मान पर स्वर्णिम युगों का श्री गणेश होता आया है। अतः नैतिक मूल्यों के अभ्यास द्वारा जीवन में इनका व्यवहार करते हुए हम अपनी सच्ची भारतीयता का प्रमाण विश्व रंगमंच पर प्रस्तुत करें, क्योंकि नैतिक मूल्य ही उत्पीड़ित मानवता का उपचार है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय था नैतिक मूल्य। आलेख और स्वर था श्री नरेंद्र राम त्रिपाठी का। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय है दांतों का प्रत्यारोपण कब और कैसे। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ठाकुर प्रसाद चतुर्वेदी।
2: अभी पिछले अंक में बात किए थे कि हम लोग दांत डेंटल इम्प्लांट क्या होता है। देखिए, डेंटल इम्प्लांट एक दांतों की संरचना जो दांतों की हड्डी में उसको इंसर्ट कर देते हैं। टाइटेनियम का मेटल होता है और इसी के ऊपर हम लोग दांत लगाते हैं, उसको फिक्स करते हैं। मान लीजिए कि पूरा, कई लोगों के पूरे जबड़े में दांत नहीं है या एक या दो दांत नहीं है, तो जनरली क्या होता है, अगल बगल के दांत के सपोर्ट से हम ब्रिज लगाते हैं। लेकिन अगर अगल बगल के सपोर्टिंग नहीं है और अच्छी सपोर्ट नहीं करते हैं ब्रिज लगा के या फिक्स वाले दांत, तो फिर हम ये मेटल वाले दांत लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, और इसी को डेंटल इम्प्लांट या दांतों का प्रत्यारोपण कहते हैं। और डेंटल इम्प्लांट लगाने के लिए ऐसा

0: कि आप आए हैं दंत चिकित्सक के पास, और तुरंत तो लगा देगा। ऐसे में हम लोग देखते हैं कि उसकी क्या हड्डी कैसी है, हेल्दी है या नहीं। जनरली ये देखा जाता है लोअर जॉ का या नीचे वाले जबड़े की हड्डी थोड़ा सा मजबूत होती है, अपर वाले जबड़े की हड्डी थोड़ा सा उतनी मजबूत नहीं होती है। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि हड्डी की मजबूती क्या है। एक तो पहला ये देखते हैं हड्डी की मजबूती, दूसरा ये देखते हैं कि उसको कोई और आदत नहीं है, जैसे जो स्मोकिंग करता हो या टोबैको खाते हो, टोबैको का कोई किसी भी फॉर्म में उपयोग करते हैं। ऐसे में देखिए डेंटल इम्प्लांट लगाना या दांतों का प्रत्यारोपण में बड़ी सफलता हम लोगों को नहीं मिलती है। या उसको ये हो, अगर उसको शुगर हो गया, शुगर की बीमारी, डायबिटीज जो कहते हैं, जिसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो हम लोग लगा तो देते हैं लेकिन उसको शुगर को बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं तो उसके मुंह में कभी कभी छाला या सफेद दाग हो जाती है। ऐसे चीजों में हम लोग लगाने को दिक्कत होती है, हम लोगों को डेंटल इम्प्लांट को बड़ा सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों के ओरल कंडीशन जो मुंह के अंदर वाले स्वस्थ एकदम मसूड़ा चाहिए, तभी हम डेंटल इम्प्लांट लगा सकते हैं। एकदम क्लियर बात होनी चाहिए कि अगर आपके स्वस्थ मसूड़े हैं, कोई आदत आपको नहीं है जो खराब, जो दांतों और मुंह के स्वास्थ्य को खराब करती हो, तब हम लोग डेंटल इम्प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। और कोई और बीमारी ना हो, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हार्ट की बीमारी या हाइपरटेंशन इस तरह की बीमारी हो, तो ऐसे में लगाया तो जा सकता है डेंटल इम्प्लांट, लेकिन बहुत ज्यादा प्रिकॉशन करते हैं। कभी कभी लोग हम लोगों के पास आते हैं, जैसे 80 साल या 85 साल के लोग हैं, उनको डेंटल इम्प्लांट लगवाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग उस उम्र में भी लगा सकते हैं, लेकिन बस और कोई बीमारी नहीं हो। लेकिन ज्यादातर उस उम्र में कोई ना कोई बीमारी होती है जिससे उनमें दिक्कत होती है। तो डेंटल इम्प्लांट लगाने के लिए हम लोगों को एक्सरे करना पड़ता है, तो एक्सरे से देखते हैं हम लोग की बोन की कंडीशन कैसी है। फिर अब जैसे डेंटल इम्प्लांट ऊपर या नीचे जबड़ों में लगाते हैं, तो वो देखते हैं कि 2 या 4 नीचे लगा देते हैं, उस पर पूरा एक डेंचर बना देते हैं जिसमें 16 दांत नीचे होते हैं, 16 के बजाय 14 दांत नीचे होते हैं और 14 दांत ऊपर होते हैं, अगर पूरे मसूड़ों में कोई दांत नहीं है तो। तो हम लोग ऊपर या नीचे का जबड़े लगा के, तो जैसे 2 या 4 ऐसा लगा देते हैं, उसके ऊपर एक अबेटमेंट होता है, अबेटमेंट के ऊपर हम लोग दांत चिपकाते हैं और दांत नॉर्मल होता है। ऐसे में ऊपर या नीचे का दांत पूरा फंक्शन करता है। कभी कभी क्या होता है, आगे किस केवल सब मान लीजिए कि एक दांत नहीं है, एक दांत नहीं है तो उसके 2 ऑप्शन होते हैं या 3 ऑप्शन फिर हम कहते हैं। एक ऑप्शन क्या हुआ कि अगर हम दांत एक निकाल दिए तो फिर उसमें हम लोग एक दांत या ये दांत निकला हुआ है तो उसमें एक रिमूवल निकालने लगाने वाला, जो कि अच्छा नहीं मानते हैं आगे वाले दांतों के लिए स्पेशली, या तो उसमें हम फिक्स वाले लगा दें, अगल बगल के दांतों को घिस के लगाना सकता है, या तीसरा एक ऑप्शन होता है कि हम लोग डेंटल इम्प्लांट। तो कभी कभी एक दांतों में भी इम्प्लांट, एक दांत के लिए भी लगाते हैं, 2-4 दांतों के लिए भी इम्प्लांट लगाते हैं, और कई दांतों के जो जगह होती है, कई मुंह में सारे दांत नहीं है तो उनके जगह पे कई इम्प्लांट ऊपर और नीचे लगाते हैं। कभी कभी 2-2 ऊपर 2 नीचे पे पूरे डेंचर आ जाता है, नहीं तो कभी कभी 4-2 जैसी जरूरत होती है। दंत चिकित्सक डिसाइड कर लेता है कि कहाँ से कैसे हम लोगों को सपोर्ट मिले। और दांत निकालते हैं तो उसमें जो दांत मतलब जो इम्प्लांट लगाते हैं, इम्प्लांट अपने आप जो मटेरियल होता है टाइटेनियम का इम्प्लांट, वो हड्डी में ऐसा टाइटेनियम ऐसा मटेरियल होता है कि जो हड्डी में प्रॉपर ढंग से एडजस्ट कर लेता है। तो उसकी वजह से लोग सोचते हैं कुछ ऐसा तो नहीं हो जा रहा है कि हम इम्प्लांट लगाएं, सर्जरी करवाएं, कुछ हमारे हड्डी में तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ये सब नहीं होता और ये पूरी तरह से सुरक्षित होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय था दांतों का प्रत्यारोपण कब और कैसे करें। विशेषज्ञ थे डॉक्टर ठाकुर प्रसाद चतुर्वेदी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ।

श्री राम की कोई भी सीख, कोई भी तर्क लक्ष्मण के उनके साथ वन जाने के संकल्प को नहीं टिका सका, तो श्री राम को समर्पित छोटे भाई की अनुनय विनय माननी पड़ी।

तब उन्होंने लक्ष्मण से जाकर माता की अनुमति ले लेने को कहा। हर्षित हृदय से लक्ष्मण माता के पास पहुंचे और उन्हें विस्तार से सब कुछ कह सुनाया। घटना चक्र की गति से माता सुमित्रा इस प्रकार सहम गई जैसे जंगल में लगी आग से हिरनी भयभीत हो जाती है। कैकेयी की करनी पर उन्होंने अपना सिर पीट लिया। श्री राम तथा सीता के प्रति लक्ष्मण के प्रेम और आदर तथा समर्पण की भावना से वो भली भांति परिचित थीं। बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता हैं और तुम पर अथोर स्नेह रखने वाले श्री राम तुम्हारे पिता के समान हैं। जहां उनका निवास हो वही अयोध्या है। यदि वे वनगमन करें तो तुम्हारे यहां होने का कोई अर्थ नहीं है। गुरु, पिता माता, भाई देवता तथा स्वामी की प्राणपण से सेवा करनी चाहिए। जो भी पूजनीय तथा प्रिय लोग हैं वे केवल राम के कारण पूज्य और प्रिय हैं। अतः श्री राम और सीता के साथ वन जाओ और जीवन को सार्थक करो। मैं बड़भागी हूं जिसके पुत्र का श्री राम चरणों में ऐसा अनुराग है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं, अतः वन में तुम पूरी निष्ठा, मन, वचन और कर्म से उनकी सेवा करना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आज के गायक कलाकार थे ए हरिहरन और वाणी जयराम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। रात्रि 10 आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा और सुबह 11 आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7:31 पर आप

0: सुनेंगे गायन। आज के कलाकार होंगे पंडित बाला साहब पुंछवाले। रात्रि 9:30 पर आज आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम मंजुमन। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 8 बजे आपके लिए हम लेकर आएंगे आबिदा परवीन का सूफी गायन। शाम 6:30 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम आप सुनेंगे कृषि जगत, जिसमें आज की बातचीत का विषय होगा टमाटर की खेती से अधिक आय कैसे करें। इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर जगीश कुमार तिवारी से दिनेश कुमार सिंह। इसी में श्रोता सुनेंगे पारसनाथ बाग और साथी के गाय लोकगीत। इन्हीं के गाय लोकगीतों को श्रोता सुन सकेंगे 9:50 पर भी। युवा साथियों का कार्यक्रम युवावाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:15 से, जिसमें आज आप गीत संगीत के साथ सुनेंगे यूथ डायरी, युवावाणी क्विज, रोजगार सूचना और विश्व घटना चक्र। शाम 5 बजे बच्चों का कार्यक्रम हम लेकर आएंगे बाल गोपाल। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम, जिसमें आज की बातचीत का विषय है निसंतानता यानी इनफर्टिलिटी। इस विषय पर बातचीत करेंगी डॉक्टर श्रुति उपाध्याय से शिखा श्रीवास्तव। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:50 पर रसरंग में, 8:15 पर रसमाधुरी में, शाम 6:10 और 10:30 से। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम। आज की प्रस्तुति होगी सना सलीम और अरुण पांडे की। दिन 1:15 पर आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे लोकरंग। 8:45 पर सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हम लेकर आएंगे मधुरिमा। और गुड मॉर्निंग बनारस का प्रसारण समय होगा 7:00। दिन 1:15 पर आज इतवार है के अंतर्गत आप सुनेंगे झलकी हो जाने दो शादी। लेखक हैं गुलाब सिंह और प्रस्तुतकर्ता होंगे डॉक्टर वरुण श्रीवास्तव। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे हेलो फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति होगी अरुण पांडे की। समय होगा 12:00। सामुदायिक गान शिक्षा पाठ शिक्षा के अंतर्गत आप सुनेंगे 10:10 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे उड़िया गीत। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः स्वपदात् त्यागपत्रं दत्त्वा तत् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने समर्पितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री प्रधानः अवदत् यत् गत 10 दिनेषु छात्राणां विरोध प्रदर्शनानन्तरं उत्पन्नया परिस्थित्या सः अत्यन्तं व्यथितः अभवत्। एतद् स्वस्य प्रतिष्ठायाः विषयः नास्तीति इत्यपि तेन उक्तम्। असौ नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले विद्यमानां स्थितिं समग्रदेशस्य परिस्थितिं चावलोक्य निर्णयम् अकरोत्। श्रीप्रधानः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मार्गदर्शनाय विश्वासाय निरन्तरसहयोगाय च कृतज्ञतामपि प्रकटितवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् राष्ट्रसेवा तस्य जीवनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति, सहैव जीवनपर्यन्तं तस्यै

0: समर्पितः भविष्यति इति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः केन्द्रीय मंत्री परिषदः धर्मेन्द्र प्रदानस्य त्यागपत्रं तत्क्षणप्रभावेण स्वीकृतवती। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी नूतन शिक्षा मंत्री भविष्यति। वर्तमान दायित्वेन सह शिक्षा मंत्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्ट।
0: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया रोमानिया देशानां आधिकारिक यात्रां सम्पन्नं कृत्वा अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यागतवती। अस्यां यात्रायाम् अनेकानि ऐतिहासिक सोपानानि स्थापितानि, तेषु कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया देशयोः प्रथमा आधिकारिकयात्रा, सहैव त्रिदशकानन्तरं रोमानिया देशस्य प्रथमा आधिकारिकयात्रा सम्मिलिता अस्ति। समग्रयात्रावधौ राष्ट्रपति पदासीना मुर्मुः विभिन्न देशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयवार्ताः अकरोत्। व्यापार मंचान संबोधितवती तथा भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्यैः सह संवादमपि अकरोत्। प्रशासनं श्वः लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतत् विधेयकं सोमवासरस्य लोकसभा कार्यसूचौ समाविष्टम्। एतेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनं भविष्यति। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतत् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। उल्लेखनीयमस्ति यत् गतशुक्रवासरे केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोग प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिषु च कठोरतर दण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्ने 11 स्वीय मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य इदं 37-100 संस्करणं भविता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनं प्रधानमंत्री कार्यालयः सूचना प्रसारण मंत्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं 4:30 दृश्य श्रव्य परांतरजालीय माध्यमेन 26,000 विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य सहभागिभिः सह संवादं साधयिष्यति। 20-20 पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन त्रिस्पर्धात्मक श्रृंखलायाः द्वितीय क्रीडायां जिम्बाब्वे दलं 90 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

हेलो हाय नमस्कारम सुप्रभातम गुड मॉर्निंग बनारस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त और चकाचकना। मैं भी आज की आपकी मॉर्निंग साथी शुचि एकदम बढ़िया और मस्त हूँ। और रविवार की इस खुशनुमा सुबह में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज है 26 जुलाई, यानी जुलाई महीने का आखिरी रविवार। देखते ही देखते एक और महीना अपनी खूबसूरत यादें समेटने की तैयारी में है, लेकिन उस से पहले इस सुबह को मुस्कुराहटों, मस्ती और पॉजिटिव एनर्जी

जिसे भर देना तो बनता है ना। तो अगर अभी अभी आपकी आंख खुली है, कोई चाय की पहले चुस्की ले रहा है, कोई मॉर्निंग वॉक पर है, कोई छत पर ताजी हवा का आनंद ले रहा है, या फिर कोई अभी भी सोच रहा है कि 5 मिनट और सो ले, तो जनाब बस एक काम कीजिए, अपने रेडियो या मोबाइल सेट का वॉल्यूम फुल कर लीजिए, क्योंकि बज गए हैं सुबह के 7 और शुरू हो गया है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम द वन एंड ओनली गुड मॉर्निंग बनारस। गुड मॉर्निंग। दोस्तों, कहते हैं कि हर सुबह अपने साथ एक नया संदेश लेकर आती है, बीते हुए दिनों की थकान पीछे छोड़ने का, नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने का और उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने का जिन्हें हम अक्सर

करने का और उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने का जिन्हें हम अक्सर भागती दौड़ती जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। और ये संडे का दिन तो वैसे भी अपने लोगों के साथ कुछ पल बिताने, खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालने और मन को सुकून देने का दिन है। और दोस्तों, सुकून की बात हो ही रही है तो आज चलिए आपको घाटों की श्रृंखला में हम अपने अगले घाट की ओर ले चलते हैं।

दोस्तों, काशी के घाट न केवल गंगा तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं, बल्कि जीवन के एक अलग अलग अध्यायों के साक्षी भी हैं। कुछ घाट उल्लास का उत्सव हैं, तो कुछ हमें जीवन का सबसे गहरा सत्य समझाते हैं। और आज हम घाटों की श्रृंखला में जा पहुंचे हैं हरिश्चंद्र घाट पर। चलिए आज आपको इस घाट के इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। हरिश्चंद्र घाट काशी के दो प्रमुख मोक्ष घाटों में से एक है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार अयोध्या के सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए यहीं स्वयं को बेच दिया था, जिसके कारण इस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट पड़ा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचा था। मान्यताओं के अनुसार राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे, जो सत्य एवं धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा वाले शासक थे। इसीलिए उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा को एक स्वप्न दिखाया, जहां राजा ने देखा कि उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य एक ब्राह्मण को दान दे दिया। उसी दिन सुबह होने पर ऋषि विश्वामित्र 1100 ब्राह्मणों के साथ राजा के महल में भोजन करने के लिए पहुंचे। तब राजा को अपना स्वप्न याद आया। ऋषि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उन्हें कई कष्टदायी परीक्षाओं से गुजारा, जिसमें राजा ने ऋषि से जो भी प्रतिज्ञा की थी उसमें उन्हें अपनी समस्त संपत्ति और अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। विश्वामित्र को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उन्हें अपने पत्नी रानी तारामती और पुत्र रोहित को दास के रूप में बेचना पड़ा। अंततः हरिश्चंद्र को स्वयं काशी में दास के रूप में बेच दिया गया। यहाँ हरिश्चंद्र का कर्तव्य प्रत्येक दाह संस्कार के लिए शुल्क एकत्र करना था। उनके कष्टों का सबसे दुखद क्षण तब आया जब उनके अपने पुत्र रोहित की सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई। रानी शैव्या, जो अब एक निर्धन दासी थी, अपने पुत्र के शव को शमशान घाट लेकर आई। दाह संस्कार का शुल्क चुकाने के लिए उनके पास धन नहीं था, इसलिए स्वामी के प्रति अपने कर्तव्य से बंधे हरिश्चंद्र अपने पुत्र का दाह संस्कार आवश्यक शुल्क के बिना नहीं होने दे सकते थे। उन्होंने तारामती से शुल्क चुकाने के लिए अपना मंगल सूत्र या अपनी साड़ी का एक हिस्सा बेचने को कहा। इतनी बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी के बावजूद अपने वचन और कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से द्रवित होकर देवता ऋषि विश्वामित्र के साथ प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि उनकी परीक्षाएं उनके धर्म की दिव्य परीक्षा थी। उनके पुत्र को जीवन दान मिला और उनका संपूर्ण राज्य और यश उन्हें वापस मिल गया। त्याग, सत्य निष्ठा और सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य के प्रति दृढ़ निष्ठा की इस मार्मिक गाथा ने राजा हरिश्चंद्र को अमर कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जिस शमशान घाट पर उन्होंने सेवा की, वही स्थान अब हरिश्चंद्र घाट के नाम से जाना जाता है। प्राचीन साक्ष्यों एवं विद्वानों के उल्लेखों के आधार पर ये पता चलता है कि प्राचीन काल में काशी क्षेत्र 80 से लेकर राजघाट तक सीमित था एवं उस समय काशी का शमशान वर्तमान

वर्तमान संकटाघाट क्षेत्र में स्थित था। काशीखंड के उल्लेखों के अनुसार यही शमशान हरिश्चंद्र की परंपरा से संबंधित माना जा सकता है। समय के साथ काशीनगर का विकास एवं विस्तार जब दक्षिण की ओर बढ़ा तब संकटाघाट स्थित शमशान को वर्तमान हरिश्चंद्र घाट पर स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, हरिश्चंद्र घाट हमें सिर्फ काशी की पहचान ही नहीं बताता बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य भी सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। इसीलिए हर पल को प्रेम, करुणा और अच्छे कर्मों से भर देना ही सबसे बड़ी साधना है। हे बनारस, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। और अब चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज के खास दिन के बारे में। खास दिन इसलिए क्योंकि आज है कारगिल विजय दिवस, एक ऐसा दिन जब पूरा देश गर्व से कहता है हमारे सैनिक हैं इसलिए हम सुरक्षित हैं। साल 1999 कारगिल की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां, मुश्किल हालात, लेकिन भारतीय सेना का हौसला उन पहाड़ों से भी ऊंचा था। अपने अदम्य साहस, अटूट संकल्प और मातृभूमि के प्रति समर्पण के बल पर हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और 26 जुलाई सन 1999 को एक बार फिर उन चोटियों पर गर्व से तिरंगा लहराया। दोस्तों, कारगिल युद्ध सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी बल्कि ये विश्वास की जीत थी, साहस की जीत थी और उस जज्बे की जीत थी जो कहता है देश सबसे पहले है। इस वर्ष हम 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। आइए उन सभी वीर शहीदों और सैनिकों को दिल से सलाम करें जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए समर्पित कर दिया। उनकी वीरता को शत शत प्रणाम। हे बनारस, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और अब चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको अपने देश, दुनिया और शहर बनारस के हाल समाचार से रूबरू कराते हैं। भारत और विश्व के लिए एक ऐतिहासिक पड़ाव और अत्यधिक गर्व का क्षण है। इस बार वाराणसी में 2605वां धम्म चक्र पवतन दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। सारनाथ को आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर वैश्विक पटल पर आधिकारिक मान्यता मिलते देखना अत्यंत आनंददायक और ऐतिहासिक अवसर है। सारनाथ वही स्थान है जहां तथागत बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया था और मानवता को करुणा, ज्ञान और शांति का प्रकाश प्रदान किया था। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अक्सर रेखांकित करते हैं, भारत ने विश्व को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। सौहार्द का ये संदेश आज वैश्विक समुदाय को पहले से कहीं अधिक आवश्यक बना रहा है। हमारे राष्ट्र को और सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने वाले सभी अनुयायियों को इस दिवस की हार्दिक बधाई। हमारे साझा धरोहर के संरक्षण और उसे विश्व पटल पर प्रदर्शित करने के लिए उनके समर्पित दृष्टिकोण, अथक प्रयासों और अटूट प्रतिबद्धता के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय आदरणीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और आदरणीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के गतिशील नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक कृतज्ञता। बुद्ध द्वारा दिखाया गया मार्ग सभी जीवों को आलोकित करता रहे, सभी जीव सुखी और शांत रहें। पावन श्रावण मास के दौरान बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में सिगरा स्थित महापौर अशोक कुमार तिवारी के आवास पर कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी श्रावण मास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित वाराणसी दौरे और शहर की प्रमुख विकास परियोजनाओं को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। बैठक में 29 जुलाई को सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को सुरक्षा

शिक्षा, यातायात प्रबंधन, साफ सफाई और प्रशासनिक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए। श्रावण मास के मद्देनजर कानून व्यवस्था, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही वाराणसी में स्वीकृत गंगा वर्णा एलिवेटेड कॉरिडोर और अमृत 2.0 के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्हें निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने पर जोर दिया गया। बैठक में राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल, महापौर अशोक कुमार तिवारी, नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर सीर गोवर्धन स्थित उनकी जन्म स्थली पर आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के वाराणसी पहुंचने की संभावना को देखते हुए नगर निगम और प्रशासन ने व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम वातावरण उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम ने विशेष कार्य योजना तैयार की है। कार्यक्रम और आसपास के इलाकों में निगरानी और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए QRT का गठन किया गया है। नगर निगम के अनुसार 29 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी संत रविदास मंदिर पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासनिक तैयारियों को और तेज कर दिया गया है। मंदिर परिसर, प्रमुख मार्गों और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं आज के दिन यानी 26 जुलाई में क्या है खास। सन 1998 में आज ही के दिन महानतम महिला एथलीट जैकी जायानर कर्सी ने एथलेटिक्स से संन्यास लिया था। सन 2002 में आज ही के दिन प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रारंभ हुई थी। सन 2004 में आज ही के दिन ईरान के विदेश मंत्री कमल करजई ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ गैस पाइपलाइन के प्रस्ताव पर वार्ता की थी। सन 2004 में ही आज ही के दिन अर्जेंटीना को हराकर फुटबॉल का कोपा कप ब्राजील ने जीता था। सन 2005 में आज ही के दिन नासा शटल डिस्कवरी का प्रक्षेपण हुआ था। सन 2007 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल बाबर हथफ 7 का सफल परीक्षण किया था। सन 2008 में आज ही के दिन यूरोपीय वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर एक और नए ग्रह की खोज की थी। और बात करें आज 26 जुलाई के जन्मे व्यक्तित्व की तो सन 1915 में आज ही के दिन भारतीय योगाचार्य कृष्ण पट्टाभी जोईस का जन्म हुआ था। सन 1914 में आज ही के दिन भारत की प्रसिद्ध कवियत्रियों में से एक विद्यावती कोकिला का जन्म हुआ था। सन 1904 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मालती चौधरी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और सन 1874 में छत्रपति साहू महाराज महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। बात करें आज जिन लोगों ने हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया तो सन 1983 में भारतीय राष्ट्रीय राजनेता सत्य नारायण सिन्हा का निधन आज ही के दिन हुआ था। सन 1966 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का भी निधन आज ही के दिन हुआ था। तो ये थी इतिहास में आज के दिन की खास बातें। और अब दोस्तों समय हो गया है आप सबसे टाटा बाय बाय करने का। मिलूंगी जल्द ही आपसे कुछ और अच्छी और पॉजिटिव बातों के साथ। साथ ही बताऊंगी अगले घाट से जुड़ी दिलचस्प बातों की बातें। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शुचि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित अन्य मांगे माने जाने के बाद CJP ने की प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1,274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा हर भारतीय के लिए यह गर्व का क्षण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी CJP के बीच कल तीसरे दौर की वार्ता में CJP ने दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में जारी प्रदर्शन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। केंद्रीय मंत्री

0: जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह तथा सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की चर्चा में परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से संबंधित मांगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बाद में नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री नड्डा ने कहा कि बैठक के दौरान सरकार ने सीजेपी की इस मांग को मान लिया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि कोई FIR दर्ज की गई है तो उसे वापस लिया जाएगा और FIR की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: आत्महत्या करने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेजने के बाद कहा कि पिछले 10 दिनों से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी का ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी दांव पेच में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद आज पीलीभीत के पूरनपुर में ऐशबाग कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा बदायूं में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री वर्मा ने कल संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि इस सेवा के शुरू होने से बदायूं और उझानी क्षेत्र के यात्रियों को राजधानी लखनऊ के लिए सीधी रेल सुविधा उपलब्ध होगी।
2: उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य भी मिलेगा। हरी झंडी में अपने जो गृह नगर है, होम टाउन है उझानी, उस रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन उझानी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में सबसे पहली योजना में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था।
0: श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में गठित न्यू SIT टीम का विस्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इसमें IG किरण एस के अलावा DIG अयोध्या सोमेन वर्मा और SSP अयोध्या डॉक्टर गौरव ग्रोवर को शामिल किया गया है। इससे पहले न्यू SIT में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार शामिल थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जालौन में 1,274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में जालौन विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए अपनी गौरवशाली और नई पहचान को सुदृढ़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सोलर एक्सप्रेस वे बन रहा है।
3: बुंदेलखंड में कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती थी, ये क्षेत्र बीहड़ था, अंधेरा होते ही पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था, लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहड़ के अंधेरे को एक ओर करते हुए इसको विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। अब उसको एक नई पहचान बन गई है, देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनपद फतेहपुर में 489 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की

0: नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।
1: आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर, आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के अधीन आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं वैश्विक जगत में अपनी दाग को का लोहा मना सकता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही 2 दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे। उन्होंने यहां 342 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। आगरा पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है, जिनके ज्ञान, करुणा और सद्भाव के शाश्वत संदेश से विश्व प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मान्यता देश की समृद्ध सभ्यतागत और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है। विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर वाराणसी के निवासी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि यह काशीवासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
2: सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना हम सभी काशीवासियों के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। भगवान बुद्ध की प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन स्थली को मिली यह वैश्विक पहचान भारत की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान है।
0: माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को अपना आवेदन संबंधित अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य को 5 अगस्त तक देना होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने की प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, हर भारतीय के लिए यह गर्व का क्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत

आज के गायक कलाकार हैं पंडित बाला साहब पुंछवाले, राग है देव गांधार। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं जेरी मैसी और सारंगी पर साथ दे रहे हैं बच्चा लाल मिश्रा।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गायन। आज के कलाकार थे पंडित बाला साहब पुंछवाले। राग था देव गांधार। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे जैरी मैसी और सारंगी पर साथ दिया था बच्चालाल मिश्रा ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के।
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CJP

0: प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकार

0: संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
3: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन

0: पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3,00,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
2: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन।

0: खत्म, सरकार ने सीजेपी की सभी तीन मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी सीजेपी ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वहीं नवभारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड। कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है। शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस, CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce public examinations, prevention of unfair means amendment bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Diwas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. An Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championship. Women's team back silver medal. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held a third round of discussion with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of the CJP that no action should be taken against the protesters and no FIR should be filed against them.
3: जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। कंसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम।
2: On the 5-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. CJP's chief spokesperson, Saurav Das, announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon timelines.
4: The Congress Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timeline. So, hum immediate effect se protesters se request karte hain ki aap withdraw.

0: which proposes 2-month deadline for a probe, writes the Tribune. A day after the U.S. announced permanent tariffs on imports from 60 trading partners, the center said that about 45% of India's exports to U.S. remain outside the purview of the new 10% tariff, reports The Hindu. A U.S. federal appeals court has rejected President Trump's bid to revive the H-1B visa fee of $100,000 for highly skilled foreign workers, reports Hindustan Times. Flood situation in Assam remained grim even as water level has started receding, reports The Pioneer. India's ancient Buddhist site of Sarnath has been inscribed on the UNESCO World Heritage List after a 28-year wait, reports The Statesman. The Times of India has quoted an international study that reveals that over half of world's migratory bird species are on a decline. And finally, in a significant technological step forward for the tea plantation sector and in a first, a tea company in Munnar is using drone-based transport to move freshly harvested green leaves to weighing centers and processing factories in Kerala, writes The Hindu. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce public examinations prevention of unfair means amendment bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Diwas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. And Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championships. Women's team bags silver medal. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत की जानिब से मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद सीजेपी ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी को नया वजीर तालीम मुकर्रर किया गया है। हुकूमत कल लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कियों के सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है और एफआईएच यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भारत के जूनियर मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 1-3 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता जबकि खवातीन की टीम ने चांदी का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। हुकूमत की जानिब से मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सीजेपी के वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत की जिसमें इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदामात पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में सीजेपी के वफद के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब जेपी नड्डा ने कहा कि हुकूमत ने सीजेपी के इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया है कि मुजाहिरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
2: इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात के लिए सीजेपी की जानिब से पेश किए गए 5 निकाती चार्टर के बारे में जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत इन तजावीज पर संजीदगी से गौर करेगी और सीजेपी के साथ मुशावरत के बाद जो कुछ मुमकिन हो सकेगा वो किया जाएगा। सीजेपी के

0: मुलाकात किया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान कई तारीखी हसूलियाबियां हुई, जिनमें किसी भारतीय सदर जमहूरिया के मोल्दोवा और शुमाली मकदूनिया के पहले सरकारी दौरे और तीन दहाई बाद भारतीय सदर का रोमानिया का पहला सरकारी दौरा शामिल हैं। अपने पूरे सरकारी दौरे के दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू ने सरबराहाने मुमलकत के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की, कारोबारी फोरम से खिताब किया और भारतीय बिरादरी से मुलाकात की। सदर जमहूरिया को रोमानिया में बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ की जानिब से एजाजी डिग्री भी दी गई, जो कि भारत और रोमानिया के दरमियान बढ़ते तालीमी और अवाम से अवाम राबतों की अक्कासी करता है। अपने दौरे में सदर जमहूरिया ने भारत की तेज़ रफ्तार माशी तरक्की, टेक्नोलॉजी के मैदान में पेशकदमी और आलमी इश्तराक के तई अहद बस्तगी को नुमाया किया। साथ ही सदर जमहूरिया ने तिजारत, जिद्दत तराजी, तालीम, डिजिटल टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में मजबूत तआवुन की भी हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया मुर्मू के दौरे ने मशरक़ी यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात में गर्मजोशी को बढ़ाया है और मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत दी है। सुभाषरी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: मुल्क भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उन भारतीय फौजियों की बहादुरी की ताजीम के तौर पर मनाया जाता है जिन्होंने साल 1999 की करगिल जंग के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। ये दिन भारत की पाकिस्तान पर फतेह और ऑपरेशन विजय के कामयाब इख्तिताम की 27वीं सालगिरह के तौर पर भी मनाया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तानी फौजियों और दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी के बाद जम्मू कश्मीर के करगिल जिले के इलाकों को दोबारा हासिल किया था। मरकजी तकरीब लद्दाख के दराज की करगिल जंगी यादगार पर मुनाकिद हो रही है। तफसील हमारे नामीगार से।
1: द्रास की करगिल जंगी यादगार में 27वीं करगिल विजय दिवस के मौके पर हुबुल वतनी पर मबनी तकरीबात मुनाकिद की जा रही हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह करगिल जंगी यादगार पर ऑपरेशन विजय के दौरान बहादुरी का मुजाहरा करने वाले जाबाजों की यादगारों पर गुलहाय अकीदत नजर करते हुए तकरीबात की क्यादत कर रहे हैं। वजीर दिफा करगिल जंगी यादगार के वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का इफ्तिताह कर रहे हैं, यादगारी कुटिया और वीर भूमि का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो वीर नारियों और वीर माताओं से मुलाकात कर रहे हैं और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। करगिल विजय दिवस मुल्क की सालिमियत की हिफाजत के तई भारत की मुसल्ला अफवाज की शुजात, कुर्बानी और गैर मुतजलजल जज्बे की याद दिलाता है। द्रास से इनायत अली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: करगिल विजय दिवस के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क करगिल की नाकाबिले रसाई पहाड़ियों में साल 1999 में बेमिसाल शुजात का मुजाहरा करने वाले बहादुर फौजियों का हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ते एहतजाज के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज से दो रोजा मुजाहरों का ऐलान किया है, जिनका इख्तिताम मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च से होगा। हुकूक का मुतालबा करने वाले रहनुमाओं उमर नाजिर कश्मीरी और एडवोकेट ख्वाजा मेहरान ने दादियाल में मुकम्मल बंद की अपील की है और मीरपुर डिवीजन के लोगों से तहरीक में शामिल होने की दरख्वास्त की है। कल जोहर की नमाज के बाद मुजफ्फराबाद की जानिब होने वाले लॉन्ग मार्च से पहले मीरपुर के मुजाहरीन के काफिले रावलकोट में जारी धरने में जम हो सकते हैं। ये ताज़ा एहतजाज बढ़ती महंगाई, बिजली के बढ़ते दाम और सिविल हुकूक पर आयद पाबंदियों के मामले में बढ़ते अवामी गुस्से की अलामत हैं। इस दौरान मुंतजमीन ने पूरे एहतजाज के दौरान मुजाहरीन से नज्म व ज़ब्त और इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की है। आला दर्जा बंदी की हामिल अनाहा सिंह ने जूनियर आलमी कप का खिताब जीतकर भारत की पहली स्क्वैश खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। अनाहत ने कनाडा के निगारा ऑन द लेक में जारी वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 में लड़कियों के सिंगल्स के फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को 3-0 से हराया। 18 साल भारतीय खिलाड़ी ने दूसरी दर्जाबंदी की हामिल सलीम को 11-3, 11-7 और 11-9 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मिस्र के खिलाड़ियों ने लगातार 16 साल तक ये खिताब अपने नाम किया, ताहम अनाहत ने एक भी मैच हारे बगैर इस इजारादारी को खत्म किया। FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत के मर्दों की सब जूनियर टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-1 से हराकर सोने का तमगा जीता। भारतीय खिलाड़ी रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली

0: के गोल ने भारत को एशियाई चैंपियन बनाया। इस जीत के साथ ही मर्दों की भारतीय टीम ने इलीट पूल टेबल में सबसे ऊपर जगह बना ली है। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान दोनों ने FIH यूथ हॉकी 5 आलमी कप के इफ्तिताही मैच के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात की आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा, इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने लिखा है कि विकसित द्राक्षा गांव प्रोग्राम 2026 के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुरका से आज बातचीत करेंगे। ये प्रोग्राम कौमी यकजहती, तरक्की, नीज सरहदी गांव की हिकमत अमली की अहमियत की गहरी समझबूझ को फरोग देता है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। प्रहलाद जोशी को वजारत तालीम का कलमदान सौंपा गया। जंतर मंतर पर CJP ने अपना एहतजाज वापस लिया। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। उत्तर प्रदेश का कदीम बौद्ध मजहबी मकाम सारनाथ यूनेस्को की आलमी मीरास की फेहरिस्त में शामिल, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत की जानिब से मुतालबा तस्लीम किए जाने के बाद CJP ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी को नया वजीर तालीम मुकर्रर किया गया है। हुकूमत की कल लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कियों के सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। और FIH यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भारत के जूनियर मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 1-3 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम हमारा, आप सुनेंगे एक छोटी सी संदेश की बात।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें
2: 0542227658
3: 0542227658।
4: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम मधुरिमा, और ये कार्यक्रम लेकर आ गई हूँ मैं, यानी आपकी रेडियो हम सफर नीलू तिवारी। तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जहाँ हर मुलाकात सिर्फ गीतों की नहीं बल्कि एहसासों की होती है, आज हम जिस विषय को लेकर आपके बीच आए हैं वो शायद हर किसी के दिल में बहुत करीब है। बात करेंगे आज खामोशी की। दोस्तों, दुनिया में शब्दों की कभी कमी नहीं रही, लेकिन कुछ भाव ऐसे होते हैं जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कभी किसी माँ की आंखों की नमी, पिता की चुप चिंता, किसी दोस्त का बिना कुछ कहे साथ निभाना, या किसी अपने का चुपचाप मुस्कुरा देना, ये सब खामोशी की ही भाषा है। दोस्तों, खामोशी को कमजोरी मत समझिए कभी। यही सबसे गहरी आवाज छिपी होती है। जो बात लफ्ज नहीं कह पाते वो अक्सर आंखें कह देती हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

दोस्तों, कितनी सहजता से इस गीत ने हमें याद दिलाया कि हर रिश्ते में शब्द जरूरी नहीं होते। कभी आपने महसूस किया है कि जब कोई अपना सिर्फ पास बैठा हो, कुछ न बोले, फिर भी मन को सुकून मिल जाए, वही रिश्ता सबसे सच्चा होता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब बोल तो बहुत रहे हैं, लेकिन शायद एक दूसरे को सुनना कम कर दिए हैं। क्योंकि दोस्तों, रिश्ते आवाजों से नहीं, एहसासों से चलते हैं। कुछ लोग चुप रहकर भी दिलों में बसते हैं,

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी न जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा, अपनी रेडियो हम सफर नीलू तिवारी के साथ। और आज बात कर रहे हैं हम खामोशी की। दोस्तों, कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां शिकायतें भी होती हैं और प्यार भी, लेकिन हर भावना शब्दों में नहीं उतरती। कभी कभी किसी की याद भी खामोशी में सबसे ज्यादा आती है। यादें भी बड़ी अजीब होती हैं, बिना आवाज के आती हैं और दिल में देर तक ठहर जाती हैं, क्योंकि कुछ यादें दस्तक नहीं देती, बस चुपके से दिल में उतर जाती हैं और फिर सारी रात खामोशी बनकर साथ निभाती हैं।

को दुआ बनाकर जीते हैं। दोस्तों, जब जिंदगी बहुत शोर करने लगे तब कुछ पल खुद के साथ बिताइए। यकीन मानिए, खामोशी इंसान की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है।

दोस्तों, जिंदगी कभी आसान नहीं होती है, लेकिन खूबसूरत जरूर होती है। हर इंसान अपने भीतर कोई न कोई कहानी लिए चलता है, जिसे वो दुनिया से नहीं कह पाता। इसलिए अगर आपके आसपास कोई चुप है, तो ये मत समझिए कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है। हो सकता है उसके पास कहने को बहुत कुछ हो, क्योंकि हर मुस्कान खुशी की निशानी नहीं होती, हर खामोशी उदासी की कहानी नहीं होती। कुछ लोग अपने दर्द

दोस्तों, फुर्सत सिर्फ समय का नाम नहीं है, मन की शांति का नाम है। आज हम सबके पास घड़ी है लेकिन समय नहीं है, दोस्त हैं बातें नहीं हैं, घर है लेकिन साथ बैठने की किसी को फुर्सत नहीं है। आइए आज एक वादा करें कि रोज कुछ पल अपने लिए भी निकालेंगे, क्योंकि थोड़ा ठहरिए, जिंदगी कहीं भागी नहीं जा रही। खामोशी के दो पल कई वर्षों की थकान मिटा देती हैं। आज हमने जाना कि खामोशी सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक भाषा है, एक विश्वास है। जाने से पहले आपको एक बार हम ये बताएं कि यही रिश्तों की सबसे सच्ची आवाज़ है, जो दिल से निकलती है वही बिना शब्दों के भी पहुंच जाती है। जिंदगी में कभी ऐसा समय आए जब कोई साथ ना हो तो घबराइए मत, अपनी खामोशी से दोस्ती कर लीजिए। यकीन मानिए, वो आपको अब कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। इन्हीं शब्दों और मधुर गीतों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी मधुरमा के एक नए विषय, एक नए एहसास और नए गीतों के साथ। अपनी रेडियो हमसफर नीलू तिवारी को दीजिए कार्यक्रम मधुरमा समाप्त करने की। नमस्कार, अपना और अपनों का।

మధురిమా ద సౌండ్ ఆఫ్ మెలోడీ మధురిమా हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, जल संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कैच द रेन अभियान के उद्देश्य और महत्व पर लखनऊ विश्वविद्यालय की जंतु विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमिता कनौजिया से खास बातचीत। वार्ताकार हैं राघवेंद्र त्रिपाठी।
2: देश भर में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कैच द रेन अभियान को एक बार फिर गति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वर्षा की हर बूंद को बचाने का आह्वान किया है। 4 जुलाई से 4 अगस्त तक चल रहे इस राष्ट्रव्यापी अभियान में वर्षा जल संचयन, भू जल पुनर्भरण, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जन भागीदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इन्हीं विषयों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की जंतु विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमिता कनौजिया। मैम, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार
2: मैम। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि कैच द रेन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस बार इसे किस सोच के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।
3: कैच द रेन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये अभियान चलाया है और 2021 से ये स्टार्ट हुआ है, इसमें मेन ये है वाटर कंजर्वेशन पे है खास तौर से, और उसमें भी वाटर कंजर्वेशन में खास तौर से ग्राउंड वाटर की बात हो रही है। और इसीलिए क्या कि जब बारिश का पानी गिरता है तो वो धरती में जाता है, अगर हमारे पास बावली नहीं होते हैं, लेक्स नहीं होते हैं या बोरवेल्स हमारे नहीं होते हैं तो वो पानी संचित नहीं होता है और वो बह जाता है और ड्रेनेज के थ्रू ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो उस पानी को इकट्ठा करके उसके थ्रू ग्राउंड वाटर को मेंटेन करने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की।
2: मैम, प्रधानमंत्री ने मन की बात में वर्षा की प्रत्येक बूंद को बचाने की अपील की है। इस अभियान में आम नागरिकों की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है और लोग अपने स्तर पर क्या क्या कर सकते हैं?
3: देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, सदर्न एशिया का पार्ट है और इसमें 140 करोड़ लगभग जनता है। और इस बड़े देश में आपने देखा वाटर की क्राइसिस तो है ही है। धरती पर 98% वाटर जो है हम लोग नियर अबाउट सब समुद्र में है। मैक्सिमम वाटर कुल 2.6 वाटर पेयजल का है और इसमें कुल 2.6 में भी कुल हमें 0.6% हमको अवेलेबल है, बाकी सब ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। तो जब हम 0.6% वाटर है तो आपको मालूम है कि वाटर क्राइसिस है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि करने के लिए पानी की जरूरत है। भविष्य को देखते हुए हमें ये चाहिए कि जन जन को इस अभियान में शामिल होना चाहिए, क्योंकि पानी चाहे शहर की बात करिए, चाहे गांव की बात करिए, चाहे सेमी अर्बन के जीने के लिए पानी जरूरी है और साथ में हमारे रिसोर्सेज के लिए भी पानी की जरूरत है। तो हमें जरूरी है कि पानी को हम संरक्षण करें और इसलिए ये

0: व्यक्ति का काम नहीं है। जब तक कि हर नागरिक इस देश का आगे नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं हो पाएगा।
1: मैम, इस अभियान के तहत वर्षा जल संचयन, भू जल पुनर्भरण, तालाबों और कुओं के पुनर्जीवन जैसे कार्यों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इन प्रयासों का दीर्घकालिक लाभ क्या होगा?
0: देखिए, आज एक स्थिति हो रही है कि आपने देखा है कि कई जगह, आप बुंदेलखंड में जाइए, पानी की कमी है महोबा और ऐसे एरिया में, क्योंकि वो ऐसा एरिया होता है कि जब जून की गर्मी आती है तो वहाँ पे जो बेतवा है, केन है, बिल्कुल नदियाँ एक धारा सी बन के रह जाती हैं, पानी कम हो जाता है। छतरपुर ऐसा एरिया है जहाँ पानी नहीं हुआ, बात की जा रही है कि केन बेतवा को जोड़ा जाए तो हम छतरपुर में पानी ला पाएंगे, पन्ना से होता हुआ। तो जब ऐसी स्थिति है तो हम बात कर रहे हैं कि हमें एक एक बावली, लेक, वेटलैंड्स, पॉन्स, बोरवेल्स जो सूख चुके हैं, जो नष्ट हो चुके हैं, और स्टेपवेल्स जो सीढ़ियों वाली हमारी पूरी, या हेरिटेज वेल्स हैं हमारे दुनिया में कई जगह ऐसे जो बावली बनी है पुराने जमाने की, उसको हम पढ़ें, उसको स्टडी करें कि पानी का संरक्षण कैसे किया जाता था, और आज हम उसी ट्रेडिशनल नॉलेज पे जा करके उनका संरक्षण करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा कर सकें रेन वाटर, और उस माध्यम से उसको हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते। तो इसलिए हर बावली, हर पुराने जो बोरवेल्स हैं, जैसे हमारे लखनऊ में बख्शी का तालाब है, आपने स्टेपवेल देखा है, ऐसे ही हमारे गुजरात में, बेंगलोर में कई जगह पुरानी पुरानी बावलियां हैं, तो उनको हम संरक्षित करें, और उनको जब हम रिवाइव करेंगे तब उनमें पानी भरेगा। तो वही ट्रेडिशनल नॉलेज के अनुसार, क्योंकि वो बहुत ही वैसे ढंग से बनाई गई हैं जिसकी हमें स्टडी करनी चाहिए, जब पानी उसमें इकट्ठा होगा तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा।
1: मैम, केंद्र सरकार ने घरों, सोसाइटियों और संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, रिचार्ज पिट बनाने और अनुपयोगी बोरवेल को पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर जोर दिया है। इनको लागू करने में क्या चुनौतियां हैं और कैसे इन पर काम किया जा सकता है?
0: देखिए, काम तो किया जा सकता है लेकिन चुनौतियां ज्यादा हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये जो योजना चलाई है 2021 में, मतलब उसके पहले हम लोग ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो आज बहुत सी चीजें हमारी शैटर्ड हैं। तो हमें जब उनको रिवाइव करेंगे, तो जब आप किसी भी एक वाटर बॉडी के पास जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा वहां पे? एक गंदा नाले जैसा पॉन्ड या खराब पानी, उसका होगा बहुत गंदा, होगा पीने लायक नहीं होगा, इवन पीने क्या किसी भी प्रयोग के लायक नहीं होगा, कृषि के लिए भी नहीं होगा। तो इन सब चीजों के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है, एक्सपर्टीज की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, दिशा निर्देश की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत। तो ये डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता। अगर हम फेजेस में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, प्लानिंग बनाएंगे और हम उसके लिए काम करेंगे, तो हम इन सारी जो रोड़े हैं इन सबको हटा लेंगे और हम उनका संरक्षण कर सकते।
1: मैम, जल संचय जन भागीदारी अभियान के पहले चरण में 10 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 27 लाख से अधिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनी, और दूसरे चरण में 1 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 1.5 करोड़ से अधिक संरचनाओं की सूचना मिली है। इन उपलब्धियों को आप किस तरह देखते
0: हैं? हम इन उपलब्धियों को ये देखते हैं कि हमारा समाज इसका मतलब जागरूक हो रहा है, लोग चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि इनका संरक्षण किया जाए, लोग आगे आना चाहते हैं, अगर उनको गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है तो सहयोग करना चाहते हैं, एफिशिएंसी है हमारे सिस्टम में जो कहीं छिपी हुई है, तो अगर हम उतने ही एफिशिएंट हो जाएं और ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाकर सपोर्ट करें और पब्लिक को जोड़ें, तो हमें लगता है कि देर नहीं है कि चीज़ों को हम सॉल्व कर सकेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे।
1: मैम, इस अभियान में पंचायतों, शहरी निकायों, महिला समूहों, युवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों की जो भूमिका है उसके बारे में प्रकाश डालिए।
0: बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए अभियान चलाते हैं तो हमारे जो समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। एजुकेशन सिस्टम को जोड़ना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बहुत से टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं जो पानी पे रिसर्च कर रहे हैं, कोई वाटर टॉक्सिकोलॉजी पे काम कर रहा है, कोई वाटर की हाइड्रोलॉजी पे काम कर रहा है, कोई वेटलैंड कंजर्वेशन पे काम कर रहा है कई सालों से, तो जो उनकी एक्सपर्टीज है वो हमारे अभियान में बहुत काम आए। महिला को क्यों जोड़ा? आपको मालूम है महिला एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में फेस करती है पानी की क्राइसिस को। हमारे समाज की यूनिट क्या है? फैमिली, और फैमिली की कर्ता धर्ता कौन है? महिला। वो ये महसूस करती है कि अगर एक दिन पानी ना आए तो घर में खाना कैसे बनेगा, स्नान गृह में भी पानी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, कपड़ा धोने का पानी भी नहीं है, बर्तन धोने का भी पानी नहीं है। तो महिला को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती है, तो वो जानती है कि इसके लिए

0: हमें काम करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो वो इंथुसियास्टिक होके पूरा अपना 100% योगदान देंगे और वो हो भी रहा है। साथ में पंचायत, देखिए पंचायत एक ऐसी बॉडी है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी गांव में जितनी भी बावलियां हैं, लेक्स हैं, वो सब ग्राम पंचायत की जमीन है, वो प्राइवेट जमीन नहीं है। तो उसमें काम करने के लिए हमारे ग्राम पंचायत का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जब तक वो आगे नहीं आएंगे तो हम काम कैसे करेंगे, तो उनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है।
1: मैम, आकाशवाणी के माध्यम से आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो इस अभियान से जुड़ करके जल संरक्षण को अपना जन आंदोलन बना सके, उनकी क्या भूमिका है?
0: हमारे जो श्रोता हैं, कहीं ना कहीं जो शहर में रहते हैं और जो गांव में रहते हैं, हमारा ये जन से आह्वान है कि आप किसी भी गांव के हैं, किसी भी एरिया के हैं, आपके आसपास कोई भी जल स्रोत है उस पे ध्यान दें, उसको मेंटेन करें। हमारी क्या आदत है कि हमारा घर साफ हो जाए बाकी कूड़ा तालाब में, सीवेज उधर ही हमारा जा रहा है। हम ये सोचते हैं कि ये काम हमारा नहीं, गवर्नमेंट का है, लेकिन अगर लोग अपना एक समूह और सोसाइटी बना करके अपने अपने एरिया की चीजों को अगर संरक्षित करें, और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात की गई है सब जगह कि हम घर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं, जिससे कि उस पानी को हम इकट्ठा करके और उसको हम अपने घर के प्रयोग में ले आए, टैंक बनाएं और उसके गार्डनिंग में, और ये तो बूंद बूंद करके जैसे गागर भरती है, तो हर जन जब थोड़ा थोड़ा करेगा तो वो मिलके बहुत बड़ा काम हो जाएगा, एक अभियान में कन्वर्ट हो जाएगा और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हमारा ये होगा, और हमारी फिर समस्या खत्म हो जाएगी। आगे हम आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे सकेंगे, तो हम सभी लोग को इसमें भाग लेना चाहिए।
1: मैम, आपने जल संरक्षण और कैच द रेन अभियान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना जल संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कैच द रेन अभियान के उद्देश्य और महत्व पर लखनऊ विश्वविद्यालय की जंतु विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमिता कनौजिया से खास बातचीत। वार्ताकार थे राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: सामयिक चर्चा, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेब सोटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: पेश है उर्दू कार्यक्रम, खत के लिए शुक्रिया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम। मेजबानी की है सुरेंद्र राजेश्वरी और शाजिया खान ने, पेशकश आसिफ इकबाल की है।
1: कहते हैं कि लफ्ज जब दिल से निकलें तो फासले सिमट जाते हैं, और जब यही लफ्ज एक खत की सूरत इख्तियार कर लें तो दिलों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम हो जाता है जो वक्त और मसाफत की हर हद से मावरा होता है। आपके भेजे हुए खतूत सिर्फ कागज पर लिखी हुई चंद सतरे नहीं होते, बल्कि उनमें आपकी मोहब्बत, खलूस, एतमाद, दुआएं, कीमती मशवरे और आकाशवाणी से आपकी बेलौस वाबस्तगी की खुशबू बसी होती है। आकाशवाणी लखनऊ की जानिब से पेश है आपका हर दिल अजीज प्रोग्राम खत के लिए शुक्रिया। मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया खान। मौदबाना आदाब कबूल फरमाएं, और इस सफर में मेरा साथ दे रहे हैं आपके हम सब के हर दिल अजीज सुरेंद्र राजेश्वरी जी।
2: शाजिया खान साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आदाब, और हमारे प्यारे प्यारे जो सामीन हैं जो बाकायदा इस प्रोग्राम का बड़ी शिद्दत से इंतजार करते हैं, उनको भी बहुत बहुत आदाब और बहुत शुक्रिया इस बात का कि तमाम अपने जो काम होते हैं उसको मुलतवी करके हमारे इस प्रोग्राम को सुनने के लिए बाकायदा रेडियो सेट पर भी और अब तो सेलफोन में भी ऐप के जरिए भी प्रोग्राम हमारे सुनने वाले हमारे साथ होते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका।
1: तो राजेश्वरी जी, बिला ताखीर मोहब्बत, अपनाइत और खुलूस से भरे इन्हीं खतूत के साथ आगाज करते हैं आज की इस खूबसूरत नशिस्त का। पहला खत हमें जो मौसूल हुआ है रायबरेली से, और लिखने वाले हैं जैगम अख्तर। ये लिखते हैं, आपका उर्दू प्रोग्राम अक्सर सुनता हूँ। आज के दौर में माशरे को इस तरह के प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है जिनसे माशरा सिर्फ फ़ायदा ही उठा सकता है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। आपका सेहतनामा पसंद आया जिसमें दिल, बीपी, मोटापे और कोलेस्ट्रॉल पर जानकारी दी गई। बेमिसाल शायरा शबीना अदीब साहिबा के साथ हुई गुफ्तगू भी अच्छी लगी। शबीना जी का कलाम सुनने को मिला। ऐसे ही प्रोग्राम करते रहिए।
2: भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सेहतनामा प्रोग्राम सुना, और हमारा मकसद भी यह है कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो सेहतमंद रहें और तमाम चीज़ें जो नुकसान पहुंचाती हैं उनसे दूरी बनाए रखेंगे, हमारा ये मकसद भी है। शायरा शबीना अदीब साहिबा, शाजिया खान साहिबा, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है।
1: बिल्कुल,
2: ये आकाशवाणी लखनऊ को ये एजाज हासिल है कि पिछले दिनों शबीना अदीब साहिबा यहाँ तशरीफ लाई थी और सीधे आपसे रूबरू हुई, और बहुत खूबसूरत ये पल था आकाशवाणी लखनऊ के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अगला खत हमारा है सीतापुर से, और लिखने वाले हैं यासीन इब्न उमर। ये लिखते हैं, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन शेरी महफिल का इनकाद किया गया, सभी के बहुत उम्दा अशार हैं। आकाशवाणी की पूरी टीम काबिल सताइश और मुबारकबाद है जो मुसलसल बेहतरीन से बेहतरीन महफिलें आरास्ता कर रही हैं।
2: जनाब यासीन इब्न उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो मशायरा आकाशवाणी लखनऊ ने मुनक्किद किया था उसको आपने सुना, और खास तौर पर संजय मिश्रा शौक साहब को जो कि बहुत मशहूर

0: शायर हैं और साथ में थे सना महमूद आबादी और शोएब किंतूरी साहब। ये मुशायरा आपको पसंद आया है, बहुत शुक्रिया आपके समातों का।
1: इसी तरह से हमारे पास जो अगला खत है वो भी है सीतापुर से ही, और लिखने वाले हैं डॉक्टर मोहम्मद शफी। ये लिखते हैं, आज बतारीख 3 जुलाई को आकाशवाणी लखनऊ के उर्दू प्रोग्राम में मशहूर शायरा शबीना अदीब साहिबा का इंटरव्यू सुना, जिससे उनके शेरी जौक और शेरी सफर के मुतालिक जानने का मौका मिला। मौसूफा ने अपनी मशहूर और मारूफ गजल तरन्नुम में सुनाकर प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। शम्सुल आरफीन साहब की एंकरिंग कमाल की रही, उनके खूबसूरत सवालात ने भी प्रोग्राम के हुस्न में 4 चांद लगाने का काम किया। मशहूर शोरा का इंटरव्यू आकाशवाणी लखनऊ की बेहतरीन पहल है, इसे जारी रहना चाहिए। मैं इसके लिए आकाशवाणी लखनऊ उर्दू प्रोग्राम के सभी जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
0: डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब, बेहद शुक्रिया आपकी समातों का। आप तमाम प्रोग्राम जो आकाशवाणी लखनऊ से खासतौर से उर्दू के हवाले से आप तक पहुँचते हैं, शाजी खान साहब न केवल ये सुन रहे हैं बल्कि खत रिसाल करना भी खुद में बहुत बड़ी बात है। और खासतौर पर शायरा शबीना अदीब साहिबा जो पिछले दिनों यहाँ तशरीफ लाई थी, वो गजल उनकी बड़ी मकबूल होती है शाजिया, वो
1: जी।
0: खामोश लबें झुकी हैं पलके है ना
1: जी,
0: जब
1: जी।
0: वो गाती हैं तो फिर गाती हैं कमाल होता
1: क्या
0: है।
1: लगता है।
0: बहुत शुक्रिया आपका कि हमने भी प्रोग्राम सुना और खासतौर पर मुलाकात भी उनसे की। पहली दफा उनको देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मुलाकात भी बहुत अच्छी रही। और आपने इस प्रोग्राम को सुना, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब।
1: अगला खत हमारा है लखनऊ से और लिखने वाली हैं आफरीन नाज। ये कहती हैं, 16 जुलाई को नशर होने वाला किस्सा 4 दरवेश तीसरे दरवेश की कहानी सुनने का इत्तेफाक हुआ। दिलचस्प अंदाज पेशकश और मोहतरमा शाजिया खान की पुरअसर आवाज ने पुरानी दास्तान को बिल्कुल जिंदा कर दिया। हर मोड़ को इतनी खूबसूरती से पेश किया गया कि पूरा प्रोग्राम शुरू से आखिर तक दिलों को बांधे रखता है। आप और आकाशवाणी की पूरी टीम को इस उम्दा पेशकश पर दिली मुबारकबाद। उम्मीद है आइंदा किस्तें भी इसी मैार के साथ सुनने को मिलेंगी।
0: किस्सा 4 दरवेश, ये वाकई बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम तैयार किया गया है। और शाहजहां खान, बधाई तो आप हाथों हाथ ले लीजिए क्योंकि उस प्रोग्राम को आप ही ने प्रेजेंट किया था।
1: जी जी।
0: तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी कि आपने इतना दिलचस्प प्रोग्राम सुनने वालों तक पहुंचाया है, उसके आपको भी बेहद शुक्रिया। और आफरीना साहिब, आपको तो खास तौर पर बेहद शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम सुना।
1: अगला खत हमारा खैराबाद अवध से बेबी बानो लिखती हैं, जुलाई के इब्तदाई हफ्ते के तारीखों के उर्दू प्रोग्राम कुछ ज्यादा ही दिलचस्प रहे। शम्सुल आरफीन का शबीना अदीब से किया गया इंटरव्यू बहुत खूब रहा। अरसे दराज से मुशायरों की मुमलिकत पर शबीना अदीब की हुकूमत चल रही है। जो गजल सामईन को आपने सुनाई वो हक बयानी लिए हुए है। मेरी तरफ से भी उन्हें बेहिसाब मुबारकबाद पहुंचा दें। शबीना अदीब साहिबा ने खैराबाद में मुशायरे पढ़े। लखनऊ तहजीब के मौजू पर इरम साहिबा से शम्सुल आरफीन साहब की गुफ्तगु सुनकर एक शेर याद आ गया, गुलामों की तरह अल्फाज महके गजल जैसी तुम्हारी गुफ्तगु है। उर्दू जबान लखनऊ का ओढ़ना बिछौना रही है। आसिफ इकबाल साहब ने उर्दू प्रोग्रामों में वुसत पैदा की है और रोज बरोज तरह तरह के मौजूआत पर नशरिया पेश करते हैं। जनाब राजेश्वरी, जनाब शाजिया खान का मुतरन्नुम लबो लहजा सलामत रहे। आकाशवाणी लखनऊ के तमाम शोबों के अराकैन की खिदमत में आदाब और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ।
0: बेबी बानो साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समातों का कि आपने वो प्रोग्राम जिनको खासतौर पर हमने आपके लिए तैयार किया था आप तक पहुँचे हैं और आपको बेहद पसंद आए। और आकाशवाणी की पूरी टीम को आपने मुबारकबाद पेश की है, हम सबके लिए दुआ की है। इसके लिए खास तौर पर हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह करे आपकी लंबी और बड़ी दोनों उम्र हो। और ये जो शायरा शबीना अदीब वाला प्रोग्राम था शाजिया खान
1: जी,
0: वाकई हमारे सुनने वालों ने इतने प्यार से सुना है, हमारी कोशिश कामयाब हो गई।
1: बिल्कुल, बहुत मकबूल हुआ ये प्रोग्राम।
0: बहुत शुक्रिया बीबी बानो साहिब आपका।
1: अगला खत हमें जो मौसूल हुआ है वो हरदोई उत्तर प्रदेश से है और लिखने वाले हैं असगर अली जहूरी बिलग्राम शरीफ। ये लिखते हैं, आकाशवाणी पॉडकास्ट एपिसोड 21 लखनऊ मरकज से आली जनाब शम्सुल आरफीन साहब के सवालात और कोहना मश्क उस्ताद शायर आली जनाब जौहर कानपुरी साहब के जवाबात सुने, तबीयत खुश हो गई। प्रोग्राम इतना अच्छा था कि तबीयत ये चाह रही थी कि शम्सुल आरफीन साहब सवाल पूछते रहें और जौहर कानपुरी साहब जवाब देते रहें। जौहर कानपुरी ने अपने जवाबात में अपनी तालीम के सिलसिले में जो एतराफ किया वो वाकई लायक तारीफ है। जौहर साहब की गुफ्तगू सुनकर उनके आला मयार का पता चलता है। इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा हो, साबित कदमी हो, सच्चाई हो, लगन हो तो वो अपनी मंजिल को जरूर पा लेता है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आकाशवाणी लखनऊ मरकज का और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के उर्दू प्रोग्राम आगे भी सुनने को मिलते रहेंगे।
0: असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जौहर कानपुरी साहब यहाँ तशरीफ लाए थे और भाई शम्सुल ने उनसे जो बातचीत की, गुफ्तगु की, वो आपको पसंद आई। यकीनी तौर पर आज मुआशरे को इस बात की जरूरत है कि हम जो तालीम हासिल करते हैं अपने एकेडमिक की, अपने नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, उसके लिए, लेकिन सोहबत

0: तो बड़ों की है। शाहजहां साहिबा, मुझे एक शेर याद आ रहा है, बहुत ही मशहूर डायरेक्टर रहे हैं आकाशवाणी के, मरहूम मोहम्मद अली मौत साहब।
1: इरशाद,
0: वो कहते थे कि क्या जमाना है कि औलाद के आगे माँ बाप हाथ बांधे खड़े रहते हैं, उन घरों में ही जिंदा हैं अभी पुरानी कदरें, जिन घरों में अभी दो चार बड़े रहते हैं। तो ये बड़ी बात है, अगर जिस घर में बड़े लोग हैं और जिन घरों में ये रवायत अभी जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रोग्राम आपको इस तरह से पसंद आया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया असगर भाई।
1: अगला खत हमारा है मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा।
1: और जो लिखने वाले हैं, मेरा ख्याल है आप इशारा मेरा समझ भी रहे होंगे।
0: हाँ, देखें, जब अगर मध्य प्रदेश की बात होती है तो हमें सीधे जसवाड़ी याद आता है, खंडवा याद आता है।
1: जी, बिल्कुल।
0: और वहाँ के सुनने वाले भी हमें याद आते हैं।
1: हाँ, और जिस तरह से, जिस खूबसूरती के साथ ये तमाम नाम लिखते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। हमें आकाशवाणी लखनऊ के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें दिनांक 26 जून का उर्दू प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में 10वीं यौम आशूरा पर दी गई जानकारी, मकाला करबला का पैगाम, सब्र और इंसानियत बहुत अच्छा लगा। प्रेजेंटर डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर जी को हार्दिक बधाई। अगला खत जो इनका है वो हमारे 28 जून के प्रोग्राम के मुतालिक है कि इस कार्यक्रम में खत के लिए शुक्रिया क्रम में श्रोताओं के पत्रों के उत्तर बहुत ही मनभावन लगे। प्रेजेंटर सुरेंद्र राजेश्वरी जी और शाजिया खान जी को हार्दिक बधाई। इसके बाद ये हमारे 3 जुलाई के प्रोग्राम के मुतालिक लिखते हैं। इस प्रोग्राम में मेहमान शबीन आदिब शायरा जी से प्रेजेंटर शमसुल आरफीन जी की गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी। कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए भाई आसिफ इकबाल जी को हार्दिक बधाई। इसके बाद हमारे 18 जुलाई के प्रोग्राम के मुतालिक दुर्गेश साहब लिखते हैं, इस प्रोग्राम के तहत आमंत्रित मेहमानों की आवाज में मुशायरा बहुत अच्छा लगा। प्रेजेंटर मोहम्मद उमैर जी को हार्दिक बधाई।
0: भाई दुर्गेश नागिनपुरे जी और आपके तमाम जो साथी हैं, परिवार के लोग हैं, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने पत्र लिखा हमारे उर्दू कार्यक्रम के लिए। 26 तारीख को यौम आशूरा, 28 जून को खत के लिए शुक्रिया, 3 जुलाई को हमारे जो मेहमान शायरा थी शबीन अदीब, और 18 जुलाई को मशायरे का प्रोग्राम, और जो प्रेजेंटर्स थे जिन्होंने बड़ी कोशिशों के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ ही प्रोग्राम आप तक पहुंचाया, भाई मोहम्मद सईद अख्तर साहब और शमसुल आरफीन साहब, मोहम्मद उमर साहब, और खासतौर से मेरे सहयोगी हैं शाजिया खान साहिबा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इस माइक्रोफोन के जरिए हम तमाम जो प्रेजेंटर्स थे उनको शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी बधाई जो दुर्गेश नागनपुरे उनके साथियों ने भेजी है वो हाथों हाथ पहुंचाते हैं। दुर्गेश जी, बहुत शुक्रिया कि आप उर्दू प्रोग्राम को इतना प्यार करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और सिलसिलेवार शाजिया खान देखे कि उन्होंने लिखा है
1: जी,
0: ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश जी।
1: इसके बाद हमारा अगला खत है सीतापुर से, और जो हमारे लिखने वाले हैं उनके खतूत के बगैर हमारा प्रोग्राम खत के लिए शुक्रिया अधूरा है।
0: हाँ, मैं समझता हूँ कि नाम लेना भी कोई जरूरी नहीं है।
1: हाँ,
0: हमारे सामने समझ रहे होंगे।
1: तो हाफिज मसूद महमूद आबादी साहब, ये हमारे कई प्रोग्राम के मुतालिक, बल्कि तकरीबन हमारे सारे प्रोग्राम के मुतालिक खत भेजते हैं। तो वक्त की कमी से हम सारे खत तो शामिल नहीं कर सकते, लेकिन मैं इनके चंद खत जरूर शामिल करूँ
0: जी।
1: लिखते हैं, वाह क्या बात है, बहुत खूब, आज आकाशवाणी लखनऊ से मोहतरम राघवेंद्र साहब की मेजबानी में दौर हाजिर के बहुत ही नामवर और लाजवाब इनकलाबी शायर जौहर कानपुरी और आकाशवाणी लखनऊ की अजीम शख्सियत मोहतरम शमसुल आरफीन साहब के दरमियान बहुत ही उम्दा गुफ्तगू सुनने को मिली। वाकई ये इंटरव्यू बहुत ही उम्दा और लाजवाब था, जिसे सुनकर दिल बाग बाग हो गया। इस उम्दा और बेहतरीन प्रोग्राम के लिए मोहतरम आसिफ इकबाल साहब, शमसुल आरफीन साहब, जौहर कानपुरी साहब, राघवेंद्र साहब और आकाशवाणी लखनऊ के सभी जिम्मेदारान को दिली मुबारकबाद। हमारे 28 जून के प्रोग्राम के मुतालिक लिखते हैं, खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम मोहतरमा शाजिया खान साहिबा और सुरेंद्र राजेश्वरी साहब की मेजबानी में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के प्रोग्राम में कई बेहतरीन खतूत शाजिया खान साहिबा ने अपने दिलकश अंदाज में पढ़े और मोहतरम राजेश्वरी जी ने अपने मुनफरद अंदाज में उनकी खूब पजीराई की और मुझ नाचीज के खतों को भी एक खास अहमियत बख्शी। इसके लिए आप साहबान का दिल की अमीक गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम मेरे लिए खास अहमियत का हामिल रहा, क्योंकि आज मेरी वालदा, मेरी बहन, मेरे बहनोई, मेरी अहलिया, बच्चे, बच्चों के मामू और लखनऊ की दो अहम शख्सियात ने साथ बैठकर इस अहम प्रोग्राम को सुना और मोहतरम सुरेंद्र राजेश्वरी साहब और शाजिया खान साहिबा की जमकर तारीफें की। साथ ही ये हमारे कुछ और प्रोग्राम के मुतालिक भी लिखते हैं, आकाशवाणी लखनऊ से नशर उर्दू प्रोग्राम गुफ्तगू बहुत ही उम्दा हुआ, आज की मेजबानी फरमा रहे मोहतरम शमसुल आरफीन साहब और मेहमान मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा के दरमियान लाजवाब गुफ्तगु हुई, जिसको सुनकर मैं ही क्या, मेरे आजा अकरबा भी महजूज हुए। मोहतरमा ने बड़ी साफ गोई से काम लिया, आगाज शायरी से लेकर उरूज तक बेशतर वाकयात बड़ी खुश असलूबी से बयान किए और अपना बेहतरीन कलाम भी उम्दा अंदाज में पेश किया। और इसी के साथ ही हमारे 18 जुलाई के प्रोग्राम के मुतालिक भी लिखते हैं कि मुशायरा बहुत अच्छा लगा, जिसकी निजामत हर दिल अजीज शख्सियत मोहम्मद

0: साहब ने की। इस शानदार मुशायरे में हमारे दयार से तशरीफ लाए सना महमूद आबादी, कामिल बारा बंकवी और संजय मिश्रा शौक साहब शरीक हुए और सभी शुरा ने अपना बेहतरीन कलाम पेश किया, जिसे सुनकर दिल बाग बाग हो गया। और हाल ही में पेश तीसरे दरवेश की कहानी बजुबानी शाजिया खान साहिबा की भी खूब तारीफ की और मुझे भी शाजिया खान साहिबा का अंदाज बहुत पसंद आया।
1: जनाब हाफिज मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना तफसीली खत लिखा और तमाम प्रोग्राम के बारे में उनके जितने लोगों ने भी उसमें हिस्सा लिया जो मेहमान थे उनका भी जिक्र किया है और खास तौर से हमारे आकाशवाणी लखनऊ के जो प्रेजेंटर्स हैं उनके बारे में भी आपने लिखा, उनकी तारीफ की है, उनको दाद दी है आपने, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। वाकई जितने भी प्रोग्राम का जिक्र आपने किया हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं कि आप इतना वक्त निकाल पाते हैं हमारे उर्दू प्रोग्राम के लिए। हाफिज मसूद भाई, आपके समातों का बेहद शुक्रिया।
0: आखिर में हमारे एक सामीन कुछ जानना चाह रहे हैं जिनको जरूरी मालूमात आप फराहम कर दें। राजेश्वरी जी, मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान लिखते हैं, नमस्कार, कृपया व्हाट्सएप के माध्यम से कौन कौन से प्रोग्राम बने होते हैं बताने का कष्ट करें।
1: यशपाल जी, धन्यवाद करते हैं कि आपने पत्र लिखा, लेकिन कुछ बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आप जानना क्या चाहते हैं। व्हाट्सएप हमारा सिर्फ नंबर है जिस पर आप अपनी बात लिखते हैं। खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम में ईमेल करते हैं और व्हाट्सएप नंबर आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप व्हाट्सएप पे अपने दिल की बात कह सकें जो आप ईमेल के जरिए नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो ऐसा करें कि अगला खत आप जरूर लिखें और थोड़ा विस्तार से लिखें आप जानना क्या चाहते हैं। बहरहाल आपने खत लिखा तो कुछ तो लिखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: देखते ही देखते राजेश्वरी जी, आज की ये खुशगवार नशिस्त अपने अख्तिताम को पहुंचती है। वक्त की कमी के बाइस अगरचे हम आपके तमाम खतूत शामिल ना कर सके, लेकिन यकीन जानिए आपका हर खत हमारे लिए यकसा अहमियत रखता है। आपकी हर तहरीर हमारे दिल तक पहुंचती है और हमारे लिए बाइस मसरत होने के साथ साथ बाइस रहनुमाई भी बनती है। हमें यकीन है कि आइंदा भी आप अपनी कीमती आरा, तजावीज, तासुरात और फरमाइशों से हमें यूं ही नवाजते रहेंगे।

0: शाहजहाँ, इससे पहले कि रुखसती हो
1: जी,
0: हमारे सुनने वालों को जो एड्रेस है खत के लिए शुक्रिया का वो तो बता दें।
1: जी जी बिल्कुल। अगर आप भी अपने ख्यालात, तासुरात, मशवरे या किसी खास प्रोग्राम के बारे में अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है kklsurdu@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157।
0: हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो हमारा ईमेल एड्रेस है, व्हाट्सएप नंबर है, दोनों नोट कर लिए होंगे। हम आपके खतों के इंतजार में हैं। शाजिया, अब वक्त हो चला है कि आदाब कह दिया जाए।
1: बिल्कुल।
0: तो अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं सुरेंद्र राजेश्वरी,
1: मैं शाजिया खान,
0: आपसे
1: इजाजत लेते हैं।
0: आदाब।
2: खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आज के उर्दू कार्यक्रम में मेजबानी की थी सुरेंद्र राजेश्वरी और शाजिया खान ने। पेशकश आसिफ इकबाल की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नशर किया जा रहा था।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज के कलाकार हैं पारसनाथ बागी। इनके स्वर में सबसे पहले लीजिए सुनिए देवी गीत।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत और आज के कलाकार हैं पारसनाथ बागी और साथी। इनके स्वर में अब लीजिए सुनिए कहरवा गीत।

0: कार्यक्रम के अंत में अब लीजिए सुनिए इन्हीं के स्वर में विकास गीत।
1: भारती सरागा भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज के कलाकार थे पारस नाथ बागी और साथी। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए सामुदायिक गान शिक्षा पाठ, जिसमें आज आप सुनेंगे उड़िया गीत।
1: नमस्ते। अच्छा बच्चों, आज मैं तुम्हें गाना सिखाता हूँ। इस गीत को लिखे हैं पल्ली कवि नंद किशोर बड़। तो फिर अभी गाना लिखो। पहले स्थाई डाणिया खोरा पोड़ी ची,
2: डाणिया खोरा पोड़ी ची,
1: बेलो जाऊची बुड़ी,
2: बेलो जाऊची बुड़ी,
1: की सुंदर पारा जोड़िए,
2: की सुंदर पारा जोड़िए,
1: जाऊ छंती उड़ी,
2: जाऊ छंती उड़ी।
1: अच्छा अभी पहला अंतरा लिखो। आसो आसो पारा जोड़ी को,
2: आसो आसो पारा जोड़ी को,
1: मोरो पिंडारे बसो,
2: मोरो पिंडारे बसो,
1: खाई बाकु देवी तुम्हों को,
2: खाई बाकु देवी तुम्हों को,
1: मुही नड़िया रसो,
2: मुही नड़िया रसो।
1: अभी दूसरा अंतर लिखो। पी बाकु देवी तुम्हों को,
2: पी बाकु देवी तुम्हों को,
1: पद्म पोखरी पानी,
2: पद्म पोखरी पानी,
1: सुई बाकु देवी खटुली, माली घरु मु आनी,
2: माली घरु मु आनी,
1: माली घर खटुली रे जे,
2: माली घर खटुली रे जे,
1: बाउंसर पातिया,
2: बाउंसर पातिया,
1: मा झुवं कर गोड़ रे,
2: मा झुवं कर गोड़ रे,
1: रत नर झुंटिया,
2: रत नर झुंटिया।
1: अभी चौथा अंतरा लिखो। सारी पचारिला सुआरे,
2: सारी पचारिला सुआरे,
1: क्यों दांडरे जीबा,
2: क्यों दांडरे जीबा,
1: सुआ बोले सारी चालोगो,
2: सुआ बोले सारी चालोगो,
1: बड़ दांडरे जीबा,
2: बड़ दांडरे जीबा।
1: तो फिर तुम लोगों ने गाना लिख लिया?
2: हाँ जी।
1: ठीक है, अभी मैं तुम्हें ये गाना सिखाता हूँ। मैं गाऊंगा पहले, तुम लोग उसे दोहराना, ठीक है?
2: हाँ गुरुजी।
3: तो अभी गाना सुनते हैं, जो कि ये दादरा ताल पर है, जो कि 6 मात्रा मध्य लय में है।

0: और एक बार
1: मेरा जाओ जी बूढ़ी, मेरा जाओ जी बूढ़ी।
0: ये क्या स्थाई, उसके बाद हम अंतरा चलते हैं, फिर वही चीज।

0: हाँ बच्चों, तुम लोगों ने ये गाना सीख लिया। इस गीत को लिखे थे उड़ीसा के जाने माने कवि पल्ली कवि कौन? हाँ ठीक, तुम लोगों ने गाना सीखा। यहाँ घर में जाओ, अपने साथियों को ये गाना जरूर सिखाना, ठीक है? तो फिर चलो। हाँ
1: अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान शिक्षा पाठ के अंतर्गत उड़िया गीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म ये वादा रहा से। आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत लिखा है गुलशन भावरा ने और संगीत दिया है R.D. बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अब लीजिए, सुनिए फिल्म क्या यही प्यार है से। आवाज दी है बाबुल सुप्रियो ने और अलका याग्निक ने। गीत लिखा है जलेश रासिद और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

0: कार्यक्रम में वक्त है एक छोटी सी अंतराल का।
1: दादू आग का तारा मतलब
2: बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा।
3: पापा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका।
1: हाँ बैल, मुझे मार मतलब
2: मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे।
4: अनवी कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना।
1: इसका मतलब
4: इन्हीं से पूछो।
5: समझा पापा।
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम का अगला गीत अब लीजिए सुनिए तलत अजीज और साथियों की आवाज में, फिल्म डैडी से। गीत लिखा है सूरज सनी ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आपकी परछाइयाँ से ये गीत। गीत लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

कार्यक्रम के अंत में अब लीजिए सुनिए साधना सरगम की आवाज में फिल्म अनाड़ी का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:55 होने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है लाइव रेडियो लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस न्यूज पॉडकास्ट्स साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
7: चलो,
3: कहाँ
7: एडमिशन कराने हैं?

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है, वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस

हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को

इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घास निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं, नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है, महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है, आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब के स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री

केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में

इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में वर्षों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है,

उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है।

पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार माई गॉव पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अस्माकं जीवने केचन दिनांकाः तादृशाः भवन्ति येषां स्मरणार्थं दिनदर्शिका न अवलोकनीया भवति। अद्य तादृशः एव जुलाई मासस्य 26 दिनांकः अस्ति। अद्य कारगिल विजय दिवसः अस्ति। एषः दिवसः अस्मान् गर्वान्वितान् करोति। एतत् दिनम् अस्माकं वीराणाम् अद्भुतं साहसं नः स्मारयति। कारगिल इत्यस्य उन्नत श्रृंखलाः, दुष्करं वातावरणं, शत्रु समाह्वानं वा वस्तुतः प्रत्येकमपि परिस्थितयः अस्माकं सैनिकानां समक्षम् आसन्। परं तेषां साहसं प्रत्येकं समाह्वानात् बलिष्ठमासीत्। ते मां भारती इत्येतस्याः रक्षार्थं स्वीयं सर्वस्वं समर्पितवन्तः। अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे अहं सर्वान् हुतिंगतान् वीर सैनिकान् च प्रति श्रद्धापूर्वकं नमनाञ्जलिं प्रस्तौमि। सखायः, अद्यतनं भारतं केवलं स्ववीराणां स्मरणमेव न करोति, अपितु नूतन संततिं यावत् तदीय गाथाः अपि प्रापयति। अनया भावनया अस्मिन् वर्षे विशिष्टा एका शौर्य विजय यात्रा प्रवर्तिता। जुलाई मासस्य 14 दिनांके दिल्ल्याः राष्ट्रिय समर स्मारकतः समारब्धा एषा मोटर साइकिल यान यात्रा द्रासस्थितं कारगिल समर स्मारकं यावत् प्राप्नुयात्। एतस्याः सन्देशः अस्ति वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट इति। एषा यात्रा अस्मान् स्मारयति यत् राष्ट्राय प्रदत्तं बलिदानं कथमपि विस्मृतियोग्यं न भवति। सखायः, अद्यत्वे भारतं स्वकीयानां सैनिकानां साहसवर्धनेन सह स्वीयाः प्रविधिक्षमताः अपि सततं दृढाः करोति। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव भारतीय नौसेनायां INS महेन्द्रगिरि इत्याख्यः योद्धृजलपोतः सम्मिलितः जातः। एषः आधुनिकः योद्धृजलपोतः भारते एव परिकल्पितः निर्मितश्च वर्तते। एतस्य निर्माणे प्रतिशतं 75 अधिकानां स्वदेशी सामग्रीणाम् उपयोगः जातः। आत्मनिर्भर भारतस्य वर्धमानायाः शक्तेः प्रतीकभूतः अस्ति एषः। एतस्मिन्नेव मासे DRDO इत्यनेन रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन पिनाक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट इत्याख्यस्य प्रक्षेपकस्य अपि सफलं परीक्षणं कृतम्। एतस्याः सफलतायाः कारणभूतः अस्माकं वैज्ञानिकानां अभियन्त्रीणां च सामूहिक परिश्रमः अस्ति। द्वित्रदिनेभ्यः पूर्वं DRDO इत्यनेन कुशा मिसाइल इत्याख्यस्य प्रक्षेपकास्त्रस्य अपि सफलं परीक्षणं कृतमेव। सखायः, कामं अद्य रक्षोत्पादनं भवतु रक्षा निर्यातो वा उत मित्रदेशैः सह राजनीतिक सहयोगः, अद्यत्वे भारतं सततं नव शिखरं प्रति वर्धमानम् अस्ति। एतस्य मासस्य आरम्भे अहम् इण्डोनेशिया देशे आसम्, यत्र ब्रह्मोस इति एतेभ्यः प्रक्षेपास्त्रेभ्यश्च विशिष्टा सहमतिः सञ्जाता। विश्वस्य विश्वासः भारतस्य रक्षोपकरणेषु प्रविधिषु च वर्धमानः अस्ति। आयान्तु ऐषमः कारगिल विजय दिवसावसरे वयम् अमरान्

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: हाँ बोलना।
3: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर।

0: 222 10 52 यानी 222-1052। और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: जी मैं पूनम बात कर रही हूँ सुल्तानपुर से। कैसे
0: पूनम जी, बहुत दिनों बाद आप भी आई हैं और आपका भी इंतजार रहता है बहुत सारे श्रोताओं के साथ साथ। अब कुछ श्रोता हमारे एक थोड़ा सा गैप दे करके आ रहे हैं, उन्हें याद आ रही है कार्यक्रम की लगता है।
1: जी हाँ सर, बिल्कुल आपकी याद आती है।
0: ये है कि आपका भी बड़ा स्टाइल जो है बोलने का वो बड़ा अच्छा है।
1: जी थैंक यू सो मच सर। और
0: कितने वर्षों से आप खासतौर से हम लोगों के इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं?
1: सर काफी समय हो गया, लगता है ना कि 6-7 साल से तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं।
0: जी बिल्कुल, और यूं ही जुड़े रहिए और जीवन में तरक्की कीजिए, हम लोग तो यही चाहते हैं। पूनम, और क्या खास बात बताएंगी आप?
1: सर बस काफी बताना चाहेंगे कि अभी तो फिलहाल मौसम अच्छा है।
0: जी जी,
1: और बारिश हो,
0: कानपुर में भी बारिश अच्छी हो रही है।
1: जी हाँ, कानपुर में बहुत
0: अच्छी। हाँ
1: तो ऐसे में क्या होता है ना सर, मौसम तो अच्छा हो जाता है लेकिन आसपास जो पानी जाता है, साफ सफाई।
0: हाँ थोड़ा सा ये चीजें तो हैं, लेकिन देखिए प्रकृति के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें भी करना होता है। और ये समस्या हमें लग रहा है शहरी इलाकों में ही है, क्योंकि गांव में तो बारिश होती है तो बड़ी खुशी हो जाती है कि लोग खेती बाड़ी के काम में लग जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: शहरों में थोड़ा सा चूंकि कामकाज है,

0: है, क्योंकि गांव में तो बारिश होती है तो बड़ी खुशी हो जाती है कि लोग खेती बाड़ी के काम में लग जाते हैं। शहरों में थोड़ा सा चूंकि कामकाज है और लोगों को तैयार होकर के वक्त पर जाना आना, सुबह जाना शाम को आना, इस तरह के काम रहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आवागमन में दिक्कत आती है।
1: बिल्कुल, तो कुछ कार भी ऐसे होते जो बाधित होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है ना कि जहाँ पर है तो थोड़ा परेशानी होती है,
0: जी जी
1: तो मैनेज कर चलना पड़ता है।
0: हाँ, पूनम भी समझदार है हमारे श्रोताओं में, जो समझदार कुछ श्रोता हैं।
1: जी हाँ, और सर ये समझदारी जो है ना आप ही से सीखी है, और फिर हम आपको सुनते आ रहे हैं और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो विचार हैं आप सुनते हैं वो सब सुनने में बहुत
0: ये
1: अच्छी
0: सब
1: और
0: देखिए, आप जैसे जो अच्छे श्रोता हैं, जो स्वयं रेडियो से इतना जुड़े हैं, रेडियो एक संस्कार, संस्कृति और भारतीय जो परंपरा है वो उसका ध्वज वाहक है, और वो लोगों में संस्कार डालने का प्रयास आकाशवाणी विविध भारती का हमेशा रहता है।
1: बिल्कुल। और सर कहते हैं ना कि ये रेडियो का के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है,
0: जी
1: जो
0: जी
1: कि
0: हम सबके
1: सिखाने का हम सब करता है।
0: जी आज तो जैसे मोबाइल, इंटरनेट वगैरह ये सब चीजें आ गई हैं, लेकिन एक वक्त था कि आसानी से पहुंच, और कुछ भी करते हुए आप किसी कामकाज में हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, तो रेडियो हर चीज, जरूरी चीज, जीवन से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंचाया करता था सहज ही। और पूनम आवाज मिल रही है? हेलो, ता है पूनम आपसे फोन की जो लाइन है संपर्क वो कट गया है। तो बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, बात पूरी हो जाती तो और भी अच्छा होता, लेकिन फिलहाल गीत हम आपको एक सुनवा रहे हैं, उम्मीद है ये गाना अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो
0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, स्वागत है।
1: मेरा शुभ नाम है देवजीत दास और मेरा गांव का नाम है बद्रीपार।
0: जी जी, बहुत बढ़िया।
1: कछार
0: आसाम से हमारे देवजीत जी आज जुड़ गए और आज आप अच्छे से जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं, यही काम कीजिएगा। कैसा मौसम है आपके यहाँ?
1: मौसम तो गर्मी है, और आपका वहाँ पर आज मौसम कैसा है?
0: हम लोग के यहाँ तो थोड़ा सा जैसे कि ये बारिश का सीजन मौसम शुरू हो गया, बरसात तो आपके यहाँ भी होगी, लेकिन बारिश क्या पर्याप्त नहीं हो रही है क्या?
1: तो दिल के पास आपका घर बना लिया।
0: क्या
1: दिल
0: कहने,
1: के पास आपका घर बना लिया। खाबों में आपको बसा लिया।
0: वाह,
1: मत पूछो कितना चाहते है, हर कटाव को मुकद्दर बना लिया।
0: क्या कहने, ये बात जैसे कुमार सानू के लिए भी है और हमारे प्रोग्राम के लिए भी।
1: तो सर, मैं आज कुमार सानू के लिए कुछ बात करूंगा आपके साथ।
0: जी जी बिल्कुल, बताइए।
1: कुमार सानू का असली नाम है केदार भट्टाचार्या। और कुमार सानू का जन्म हुआ पश्चिम बंगाल कोलकाता में 1997 में 20 अक्टूबर तारीख के। और कुमार सानू ने 1990 साल में संगीत जगत में योगदान किया है। और कुमार सानू ने 1993 साल में एक दिन में 28 गाना रिकॉर्ड किया है। और कुमार सानू ने गाना भी गाया है बंगाली, हिंदी, आसामी, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, गुजराती, नेपाली, तमिल।
0: जी जी, बहुत बड़े फैन हैं आप कुमार सानू के।
1: कुमार सानू ने आशी की सिनेमा में सुपरहिट गाने हुई
0: जी।
1: और एक गाने हैं आप तेरे बिन जिनेगी हम, फैंटास्टिक गाना कुमार सानू दा, मेरा फेवरेट सिंगर कुमार सानू दा, इंडिया और सारा देश का नंबर वन गाना सिंगर कुमार सानू दा।
0: हाँ, यानी जब वो कैसेट सीडी का एक दौर था तो जरूर आप मुसलसल लगातार कुमार सानू के ही गाने सुनते रहते होंगे।
1: मैं तो कुमार सानू के गाना सुनता हूँ। और मैं तो आपके साथ एक श्रोता को बात सुना, मेरा भैया है आशीष कुमार ना।
0: जी जी,
1: तो उसने तो हमेशा कुमार सानू को।
0: जी हाँ, हमारे एक आशीष कुमार भी हैं, वो भी कुमार सानू के ही गाने सुनते हैं और गाते हैं।
1: जी।

0: जी मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ पसंद का फिल्म का नाम है आशिकी और गाने का बोल है आप तेरे बिन जिनेंगे हम एक गाना सुनना चाहिए।
1: और इतना आप कुमार सानू को सुनते हैं तो कुछ उनकी तरह गाने का भी अंदाज आप में आ गया होगा।
0: मैं तो एक गाना में कुमार सानू तो मैं बहुत ही जानता हूँ गाना।
1: जी जी बताइए जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं गाना कुमार सानू का वही गा के सुनाइए।
0: गाना भी है दिल जो टूटा तो बहुत दूर तक आवाज गई है डरने वाले सितमगर को खबर ना ताकी हुई। दिल तो दिल है दिल का क्या है जिस पे आया उस पे आया दिल की बातें दिल की जाने दिल की समझे दिल की माया पूछिए तो जरा मुझको क्या चाहिए इक्तदार हो चुकी इंतहाल चाहिए। दिल तो दिल है दिल का क्या है
1: क्या कहने। आप बहुत अच्छा गाते हैं देवू जी। जी हम चाहते हैं कि हर श्रोता की बात पूरी हो जाए उनकी हर उम्मीद और जो तमन्ना है वो पूरी हो जाए। आपने प्रोग्राम में फोन किया और कुमार सानू का इतना अच्छा गाना सुनना चाहा और सुनाया।
0: ये गाना कुछ मैं बड़ी बार डेडिकेट
1: करूंगा। जी जी बताएं जल्दी से।
0: मेरे पिताजी है जितिन कुमार दास और माता जी शिल्पकरणी दास और भाई है जोजीत दास और आपके लिए सुन गाना भी और ये गाना कुछ मैं दोस्तों के साथ डेडिकेट करूंगा।
1: जी
0: मेरे आसाम से मेरे बड़े भाई है अनु कुमार भट्टाचार्य और दीदी है श्वेता बाबा भट्टाचार्य जी और है मेरा भाई है आशीष कुमार और है मेरा दादा है अनिल कुमार गुप्ता।
1: जी
0: बात का लगा
1: तो गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर
0: आकाशवाणी वाराणसी में सुनते हैं प्रोग्राम डेडिकेट करूंगा।
1: जी गीत सुनते हैं आपकी पसंद पर। जी
0: मैं तो श्रोता को मौका देना चाहता हूँ मैं तो दो हफ्ते के बाद ट्राई करता हूँ श्रोता को मौका देना चाहता हूँ और हेलो फरमाइश में सब श्रोता दो हफ्ते के बाद फोन करिए।
1: बिल्कुल अब गीत सुनते हैं आशिकी है फिल्म का नाम। बहुत शुक्रिया नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: क्या बात है,
0: स्वागत है।
1: जी जी जी सर, बस जी जी रजा नगर यहाँ से शकील अहमद अंसारी बोल रहे हैं।
0: हाँ, बड़े दिनों बाद आपका फोन लगा है।
1: हाँ सर, क्या करें, मौका ही नहीं मिलता है।
0: हाँ हाँ, ये अच्छा है। जब श्रोता कोई कहता ना कि हम व्यस्त थे तो हमें थोड़ा सा उतनी तकलीफ नहीं होती। जब ये होती है कि वो कोई कहता है कि कई साल से लगा रहे, हमेशा फोन बिजी रहता है या उठता नहीं है उस मुकाबले।
1: जी जी जी जी जी,
0: तो श्रोता अपने अपने कामकाज में व्यस्त रहें और मौका निकालकर सुनते रहें, ये ही बड़ी बात है आकाशवाणी और रेडियो की उपलब्धि है कि श्रोता जुड़े रहें उनसे।
1: यही बात है सर, इसलिए कि अगर कॉल लगा दें, अगर लगाएंगे तो सुन नहीं पाते हैं।
0: और लगाने में भी हमें भी समझ में आता है कि श्रोता को आधा एक घंटा वक्त देना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है।
1: हाँ।
0: और आजकल जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है और इतने सारे काम जिम्मेदारियां हर किसी की आ गई हैं कि पहले वाली फुर्सत तो नहीं रही अब।
1: जी सर, जी सर।
0: तो
1: इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि एफएम विद भारती पे हेलो फोन इन फरमाइश चालू करिए।
0: जी जी, वो हमारी अगर कुछ ऐसी चल पाई तो जरूर वहाँ भी ये प्रोग्राम चल पाएगा।
1: इसलिए कि अगर हम नहीं सुन पाएंगे तो हमारे दोस्तों यार, हमारे काशी नगरी के श्रोता तो सुन पाएंगे।
0: जी जी, वैसे हमें उम्मीद है कि कुछ आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि एफएम पर जो आकाशवाणी का प्रसारण है वो भी आपको एफएम पर मिल सकता है।
1: अरे वाह, क्या बात है, तो अच्छी बात है।
0: क्योंकि मीडियम वेव का रिसेप्शन हम लोग भी मान रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर आवाज साफ नहीं आती और लोगों के पास मीडियम वेव के रेडियो सेट अब उतने रह नहीं गए हैं, मेंटेन नहीं है।
1: हाँ यस सर, ये बात सही है।
0: जी जी, और जैसे शॉर्टवेव फेज आउट हो गया, अब शॉर्टवेव पे कोई नहीं सुनता और
1: हाँ।
0: तो वक्त के साथ साथ थोड़ा सा एफएम पर आपको गुणवत्ता अच्छी

0: मिलती है जहाँ तक मिलती है।
1: नहीं नहीं सही बात है सर, यही हमारा भी मांग है कि अगर एक अलग से ट्रांसमीटर बैठाया जाए एफएम के,
0: जी जी जी,
1: तो दोनों चैनल चलेगा तो हमारे लोकल,
0: हाँ हाँ, जैसे हमारे श्रोता को फिर हाथ में रहेगा कि वो जो चैनल चाहें जिस वक्त वो सुन सकते हैं।
1: हाँ जी जी जी सर।
0: और अब बता दें आज किस गाने की फरमाइश है आपकी?
1: कलियों ने घूंघट खोली, दिल ने फिर याद किया।
0: दिल ने फिर याद किया, उस हाँ, जमाने में बड़े अच्छे अच्छे बोल लिखते थे हमारे जो गीतकार थे।
1: जी जी जी जी सर, जी सर।
0: तो
1: बताएं, एक बात ये और है कि इतना बारी पीकेएलडी मैंने सुना, हाँ, इसलिए कि चार सप्ताह तो हमारा छोड़ गया काउंटरी को, जैसे अगला सप्ताह सुना, ये सप्ताह सुना, बड़ा अच्छा लगा।
0: अच्छा, कमेंट्री के कारण जब कमेंट्री आ रही थी ना, तो उस समय ये प्रोग्राम दिन में होता है।
1: हाँ सर
0: जी,
1: 1 बजे आता है ना।
0: हाँ, कमेंट्री जब होती है तो 1:15 बजे आता है। हाँ, ये कि दिन का वक्त है थोड़ा सा, तो उस समय आप लोगों को दिक्कत होती होगी।
1: अनिल कुमार गुप्ता जी का
0: ये कि हमारे ये जो प्रोग्राम है खासतौर से कई, वो आपको आकाशवाणी का फेसबुक पेज जो है वाराणसी का, वहाँ पर मिल जाता है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मिल जाते हैं प्रोग्राम।
1: हाँ सर, ये सुविधा तो है, मोबाइल लाइन है हमारे पास।
0: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो वहाँ पर कभी भी दोस्त मित्र जब इकट्ठा होते हैं, वैसे पहले जैसी अब दोस्तों मित्रों में भी मेलजोल और उतना वक्त अब किसी के पास नहीं रहा, हम भी समझ रहे हैं।
1: हाँ हाँ हाँ सर, ये बात तो है।
0: पहले लोग मिलने के लिए दूर शहरों से बनारस आ जाते थे, आप जैसे श्रोताओं से मिलने के लिए।
1: हाँ हाँ जी सर, जी सर।
0: तो अब गीत आपको सुनवा रहे हैं, दिल ने फिर याद किया, जिस तरह आपने याद किया, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: जी जी।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश। सर हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: नाम क्या है आपका?
1: पंकज कुमार।
0: पंकज जी कार्यक्रम में स्वागत है। तो वहाँ पर क्या करते हैं आप बिलासपुर में?
1: रेलवे में सर करते हैं।
0: जी जी। और आपने पहले भी फोन किया है?
1: नहीं पहले फोन नहीं किया है। व्हाट्सएप पर जो कार्यक्रम आता है ना
0: उसमें आपके नाम आते हैं।
1: उसमें मेरे नाम आए हैं, मैं उसमें मैसेज किया।
0: जी जी। और आप रहने वाले बिहार या झारखंड के हैं कहीं के?
1: बिहार के। अभी कैसे मालूम
0: थे? जी जी। कौन सी जगह के रहने वाले हैं?
1: बिहार में समस्तीपुर है।
0: हाँ हाँ हाँ। आपकी बातचीत का जो तरीका है वो समस्तीपुर मधेपुरा बाढ़ वही वाला है। तो बहुत बढ़िया है। रेलवे में वहाँ पर काम करते हैं आप?
1: जी सर रेलवे में काम करते हैं।
0: बहुत अच्छा। तो रेलवे में तो ये फायदा है कि रनिंग में है या फिर ऑफिस में है?
1: ऑफिस में।
0: बढ़िया है। फिर भी ये तो है कि दूर दराज से देश भर के लोग जिस तरह से आकाशवाणी के कार्यक्रमों में जुड़ते हैं वैसे रेलवे स्टेशन पर भी लोगों का रेल से तो पूरे देश का ताल्लुक है और लोग आते जाते हैं रेल के ही जरिए। तो प्रोग्राम कैसे लगते हैं आप?
1: बनारस होकर हम घर से आते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: स्टोर में है हम लोग।
0: जी जी जी जी। तो व्यस्तता है और अच्छा काम आप कर रहे हैं। भारतीय रेल दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है और जो सेवा कार्य में यातायात के लगी हुई है। ये बताएं कि कार्यक्रम कैसे लगते हैं हमारे केंद्र के और कैसे कहाँ सुनते हैं आप?
1: मैं मोबाइल ऐप से सुनता हूँ। पहले हमारे गांव में रहते थे उस समय मोबाइल से नहीं आ पाता था, वो शॉर्ट वेव पर ना
0: जी जी
1: सुनाई देता था।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: जिस समय से मोबाइल ऐप आया ना उस समय से मोबाइल से ही सुनते हैं।
0: बिल्कुल। और देखिए आप जैसे श्रोता भी हमसे जुड़ जाते हैं हमें भी बहुत खुशी होती है। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी?
1: गाने है वो सिंदूर सिनेमा गाना है। पतझड़ सावन बसंत बहार।
0: हाँ एक बरस के मौसम चार।
1: पांचवा मौसम प्यार का।
0: क्या कहने जो अभी मौसम आया हुआ है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी सर, जी।
0: तो लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार। शुक्रिया।
1: थैंक यू सर।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो सर नमस्कार।
0: नमस्कार
1: सर, मैं ग्रामीण जिला कैमूर भंगा बिहार से अलीम अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: अलीम अंसारी
1: जी सर,
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं और आपके यहाँ मौसम कैसा है? ये तो जैसे कैमूर भभुआ, ये तो थोड़ा सा पर्यावरण वाला हरियाली वाला इलाका है।
1: जी सर मोर कल से बारिश हुई रात में सर। मौसम ठीक ठाक है।
0: बढ़िया है। और आप किस काम काज में लगे हैं? हालांकि आपसे पहले भी हमारी बात हुई है, याद आता है।
1: जी सर कालीन की काम करते हैं।
0: जी कालीन का काम आपने बताया था, यानी कालीन सिर्फ भदोही और मिर्जापुर के इलाके में ही नहीं होता है, आसपास के जुड़े हुए अन्य जनपदों में भी होता है।
1: जी सर
0: और कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: सर ये कार्यक्रम आपका बराबर सुनता हूँ, आपको अच्छे लगते हैं।
0: आज किस गाने की फरमाइश है आपकी?
1: सर आज गाना सुनवा दीजिए, फिल्म बरसात हो रही है, बरसात होने दे। जान की कसम
0: का ये गीत है जो बारिश के मौसम में हमारे श्रोता बहुत सुनते हैं इस गाने को। तो बरसात हो रही है, बरसात होने दो वाला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजें हैं, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। गीत आप तक पहुंच रहा है, जान की कसम है फिल्म का नाम। नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, मैं अनिकिता बात कर रही हूँ कचहरी से।
0: हाँ थोड़ी सी आवाज में सीटी की आवाज आ रही, कोई ईयरफोन हेडफोन ऐसा कुछ है तो उसको अलग कर दीजिए और सिर्फ फोन से बात कीजिए।
1: अच्छा नहीं है सर, कुछ भी नहीं लगाया हुआ है।
0: तब तो ठीक है। और क्या हाल चाल है आपके?
1: ठीक ठाक है सर, आप बताओ।
0: निकिता कंगोत्रा,
1: हाँ
0: ये बात है जो आपका,
1: फोन 1 साल के बाद लगा सर, मैंने इतनी कोशिश
0: लेकिन
1: की है,
0: सोचिए
1: आगे
0: मुझे
1: मैंने
0: याद है
1: आपको।
0: कि आपके सेब और अखरोट के बागीचे हैं और खेती बाड़ी पशुपालन में आप सब परिवार लगी रहती हैं और बच्चे आपके स्कूल जाते हैं।
1: हाँ सर, आज बड़ी बारिश है, कल परसों की हो रही है, आज भी नहीं है स्कूल खुले।
0: अच्छा पहाड़ी इलाकों में जब बारिश होती है तब तो अलग तरह की दुश्वारियां आती होंगी क्योंकि वहां पर पत्थर वगैरह गिरने का भी चांस रहता, आशंका रहती
1: हाँ,
0: है।
1: रोड पूरा ब्लॉक हो जाता है और फिर बच्चे कहाँ जाने हैं स्कूल को।
0: फिर तो घर में ही बच्चे रहते होंगे, उधमपुर में उधम मचाते होंगे।
1: हाँ पूरा।
0: और राकेश जी कहाँ हैं, क्या हालचाल हैं उनके?
1: जी वो भी ठीक है, वो भी अपने आप से फोन लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं।

0: लग गया तो वो
1: जिसका लग गया, यानी आज जो है लॉटरी आपकी लग गई है।
0: हाँ सर, वो बोल रहे हैं बात करने के लिए।
1: और बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? और जो कामकाज है आपका अखरोट बाग बगीचे वाला, इस बारिश के मौसम में खेती बागवानी में क्या होता है इस समय?
0: हाँ, अब सब्जी सब्जियां वगैरह मक्की लगाई है, अखरोट सेब हैं। हाँ
1: तो ये तो जैसे अभी तैयार हो रहे होंगे, ये जाड़े में इनका जो उपज होती है अखरोट वगैरह सेब वगैरह की।
0: हाँ सर,
1: लेकिन मकई जो जो बगीचे के नीचे जो जगहें होंगी वहां खेती होती होगी।
0: हाँ।
1: तो बताएं क्या कह रही हैं आप, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: जी सर, मुझे कोई भी गाना बता दीजिए, धड़कन फिल्म का कोई भी गाना।
1: अच्छा, धड़कन का।
0: हाँ
1: तो धड़कन का कौन सा? तुम दिल की धड़कन में रहते हो, दुल्हा क्या है,
0: दिल की धड़कन में रहते हो,
1: यही सुनना है। ठीक है, फिल्म धड़कन का अब गीत आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: बस तुम रहते हो।
1: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
2: सर नमस्कार।
1: नमस्कार, स्वागत है राकेश गंगोत्रा जी।
2: जी सर, तो बहुत बार ट्राई किया, चार बार लगा था मेरा फोन।
1: आजकल थोड़ा सा ये हो रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, लाइनों में खराबी आ रही है, कई दिनों से, काफी समय से ये दिक्कत तो हो रही है।
2: हाँ सर, वही प्रॉब्लम है, पिछली बार भी लगा था फोन, उठा नहीं था।
1: जी जी जी, और कभी आपको लगेगा कि उठता नहीं है और कभी लगेगा कि आवाज नहीं आ रही है।
2: नहीं, कई बार ऐसा हो रहा है कि कट हो रहा
1: है। तो आवाज नहीं आती है श्रोता की, तो हम लोग को फिर वो काटना पड़ जाता है। अब बताएं क्या हाल चाल है आपके, और आपकी बागवानी और खेती बाड़ी का क्या हाल है?
2: अभी ठीक है सर, फ्रूट का सीजन चल रहा है।
1: हाँ, मतलब किस चीज का?
2: फ्रूट का, फल।
1: फल फ्रूट का, हाँ हाँ। तो क्या क्या है इस वक्त आपके यहाँ?
2: इस वक्त सर सेब है, अखरोट है।
1: तो बहुत बढ़िया, हालांकि हमारे यहाँ सेब तो बहुत महंगे हैं इन दिनों।
2: उधर क्या अभी?
1: अभी इधर में ऐसे तो 280 इस तरह से है।
2: नहीं सर, इधर तो अभी नहीं आते, ऐसे 100 के करीब हो गया अभी।
1: हाँ, तो अभी इसका जैसे सस्ता वाला सीजन कब होता है?
2: 15 किलो बिकेंगे।
1: इधर
2: तो रेट 10-15 हो जाएगा महीने तक।
1: अच्छा, जब वहाँ 10-15 होगा तब यहाँ 120 हो जाएगा। नहीं तो अभी तो 300 के रेंज में है। ये कि दूरी भी है, उतनी दूर से आना जाना, फिर चीजों को ठीक से रखना, ये सारी चीजें तो होती हैं। और प्रोग्राम सुन रहे हैं, कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको? राकेश जी, आपकी भी आवाज जो है वो कट गई, तो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर, और उम्मीद है कि ये गीत आपको पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। राकेश गंगोत्रा जी, आपने उतनी दूर से

श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से 10:50

50 मिनट के बीच। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 यानी 0542। 2221052 के अलावा आप 2221050 पर भी ट्राई कर सकते हैं। और उम्मीद है आप तमाम सुनने वालों से हमारी बातचीत हो और आपकी फरमाइशें हम पूरे करें। ये कार्यक्रम प्रसारित होता है शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे तक। अब आज का प्रोग्राम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है

0: कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे काला सागर से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन कर लें। परामर्श में कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्यामा देवी, पति का नाम श्याम बिहारी विश्वकर्मा, ये लालगंज मिर्जापुर की निवासी हैं और 24 अप्रैल 2026 की सुबह 8 बजे से अपने घर से लापता हैं। श्यामा देवी की आयु है 31 वर्ष, कद 5 फीट, रंग

30 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था नीले रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर को सूचना दें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलिया से प्राप्त एक सूचना के मुताबिक नीरज कुमार मिश्र, पिता का नाम अशोक मिश्र, ये बांसडीह कोतवाली बलिया के निवासी हैं और 7 मार्च 2025 की रात्रि 8 बजे से अपने घर से लापता हैं। नीरज कुमार मिश्र की आयु है 36 वर्ष, कद 6 फीट, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था गुलाबी शर्ट और नीले रंग की जीन्स। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलिया को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय आजमगढ़ से प्राप्त एक सूचना के अनुसार प्रीति, पिता का नाम जलधारी, ये ग्राम चिताराम महमूदपुर दीदारगंज आजमगढ़ की निवासी हैं और 10 मार्च 2026 से अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली और तब से लापता हैं। प्रीति की आयु 15 वर्ष, कद करीब 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था नीले रंग की टी शर्ट और नीले रंग की लोअर। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय आजमगढ़ को सूचना दें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज रात 10 बजे आप

कार्यक्रम में आज का विषय है निसंतानता यानी इनफर्टिलिटी। विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति उपाध्याय, इनसे बातचीत की है शिखा श्रीवास्तव ने। लोकरंग कार्यक्रम होगा 1:30 पर। 1:15 पर आज इतवार है कार्यक्रम में आप सुनेंगे झलकी हो जाने दो शादी, लेखक गुलाब सिंह, प्रस्तुति डॉक्टर वरुण श्रीवास्तव की। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 पर इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान दिफा, बरामदात, सियासी तावुन और दोस्त ममालिक के साथ दोस्ती में मुसलसल नई बुलंदियों को छू रहा है। आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कारगिल विजय दिवस के बहादुर सिपाहियों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन हम वतनों को हमारे बहादुर फौजियों की गैरमामूली बहादुरी की याद दिलाता है और हर हिंदुस्तानी को फख्र से भर देता है। मादर वतन के दिफा में अपनी जानें कुर्बान करने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने हम वतनों से अपील की कि वो एक महफूज, काबिल और खुद निसार हिंदुस्तान की तामीर का अहद करें। मन की बात में कैच द रेन मुहिम के बारे में वजीर आजम ने कहा कि यह खसूसी मुल्कगीर मुहिम 4 जुलाई से चलाई जा रही है। इस इकदाम के तहत बारिश के पानी की जखीरांदोजी, जमीनी पानी को रिचार्ज करने और आबी जखायर और बागात की बहाली को नई रफ्तार मिल रही है। जनाब मोदी ने गांवों और शहरों से लेकर पंचायतों और समाजी तंजीमों तक इस मुहिम में भरपूर शिरकत पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने बताया कि पुराने तालाबों को साफ किया जा रहा है और कुओं की तजीन और आराइश की जा रही है। जेर जमीन पानी के रिचार्ज के लिए बोरवेल अब इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने अहले वतन से अपील की कि वो करीबी तालाबों, कुओं की जिम्मेदारी लें ताकि पानी की एक एक बूंद को बचाया जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात के 136वें एपिसोड में मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को मुल्क भर में नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह दिन मुल्क के बुनकरों की महारत और तख्लीकी सलाहियतों के एहतराम की अलामत है। उन्होंने लोगों से जोर दिया कि वो हैंडलूम दस्तकारी की हौसला अफजाई करके और लोकल फॉर वोकल के जज्बे को मजीद तकवीत देकर बुनकरों की इज्जत करें। वज़ीर आज़म ने खादी का भी जिक्र करते हुए कहा कि महात्मा गांधी को यह बहुत पसंद थी। उन्होंने कहा कि खादी हालिया बरसों में बहुत मकबूल हुई है। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो आइंदा त्यौहार के मौसम में खादी, हैंडलूम या दस्तकारी से बनी कम अज़ कम एक प्रोडक्ट जरूर खरीदें। आज अपने मन की बात खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई को मुनक़िद एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का जिक्र भी किया।
1: एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहाँ एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है।
0: प्रोग्राम में उन्होंने बिजनौर जिले के लखीवाला गांव के सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन का जिक्र करते हुए कहा,
1: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई।
0: वजीर आजम ने नौजवानों के जरिए हाल ही में स्पोर्ट्स में हासिल की गई कामयाबियों का भी जिक्र किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ दो रोजा दौरे पर कल आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के शिवाजी मंडप ऑडिटोरियम में आला तालीम के महकमे के 7,50,000 से ज्यादा असातिज़ा और उनके जेरे किफालत अफराद को सेहत की हिफाजत फराहम करने वाली वजीर आला टीचर कैशलेस मेडिकल स्कीम के आगाज के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा,
2: कैशलेस की सुविधा के साथ ही आज हम लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक से एक एमओयू भी किया है, जो आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी इसके माध्यम से देने जा रहा है, जिसमें दुर्भाग्यवश अगर

0: किसी शिक्षक के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो शिक्षक के परिवार को हम लोग इस योजना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक 1.5 करोड़ रुपए तक वहां पर सहायता राशि उपलब्ध करवाएगा।
1: ये स्कीम महकमा हायर एजुकेशन के 1,28,000 से ज्यादा असतजा और उनके जेरे के फालत खानदानों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त मियारी और कैशलेस तिब्बी सहूलियात फराहम करने की तरफ एक तारीखी कदम है। वजीर आला आज आगरा के साथ मैनपुरी और इटावा में भी मुख्तलिफ बहबूदी प्रोग्रामों में शामिल होंगे। दरियस्ता उत्तर प्रदेश के लखनऊ वाक़े नेशनल पीजी कॉलेज में वजीर आला टीचर कैशलेस मेडिकल स्कीम की इफ्तिताही प्रोग्राम में नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क्यादत में उत्तर प्रदेश हुकूमत तालीम और सेहत दोनों शोबों में अवामी मफादी फैसलों के जरिए रियासत को नई बुलंदियों की जानिब गामजन कर रही है। आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर उन भारतीय फौजियों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने 1999 में कारगिल जंग में मुल्क का दिफा करते हुए अजीम कुर्बानियां दी। कारगिल विजय दिवस पर सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खराज अकीदत पेश किया है। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में तश्कील दी गई नई एसआईटी टीम का दायरा बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद इसमें आईजी किरण एस, डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा और एसएसपी अयोध्या डॉक्टर गौरव ग्रोवर शामिल हैं। इससे पहले नई एसआईटी में लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत और खसूसी सेक्रेटरी खजाना नील रतन कुमार शामिल थे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नश्र किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:16 हुए हैं। आज इतवार है। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी हो जाने दो शादी। लेखक हैं गुलाब सिंह, प्रस्तुति डॉक्टर वरुण श्रीवास्तव की।

0: प्रभा, वो कल्लू के रिश्ते के लिए जो फोटो आई है सब लेकर आना तो जरा।
1: दीदी तुम जिस सोफे पर बैठी हो उसके सामने वाले टेबल के दराज में तो है।
0: हाँ ये रहा लिफाफा। ये लड़की देखने में तो ठीक लग रही है लेकिन इसकी नाक तो चिलगोजे जैसी है, देखो तो।
2: चिलगोजे जैसी नहीं, मिर्ची जैसी।
0: अगर ये घर में बहू बनकर आएगी ना तो यहाँ महाभारत होगा, महाभारत।
2: देखो इसको, देखो हमें ऐसे देख रही है जैसे कच्चा चबा जाएगी।
0: अरे लेकिन वो हमें कच्चा क्यों चबाएगी, घर में घी है, तेल है, तंदूर है, उसमें भूनकर ऊपर से नमक मिर्च छिड़कर भी तो चबा सकती है।
2: लो तुम ही देखो, फोटो क्या तुम्हें इतने धीरज वाली दिखाई देती है कि भूनने और नमक छिड़कने का इंतजार कर सके।
0: ओह लो तब ये फोटो देखो।
2: देखो दीदी इसका दांत देख रही हो?
0: फोटो में तो कहीं दांत नहीं दिखाई देता।
2: अच्छा बताओ अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं ना। लेकिन हम लोग देख रहे हैं वैसे ही इसका दांत भी है।
0: अब मुझे भी दिखाई देने लगा।
2: वो कैसे?
0: इसके मुंह बंद करने की स्टाइल से।
3: अरे आखिर तुम लोग कब सीखोगी मुंह बंद करने की स्टाइल?
4: देखो जी हमारी बेटियों पर तो तुम रोब मत ही गांठा करो। क्यों बंद करेंगी ये अपना मुंह? तुम बंद रखो अपना मुंह।
3: अरे भगवान, अरे ये दिन इन्हें भी दूसरों के घर जाना है ना।
4: जब जाना होगा तो देखा जाएगा। अभी तुम इनका मुंह बंद करने वाले होते कौन हो?
3: अरे इनका भागा बाप भगवान।
5: देखा माँ, पिताजी क्या कह रहे हैं हमें?
4: अभागिन। क्यों जी, तुमने मेरी बेटियों को अभागिन कहा?
5: अरे क्या था तुम्हारे पास, एक टुटू करती सड़ी गली कपड़े की दुकान। बड़ी बेटी आई तो तुमको पहली बार 10,000 का मुनाफा हुआ।
2: और मैं पैदा हुई तो हम लाखों में खेलने लगे, है ना माँ?
4: बोलो सब झूठ बोल रहे हैं।
3: अरे तौबा तौबा, अरे तुम और झूठ। अरे हो सकता है बड़े बड़े सत्यवादी कभी गलती से झूठ बोल गए। अरे पर तुमसे तो गलती से भी झूठ नहीं बोला जा सकता भगवान।
4: घर की लक्ष्मी को अगर अब अभागिन कहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
3: अरे तुमसे बुरा कोई नहीं होगा मुझे मालूम है।
4: हाँ

0: बड़ी बेटी आई तो तुमको पहली बार 10,000 का मुनाफा हुआ।
1: और मैं पैदा हुई तो हम लाखों में खेलने लगे, है ना माँ?
0: बोलो, सब झूठ बोल रहे हैं।
2: अरे तौबा तौबा, अरे तुम और झूठ। अरे हो सकता है बड़े बड़े सत्यवादी कभी गलती से झूठ बोल गए। अरे पर तुमसे तो गलती से भी झूठ नहीं बोला जा सकता भगवान।
0: घर की लक्ष्मी को अगर अब अभागिन कहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
3: अरे तुमसे बुरा कोई नहीं होगा मुझे मालूम है।
0: हाँ तो समझ लो। हाँ
3: तुम्हारी छत्र छाया में इतनी उम्र गुजार दी, अभी कुछ समझना बाकी रह गया है क्या?
0: अरे भगवान से मनाओ कि मुझ जैसी पत्नी पा गए, जरूर पिछले जन्म में कुछ पुण्य का काम किए होंगे।
3: मैं भी यही सोच रहा हूँ कि बिना पुण्य किए तुम्हारी जैसी पत्नी मिल ही कहाँ सकती थी।
0: रोज जो हजारों की थैली लाते हो दुकान से कमा कर, वे हमारे ही भाग्य की कमाई है। तुम ही देख लो कितने लोग दुकान खोल कर बैठे हैं, सबकी यहाँ ऐसी कमाई क्यों नहीं होती?
3: अब क्योंकि और लोगों के घर तुम जैसी लक्ष्मी है ही नहीं।
0: हाँ तब अंदर जाओ, हमें फालतू बोलने की आदत नहीं। नौकर से खाना खाकर पिछले दरवाजे से दुकान चले जाओ।
3: अच्छा भाई अच्छा।
0: हाँ तो बेटी फोटो कैसी है, मैं भी देखूं।
1: इन दो को छोड़कर एक भी अपने कल्लू के लायक नहीं है माँ।
0: ये तो देखने में बहुत सुंदर है।
1: भैया के साथ इनकी जोड़ी खूब जमेगी।
0: ना बाबा ना, मुझको ऐसी सुंदर बहू नहीं चाहिए।
1: मतलब तुम्हें और सुंदर बहू चाहिए?
0: नहीं जी, मुझे बहू तो कैसी भी चलेगी, माल गहना खूब सुंदर चाहिए।
1: और बहू नहीं सुंदर चाहिए?
0: देखो राज की बात बताती हूँ, तुम भी जब सास बनना तो याद रखना कभी सुंदर बहू नहीं लानी चाहिए।
1: वो क्यों?
0: सुंदर बहू आई नहीं कि बेटा हाथ से निकला।
1: कैसे?
0: अरे अक्कल की मोटी, ये भी नहीं समझती मर्द चाहे जितना बन जाए लेकिन सुंदर औरत हमेशा उसे पल्लू में बांध कर नचाती रहेगी।
1: और अपना कल्लू तो इतना सीधा है कि पढ़ाई लिखाई के सिवा उसे कुछ दुनियादारी तो आती ही नहीं।
0: इसीलिए तो कहती हूँ उसे 20-22 बरस तक हमने पाला पोसा है और अब उस पर राज करेगी कोई और। उसके लिए तो ऐसी बहू चुनो जिसे देखने के बाद वो सीधा मेरे पास भागा भागा आए।
1: मतलब तुम्हें बहू नहीं चुड़ैल चाहिए। ये कैसी रहेगी माँ?
0: चुप। अच्छा इन फोटोओं में तुम सबको सबसे खराब फोटो कौन सी लगती है?
1: ये दांत वाली।
4: नहीं ये कच्चा चबाने वाली सबसे अच्छी रहेगी।
1: और माँ को कच्चा चबा गई तो?
0: किसी बाप की लल्ला ने अभी ऐसी बेटी नहीं जनी कि वह मुझे कच्चा चबा जाए।
4: इसीलिए तो माँ हमें तुम पर आज भी गर्व है।
0: क्या जो मन में आता है बक देती है। जानती हो मेरी शादी के पहले सुनते थे तुम्हारे पिताजी भी बहुत तेज मार खाते, अब देखती हो पीछे पीछे कैसे दूम हिलाते फिरते हैं।
4: तुझे देखकर कभी कभी माँ मुझे ऐसा लगता है कि हमारा और तेरा कई जन्मों का रिश्ता है। माँ हमारी सास भी कोई चुड़ैल जैसी बहू तो नहीं खोज रही होगी?
0: अरे नहीं, तुझे तो जो सास देखेगी वही पसंद कर लेगी।
4: इसका मतलब मैं एकदम चुड़ैल जैसी हूँ?
1: और क्या, चिंता क्यों करती है, तेरे लिए तो सासों में मारा मारी हो जाएगी।
0: अरे चुप करो, सभी सासें तेरी माँ जैसी अक्कल की तेज नहीं होती। वो तो बिचारी अपने बेटों को जान जैसी बहू लाने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठती हैं।
1: पर माँ मुझे तो लगता है कि सासों का कोई स्कूल चलता है या जरूर कोई गुप्त संगठन है, नहीं तो ये सभी सासें कमोवेश एक ही दिमाग की नहीं होती।
0: इसका मतलब तू मुझे और सासों की तरह ही समझती है?
1: नहीं माँ, कहाँ और सासें और कहाँ तू, कहाँ राजा भोज, कहाँ। अरे और सब सासें तो तेरी चेली की भी हैं, चेली।
0: देख बेटियों के लिए दूसरे तरीके से सोचना चाहिए और बेटों के लिए दूसरे तरीकों से। मैं उस घर से आई हूँ जहाँ मर्द औरत की तरह रहते थे और नारी मर्द की तरह।
1: तू किस्मत वाली थी माँ।
0: मैं किस्मत वाली नहीं थी, मैंने लड़ाई लड़के ये हासिल किया था।
1: लेकिन हमसे लड़ाई तो नहीं हो पाती माँ।
0: इसीलिए तो तेरे ससुराल वाले जब तेरी सिधाई की चर्चा करते हैं तो मेरा माथा शर्म से झुक जाता है।
4: ये तुम्हारा नाम डुबो कर रहेगी माँ, इससे कोई उम्मीद मत रखो।
0: मेरी

0: वहां जब आई तो उन्होंने कुछ दिन चंद्रमुखी का नाटक किया, फिर बहुमुखी का, और अंत में ज्वालामुखी के रूप में स्थापित हो गई।
1: क्या मतलब?
0: अंत में आते आते हमारे पिता यानी तुम्हारे नाना उनके चरण दास हो गए।
1: फिर?
0: काम का बंटवारा हुआ, तय हुआ घर गृहस्थी के मारे में माँ की बात मानी जाएगी और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विषयों में तुम्हारे नाना की बात मानी जाएगी।
1: और काम?
0: काम भी आधा आधा बट गया। जैसे खाना तुम्हारे नाना बनाएंगे, खाएंगी तुम्हारी नानी, तो बर्तन धोएंगे तुम्हारे नाना। बाद में तो सब काम नौकर चाकर करने लगे, लेकिन घरेलू मामले में मेरी माँ की बात चलती थी।
2: और वही तुमने यहाँ करके दिखा दिया। क्यों माँ?
1: सही में माँ, तुम एक योग्य माता की योग्य पुत्री हो, लेकिन दीदी तुमने तो नाक ही कटवा दी।
2: अच्छा, तेरी शादी होगी तो तू नाक ऊंची करवा देना।
3: मैं हूँ निर्मला देवी।
4: और मैं कमला देवी हूँ।
0: तो मैं क्या करूँ?
3: आपके पास एक शादी योग्य लड़का है।
0: है?
3: उसी सिलसिले में हम आपसे मिलने आए हैं।
0: मतलब आपके घर में कोई मर्द नहीं
3: हो तो?
0: आप क्यों आती? वैसे मर्द हो भी तो पैसा कमाने के अतिरिक्त उन पर किसी और तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं औरतों की बातों पर अधिक विश्वास करती हूँ। अच्छा किया जो आप लोग चली आए।
3: पता चला है कि आप ही से बात करनी पड़ेगी।
0: जी हाँ, वैसे आप लड़की की क्या लगती हैं?
3: जी मैं कमला जी की सहेली हूँ। लड़की कमला जी की है, ये कॉलेज में प्राचार्या हैं।
0: अरे बहन, प्राचार्या हो चाहे आचार्या, मेरे लिए तो एक समान है।
3: जी आपकी दृष्टि की मैं तारीफ करती हूँ कि आप पैरों से औरत को बड़ा या छोटा नहीं समझती, सबको समान समझती हैं।
0: नहीं बहन, आप लोग गलत समझ रही हैं। मैं लेन देन के आधार पर समान समझती हूँ।
5: क्या कहा आपने? लेन देन?
0: क्या आपके लिए ये एकदम नया शब्द है?
3: नहीं नहीं, और जगह पर बात यहाँ पर आकर खत्म होती है और यहाँ यहीं से शुरू हो रही है।
0: देखिए, फालतू बातों से मेरा कोई मतलब नहीं, इसलिए मेरे पास सामानों और लेन देन की एक सूची है, आप देख लीजिए। अगर आपके हिसाब से ठीक हो तो शादी का मुहूर्त निकालने की बात करें।
3: और लड़की नहीं देखेंगी?
0: अजी लड़की क्या देखना, वो तो लड़की होगी ही, कोई भालू बंदर तो होगी नहीं। बेटा मन्नू, प्रभा, नाश्ता वास्ता भी कुछ लाओगी कि उधर ही बैठी रहोगी?
6: आई माँ।
3: इतना जुटाने में तो लाखों लगेंगे।
0: वो तो लगेंगे ही।
3: कुछ तो रियायत कीजिए। देखिए लड़की पढ़ी लिखी, सुशील और बहुत गुणी है, देखने में चांद का टुकड़ा है, चांद का।
0: देखिए जी, ये कोई हर्रे फिटकरी की दुकान नहीं जो मोल भाव चलेगा, इसमें से एक पैसा भी कम नहीं होगा। पटे तो बात आगे बढ़ाइए, नहीं तो अपने कदम किसी और दिशा को बढ़ाइए।
3: ये तो शादी नहीं, सौदेबाजी है। ऐसे कहीं शादी होती है?
0: तो कैसे शादी होती है जी? कड़ी फासनताने, बहना चली बुलाने, चली जाओ और कहीं, जब बहुत से तुम्हारी लड़की के योग्य वर घूमते हुए मिल जाएंगे।
3: देखिए हम आपके घर लड़की वाले बनकर आए हैं, तो आप हमारा अपमान मत कीजिए। आखिर आपके भी तो लड़कियां हैं।
0: तो जाकर पता लगा लेना हमने क्या लिया दिया है।
3: अब मुझे सब पता है।
0: तू क्या सुटर सुटर बोल रही है रे, क्या तेरी लड़की है?
3: हाँ मेरी ही लड़की है।
0: तेरी लड़की होती तो तू ऐसी बात नहीं करती।
3: देखिए ये भी एक औरत ही है ना, दहेज और नारी उत्पीड़न में औरतें भी कम दोषी नहीं है।
0: ये देखो इनको, अब नया पैतरा बदल लिया। जा जा, मेरे यहाँ तेरी एक जुगल नहीं चलेगी। मैं तो अपने लड़के की उससे एक पाई कम में भी शादी नहीं करूंगी। तुम भी आ गए, खबरदार जो बीच में बोले।
7: अरे कुछ सुनोगी भी, ये निर्मला जी तुम्हारी समधन की बहन है और कमला जी की सहेली। अरे अपने कल्लू ने इन्हें तुम्हारे पास भेजा है, उसे लड़की बहुत पसंद है। रही तुम्हारी लिस्ट वाली बात, उसकी चिंता छोड़ो, बस इनसे रिश्ता जोड़ो भगवान, समझी?
8: माँ जी आप यहाँ, एक कोई सूचना तो दे दिया होता
0: तो पहले क्यों नहीं बताया, मैं थोड़ी रियायत कर देती।
7: अब कुछ मत बोला कल्लू की अम्मा, ये जैसे कहे शादी कर लो, नहीं लड़का बाहर ही बाहर शादी करके अमेरिका चला जाएगा।
0: हाय दया, मैं जिससे डर रही थी वही हो गया। छोकी सी

0: से नहीं हारता, अपने से हारता है।
1: जाने दो कल्लू की माँ, अरे जब मियाँ बीबी राजी तो हो जाने दो शादी।
2: हाँ माँ, मान भी जाओ।
3: बहन जी, एक लड़की आपके घर से ले गए हैं तो एक देने आए हैं हम लोग।
0: लेकिन कुछ तो दोगे ना कि एकदम फोकट में निपटा दोगे?
1: अब जब भी करो कल्लू की माँ।
0: एक यही बोलना तो बचा है, वो भी छोड़ दूँ? मैं चुप नहीं रह सकती, भले ही ये शादी हो जाए।

0: आज इतवार है। कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे झलकी हो जाने दो शादी। लेखक थे गुलाब सिंह, भाग लेने वाले कलाकार पुष्पा मिश्रा, जया भट्टाचार्य, डॉक्टर वरुण श्रीवास्तव, मधु पांडे और रमा उपाध्याय। प्रस्तुति डॉक्टर वरुण श्रीवास्तव की थी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।

0: बताओ, आज कारगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर हम देश के वीर सपूतों को नमन वंदन करते हैं। जवानों के शौर्य और पराक्रम की विजय गाथा के स्मरण का ये गौरवपूर्ण अवसर है।
1: अंग अंग जोशिया, अरे जवानी मांगला हो मोरा, झंडवा तिरंगा कूरा।

प्रोग्राम लोक रंग आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। कलाकारों के नाम हम आपको बता रहे हैं शुरुआत में और उन्हीं कलाकारों के लोकगीत की फरमाइश आपको भेजनी है। 7905519981 यानी 7905519981 इस कार्यक्रम का व्हाट्सएप नंबर है। ये आज इस कार्यक्रम में शामिल कलाकार हैं डॉक्टर मन्नू यादव, रीना देवी और सतीश चंद्र यादव। डॉक्टर मन्नू यादव, रीना देवी और सतीश चंद्र यादव, सबसे पहले कलाकार का नाम जरूर लिखें ताकि उनके लोकगीत के साथ आपकी फरमाइश पूरी की जा सके। वक्त रहते यानी शुरुआत में ही 1:45 बजे तक अपने संदेश हमें भेज दें। हमारी कोशिश होती है कि हर श्रोता का नाम प्रोग्राम में शामिल हो। डॉक्टर मन्नू यादव, रीना देवी और सतीश चंद्र यादव। व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रमों में प्रयास करें क्योंकि अब बहुत ज्यादा मैसेज देश भर से आते हैं, तो एक संदेश में 2-4 नाम लिखें और एक बार ही संदेश भेजें। साथ ही कार्यक्रमों से जुड़ी प्रतिक्रियाओं का कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद, जो आज ही के दिन यानी रविवार को शाम 7:31 पर प्रसारित होता है, उसे भी जरूर सुने और वहां आप हमारे केंद्र के कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय भेज सकते हैं मेल के जरिए pkld@varanasi.gmail.com पर। उस मेल आईडी पर फरमाइशें न भेजा करें। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस की मेल आईडी है airvnsfgexp@gmail.com। और अब हमारा कंप्यूटर स्क्रीन बता रहा है कि आपकी बहुत सारी फरमाइशें आ चुकी हैं, तो आपकी फरमाइश के लोकगीत के साथ इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। ये चौमासा है डॉक्टर मनु यादव और साथियों की आवाज़ों।

ये चौमासा आप सुन रहे थे डॉक्टर मन्नू यादव और साथियों की आवाज़ों में। फरमाइशें भेजी हमारे इन श्रोताओं ने। आपको ये बता दें कि जब हम कलाकारों के नाम बताते हैं उसके बाद ही अपनी फरमाइशें कलाकार के नाम के साथ भेजा करें, और बहुत से हमारे श्रोता हैं जो 2400 घंटे व्हाट्सएप करते रहते हैं। तो आपको बता दें कि सिर्फ प्रसारण के दौरान, वो चाहे विविध भारती वाराणसी के कार्यक्रम हो या हमारे इस चैनल के आकाशवाणी वाराणसी के प्रोग्राम हो, व्हाट्सएप के जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें आपको उसी वक्त मैसेज भेजना होता है उस टॉपिक पर या फिर बताए हुए फिल्मों या कलाकारों की फरमाइश के मामले में, तो उसी समय संदेश हमें भेजा करें। तो इस चौमासा के

ये फरमाइशें आई हमारे इन श्रोताओं की। दीनारा रोहतास से हैं, जयराम प्रसाद, सुषमा देवी, प्रभात कुमार, सौरभ कुमार, हर्षित कुमार और वैभव राज। जमानिया गाजीपुर के श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। ये फरमाइश छत्तीसगढ़ पलारी से आई है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा की। दिलदानगर गांव पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से हैं जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनाना सिंह यादव और कयूम शाह। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक, साथ में माही मलिक, मजनू का टीला दिल्ली के श्रोता हैं। दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से हैं भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और उमेश धनेश्वरी वर्मा की फरमाइश

0: अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माताजी हैं राजमुनिया गांव नारीपच देवरा गाजीपुर से। आपने भी कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। स्नेहा, शुभांकर, बॉबी सोनारपुरा वाराणसी के हमारे श्रोता हैं, शुक्रिया आपका। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। बेंजो मास्टर सुनील यादव, शिवकुमार यादव, बेबी तनिष्का यादव, नौबत यादव हमें सुन रहे हैं। अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से। गढ़नोखा लालगंज रोहतास बिहार के श्रोता हैं राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान और आर के सिंह चौहान। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।

स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रोग्राम लोकरंग में। आपके ही संदेशों पर आधारित लोकगीतों का ये प्रोग्राम। और अब आप तक पहुंच रहा है ये लोकगीत रीना देवी और साथियों की आवाजों में। इसमें काशी महिमा का वर्णन है। बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइशें आई हैं इस लोकगीत के लिए।

0: और हरिचंद्र घाटे पर पहरे दरिया सुनाए मीतावा पहरे दरिया सुनाए मीतावा।
1: ये काशी महिमा यानी ये लोकगीत काशी की महिमा का बखान करता हुआ रीना देवी और साथियों की आवाजों में फरमाइशें आप सबकी। आप हैं हमारे श्रोता पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह जी, शुक्रिया आपका। अमितेश कुमार तिवारी हैं कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाओं के साथ करनई बलिया से। अस्तुपुरा मऊ से मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। धर्म कॉलोनी पालम विहार एक्सटेंशन गुड़गांव हरियाणा से हमें सुन रहे हैं उमेश कुमार, राकेश कुमार, ऋषिकेश कुमार, किस्मत कुमार, आलोक कुमार, रिंकू देवी और समस्त परिवार। सुमंत कुमार प्रजापति हथौज बलिया उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता। आनंद प्रसाद श्रीवास्तव सेक्शन ऑफिसर आईएमएस बीएचयू वाराणसी से हैं। दरअसल होता ही है कि हम लोग सिर्फ नाम और जगह का नाम शामिल करते हैं, तो आप जरूर शामिल हों, बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रमों से जुड़ जाते हैं।

मल्हनी बाजार जौनपुर से मोहनलाल यादव, प्रिंस कुमार और प्रियंका यादव। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से हैं यशपाल धीमान, कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, कोमल धीमान, शुभम धीमान और उनके परिवार के सदस्य। ये फरमाइश जावेद अख्तर राही, शमसुल कुमार राही, बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन की आई है। तुबा फ्रीन के नाम के साथ मुबारकपुर आजमगढ़ से। आशीष कुमार महरेओं जौनपुर से हमें संदेश भेज रहे हैं। आशीष जी, आप एक बार जब संदेश भेज देते हैं तो फिर बार बार ना भेजा करें। कारगिल के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे श्रोता हैं लाल माता सुदामा नगर अटलाई झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक। रैदा आजमगढ़ से हैं विजय कुमार यादव, बिंदु यादव, प्रतीक यादव, रश्मि यादव, अमोघ और वैदेही। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा और उनके परिवार के सदस्य। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी और भूपेश। ये फरमाइश ओम गायकवाड़, आविष्कार गायकवाड़ और अनामिका गायकवाड़ की। तामसा रोड हदगांव से शिव कुमार चौहान और संक्रांति चौहान है बाबा कुटीर रायगढ़ के श्रोता। मुकेश कासलेकर, राजेश सोनी, तहसील वरुण, जिला अमरावती महाराष्ट्र से। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। बबरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल। रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती जायसवाल। चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल की फरमाइश। संतोष कुमार राव भारती राव हैं उमरिया मध्य प्रदेश से। और अब आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, कलाकार हैं सतीश चंद्र यादव और साथी और ये है कहरवा। इस कहरवा के लिए बहुत पहले ही फरमाइश भेजी हमारे श्रोता अनिल गुप्ता गौंड और रमा गुप्ता गौंड ने अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 पहाड़िया वाराणसी से कारगिल विजय दिवस के अवसर पर

0: तकी आजमगढ़ से फरमाइश आई है दिलशाद हुसैन, फातिमा सुगरा, वकार हैदर, कनी सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातिमा का बहुत शुक्रिया। साउथपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन और कंचन माही सेन। आप हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश पीपरलोड सरगांव से। ग्राम चकपुटे असनाव बाजार भदोही के श्रोता हैं गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार और जितेंद्र कुमार। पकड़ीतर हनुमान मंदिर से त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी और शिवनाथ जायसवाल। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया के श्रोता है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय की फरमाइश। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला और जेएस नायक हमें सुन रहे हैं हनुमानगढ़ जंक्शन से। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता। तुलसी मस्कीन, विना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन हैं बिहारी कॉलोनी शाहदरा के श्रोता। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब। जौनपुर, गोपालपुर, रमईपुर से अवधेश तिवारी, प्रियंका तिवारी, शिवांगी तिवारी, जयप्रकाश तिवारी और बाबा यादव। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह की फरमाइश नेपानगर से। आप हैं बहुवरा, दिलदारनगर, गाजीपुर से अक्लू राम, केदार राम और दीनानाथ सिंह। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पॉल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो की फरमाइश जनकपुरी सहारनपुर से। रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान बिलाड़ा राजस्थान से हैं। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप चाईबासा झारखंड से। सतीश चंद्र यादव और साथियों के गाइस कहरवा के लिए कुछ और फरमाइशें अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, पचदेवरा गाजीपुर से हैं। जयराम सिंगड़कर और दिशांत कुमार सिंगड़कर यवतमाल से। हिमांशु अग्रहरी ग्राम उमरपुर जौनपुर के हमारे श्रोता हैं। दिलदार मेरी, ज्योति जाह्नवी और दीक्षांत मेरी जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। रविन्द्र सिंह, रमन कुमार, जयंत कुमार देवरिया नुआ और रामगढ़ कैमूर से। श्याम सुंदर यादव, अरविंद यादव, नगेंद्र यादव, ब्रिजेश यादव और निरंजन यादव हैं सारंग छपरा खड्डा कुशीनगर से। बसंत कुमार ठाकुर नया पारा बिरई के श्रोता है। जमशेदपुर रखालपत कदमा से प्राची ठाकुर, देविका ठाकुर, साधना और मोना। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी और अक्रम अंसारी, ताज मोहम्मद अंसारी और गुलाम साबिर राही हैं। लक्सर हरिद्वार से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक और आफरीन कौसर छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन से। किदवई नगर सिद्धपुरा से जुबैर अली खान और सबीहा जुबैर, पूनम यादव, कुसुम यादव और उनके माता पिता हैं मोकलपुर मड़ियाहूं जौनपुर से। शाहकुटी मुगलसराय से वर्षा जायसवाल और शिवानी जायसवाल। पिपरिया कबीर धाम के श्रोता हैं कमलकांत गुप्ता और दीपा गुप्ता। आप हैं नवागढ़ कटई बेमेतरा से नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत। सूर्यभान सिंह, बिसुंदरी घोरावल, सोनभद्र के हमारे श्रोता। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान और मोहिनी चौहान। निहारिका श्रीवास्तव हैं चेतगंज वाराणसी से। जयमंत्री केवट और अंजलि केवट अनूपपुर के श्रोता। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। तो श्रोताओं ये थी आपकी फरमाइशें और लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंग। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 2 बजने वाले हैं अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Naresh Magu with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi remembers brave hearts of the nation on Kargil Vijay Divas today, says their sacrifices for the nation fill everyone with pride. In his Mann Ki Baat program, Mr. Modi lauds collective perseverance of Indian scientists and engineers, leading to country scaling new heights in defense.

0: construction and space sector. Mr. Modi says he is proud of the nation's youth power, who have been performing exceptionally well in sports events and international Olympiads. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan lead the nation in paying tributes to country's brave soldiers for their supreme sacrifices during Kargil War. Government urges Indian nationals to assess the prevailing security situation before accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
1: आज कारगिल विजय दिवस है. ये दिन हमें गर्व से भर देता है. ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था. उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ.
0: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है. जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए. इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही. मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है.
0: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
1: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की. पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है. यह एक ऐतिहासिक जीत है. हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है. लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था. अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है.
0: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
1: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए. इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा. फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की. पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है. केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता. यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है. बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स मेडल जीते. इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है. वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल अपने नाम किए. मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है. यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है.
0: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their

0: a responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. He urged people to honor weavers by encouraging handloom craft and further strengthen the spirit of being vocal for local.
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें
0: The Prime Minister

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों

0: को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
1: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, जो उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था, जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 99 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3

0: दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 133वें डोरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए जीरो टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालेम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। कार्यक्रम में आज का विषय है निःसंतानता यानी इनफर्टिलिटी। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर श्रुति उपाध्याय। इनसे बातचीत की है शिखा श्रीवास्तव ने।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कॉगमेड हेल्थ केयर दुर्गाकुंड गुरधाम कॉलोनी वाराणसी।

गवर्नमेंट हेल्थ केयर गुरुधाम कॉलोनी दुर्गा कुंड वाराणसी में आपका स्वागत है। यदि आप गठिया घुटने के दर्द कमर या गर्दन के दर्द से परेशान हैं, तो डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय ऑर्थोपेडिक सर्जन एवं ऑर्थोरूमेटोलॉजिस्ट यानी हड्डी एवं गठिया रोग विशेषज्ञ से परामर्श ले सकते हैं। आधुनिक उपचारों के साथ हमारा प्रयास रहता है कि हर मरीज को उसकी आवश्यकता के अनुसार सबसे उपयुक्त उपचार मिले और जहाँ तक संभव हो अनावश्यक सर्जरी से बचा जा सके। इसी प्रकार गर्भावस्था की देखभाल, महिलाओं के स्वास्थ्य समस्याएं, इनफर्टिलिटी या कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के लिए डॉक्टर श्रुति उपाध्याय स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ आपकी सेवा में उपलब्ध है। कॉग्निट हेल्थ केयर में हमारा विश्वास है, यही सलाह।

0: सही सलाह, वैज्ञानिक उपचार और संवेदनशील देखभाल। अपॉइंटमेंट के लिए आज ही व्हाट्सएप या कॉल करें 9161810777 या फिर 9161802। कॉगमेंट हेल्थ केयर, गुरुधाम कॉलोनी, दुर्गा कुंड, वाराणसी।
1: मित्रों, एक बार श्रोता ने मुझसे पूछा कि मैडम, रेडियो पर फिल्मी गीतों की फरमाइश तो सब करते हैं, लेकिन दिल के उस दर्द को दूर करने की फरमाइश कोई क्यों नहीं करता है जो बंद कमरों में आंसू बनकर बहता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आपकी रेडियो सखी शिखा श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। दोस्तों, शादी के कुछ साल बीतते ही एक चिंता पति पत्नी के अतिरिक्त समाज को भी सताने लगती है, वो है संतान न होने की। रिश्तेदार सलाहों की झड़ी लगा देते हैं और पति पत्नी चुप चुप से रहने लगते हैं। लेकिन आज के आरोग्यम में हम उस चुप्पी को तोड़ने आए हैं। आज हम बात करेंगे निसंतानता यानी इनफर्टिलिटी पर, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर श्रुति उपाध्याय जी। ये प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और आप लोगों को ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगी कि आप इस निसंतानता को शाप न समझें, किसी तरह का पाप का फल न समझें, और इसमें मेडिकल में आपको कौन कौन सी सुविधाएं हैं, किस तरह से चिकित्सा से आप फिर से संतान प्राप्ति कर सकते हैं। तो इन सभी का समाधान करने के लिए डॉक्टर साहिबा हमारे स्टूडियो में है। डॉक्टर श्रुति उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद शिखा जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में जानकारी लेना और जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को कभी कभी छोटी सी समस्या होती है और इतना बड़ा वो माइंड में टेंशन लेकर चलते हैं कि बच्चा ना होना एक बहुत बड़ी समस्या हो गया है आजकल।
1: मैडम, हम जानना चाहेंगे कि मेडिकल साइंस में ये इनफर्टिलिटी का क्या मतलब है।
2: जी, इनफर्टिलिटी या निसंतानता पहले है क्या, ये समझ लेते हैं।
1: जी,
2: निसंतानता तब कहते हैं जब एक दंपति एक वर्ष तक प्रेगनेंसी के लिए प्रयास कर रहा है, फिर भी उसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, या अगर महिला की उम्र 35 साल है या उससे ज्यादा है तो 6 महीने लगातार प्रयास के बाद भी प्रेगनेंसी का न होना निसंतानता की कैटेगरी में आता है।
1: जी, समाज में ऐसा भ्रम है कि अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो उसमें महिला को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो इसके विषय में आप क्या कहें? ये कितना सच है और कितना भ्रम है?
2: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसके लिए जागरूकता की कमी सबसे बड़ा कारण है।
1: जी,
2: सबसे पहली बात है कि किसी भी कपल में महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी जरूरी है। सिर्फ महिला की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है या प्रेगनेंसी नहीं होना भी सिर्फ महिला की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें महिला और पुरुष बराबर में एक दूसरे के साथ रहे, किसी की भी कमी की वजह से हो सकता है कि निसंतानता हो रही है। ज्यादातर देखा गया है तो बराबर ही दोनों की भागीदारी है, 30% 30% दोनों महिला और पुरुष की कमी से हो सकता है, पर समाज में ऐसी धारणा बन चुकी है कि सिर्फ महिला की गलती है या महिला को ही दोषी ठहराया जाता है, पर ये गलत है।
1: मैडम, एक फोन आ रहा है, इसे ले लेते हैं फिर आगे की बातें करते हैं।
3: हेलो। हाँ जी।
1: हाँ, अपना नाम और पता बता दीजिए।
3: अच्छा, मेरा नाम स्मिता श्रीवास्तव है और गाजियाबाद से बोल रही हूँ मैं।
1: अच्छा स्मिता जी, आरोग्य में आपने फोन किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर श्रुति उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं, तो आप बात करें।
3: मैं ये पूछना चाह रही थी कि किस उम्र तक हमें इंतजार करना चाहिए कि हम नेचुरल कंसीव करने का इंतजार करें और उसके बाद हम डॉक्टर से संपर्क करें।
2: नमस्कार जी, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। पहले तो ये जान लेना चाहिए कि इनफर्टिलिटी होता क्या है। इनफर्टिलिटी अगर एक साल तक कोई कपल नियमित रूप से साथ में है और प्रेगनेंसी के लिए प्रयास कर रहा है और फिर भी उसे गर्भ नहीं रुक रहा है तो उसे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और अगर जो महिला है उसकी उम्र 35 वर्ष से ज्यादा है तो 6 महीने तक अगर प्रयास करने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो रहा है तो उसे जरूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर 35 साल से उम्र ज्यादा है तो देरी नहीं करनी चाहिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। अच्छा, कभी कभी ये देखा जाता है कि आज अपना करियर बनाने की दौड़ में लोग बहुत लेट से शादी करते हैं
2: जी।
1: तो क्या बढ़ती हुई उम्र इसका कारण हो सकती है?
2: बिल्कुल, ऐसा है कि महिलाओं में जन्म से ही अंडे निर्धारित संख्या में होते हैं, जो बढ़ती उम्र के साथ अंडे धीरे धीरे कम होते जाते हैं हर साइकिल के साथ।

0: साथ वो अंडे आपके कम हो रहे हैं और गुणवत्ता भी उसकी कम होती जाती है, जिसकी वजह से जितनी उम्र बढ़ती जाएगी उतना ही आपके जो एग्स हैं अंडे उनकी क्वालिटी धीरे धीरे घटती जाएगी, और संख्या और क्वालिटी दोनों जरूरी है। इसी तरह एक भ्रांति है कि पुरुष हमेशा फर्टाइल होते हैं, ये बहुत बड़ी एक मिथ है। पुरुषों में भी देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ स्पर्म जो है उसकी क्वालिटी, उसके काउंट्स कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी एक बड़ा इसका रीजन हो जाता है।
1: अच्छा, अभी तो ये बढ़ती उम्र की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आजकल ये देखा जाता है कि बहुत कम उम्र के युवा या युवती भी इस दर्द से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, और उनको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो
0: जी
1: ऐसा क्यों हो रहा है?
0: जी ये सब आजकल जीवन शैली के बदलाव की वजह से है। अगर जीवन शैली आपकी सही नहीं है,
1: जी
0: आपके खान पान की जो शैली है वो सही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है निसंतानता का। जैसे अगर आप जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं,
1: जी
0: या आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपका बीएमआई लो या बीएमआई हाई, दोनों ही स्थिति में वजन का कम होना, वजन का ज्यादा होना, दोनों स्थिति में इनफर्टिलिटी हो सकती है।
1: महिलाओं में क्या मुख्य कारण होते हैं निसंतानता?
0: महिलाओं में निसंतानता का मुख्य कारण जैसे पीसीओएस, पीसीओडी, या फेलोपियन ट्यूब का बंद होना, ब्लॉकेज होना, या कभी कभी एएमएच लो होना ज्यादा उम्र बढ़ने से होता है, ये सब मुख्य कारण है।
1: अच्छा, तो क्या इसकी चिकित्सा की जा सकती है प्रॉपर? अगर कोई बहुत समय से इन सब चीजों से परेशान है और इसके वजह से उसको संतान उत्पत्ति में समस्या हो रही है, तो
0: जी
1: इसका क्या
0: बिल्कुल
1: इलाज है?
0: बिल्कुल, इसका इलाज पूरी तरह से संभव है, लेकिन ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है समय से डॉक्टर के पास जाना।
1: जी
0: जैसे पीसीओडी है, ये बहुत ज्यादा बढ़ न जाए, शुरुआत में ही इसका इलाज अगर हो जाए तो ये इनफर्टिलिटी में बदलता ही नहीं है। पीसीओएस में यही होता है कि आपकी कभी कभी आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करके या खान पान को चेंज करके कुछ सरल व्यायाम से ही ये पीसीओडी ठीक हो सकता है, जिसको लोग कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं या पता ही नहीं है कि पीसीओडी का क्या लक्षण है, जिसकी वजह से इसको ध्यान न देने से ये बाद में इनफर्टिलिटी का रूप ले सकता है, इनफर्टिलिटी का एक मेन कारण हो सकता है। बाकी और ट्यूब का ब्लॉक होना या संरचना में गड़बड़ी होना, ये सब भी डॉक्टर के पास जाकर आप प्रॉपर इसका चेकअप कराइए ताकि पता चले कि क्या वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है।
1: एक फोन आ रहा है मैडम, ले लेते हैं।
0: जी
1: हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी,
2: आप माधुरी बोल रहे हैं?
1: अच्छा माधुरी जी बोल रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में आपका। और आज निसंतानता इनफर्टिलिटी पर हम बात कर रहे हैं, और हमारे बीच में डॉक्टर श्रुति उपाध्याय जी जो प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं आई हैं। तो आप डॉक्टर साहिबा से बात करें, अपना प्रश्न पूछें।
0: जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी, मेरा प्रश्न ये है, मेरी बहू है
0: जी,
2: तो काफी दिन हो गया लेकिन कोई संतान नहीं है।
0: जी तो आपने किसी डॉक्टर से सलाह ली है?
2: जी हाँ, मैंने डॉक्टर से सलाह लिया, इलाज भी बहुत कराया।
0: जी तो इसका क्या कारण पता चला?
2: कारण तो कोई खास पता नहीं चला।
0: तो क्या आपने बेटे और बहू दोनों को ले जाकर आपने टेस्ट करवाया?
2: जी हाँ
0: जी तो कितने दिन हो गए आपके बहू की शादी को?
2: कम से कम 14-15।
0: 14-15 साल। उम्र क्या होगी उन दंपति की?
2: वही लगभग 40।
0: 40। तो आप ऐसे उम्र के दायरे में आ रहे हैं कि आपको अब बहुत ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ साथ निसंतानता का जो रेट है ये बढ़ता जाता है। इसको बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। आजकल ऐसा कुछ असंभव नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटी सी चीज की वजह से निसंतानता हो रही है, लेकिन उम्र ज्यादा हो चुकी है, 40 के करीब हो चुकी है। बहुत सारे उपाय हैं, IUI, IVF, ICSI, बहुत तरीके की चीजें हैं जिसके आप सहारा ले सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से पता नहीं चलती है, इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। ऐसी वजहों पर आप, अगर आपने बहुत दिन पहले टेस्ट कराए हैं, तो फिर से एक बार सारे टेस्ट कराइए, किसी अच्छे सेंटर पर जाइए, और अच्छे से जांच कराने के बाद अगर कुछ भी नहीं पता चलता है तो आपको ART या आर्टिफिशियल रेट्रो रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यानी IVF का सहारा लेना चाहिए।
1: माधुरी जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
2: चंदौली से बोल रहे हैं।
0: जी
1: अच्छा, आरोग्य में आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम एक और फोन आ रहा है।
0: जी
1: हेलो
2: जी आरोग्यम से।
1: हाँ, आरोग्यम से बोल रहे हैं, आप कौन बोल रही हैं मैडम?
2: मैं बिंदु बोल रही हूँ, बिंदु देवी चंदौली से।
1: आज इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता पर बात हो रही है और हमारे बीच

0: डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर श्रुति उपाध्याय जी, तो आप बात कर लें।
1: हेलो, नमस्ते डॉक्टर।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार जी, मेरी भतीजी है, उसको 3 साल शादी हो गया,
0: जी
1: फिर अभी उसको कुछ मतलब अभी ठहरा ही नहीं, पता नहीं चलता है कि डॉक्टर को कब दिखाना है कब ना दिखाना है। इसलिए मैं सोची कि पहले डॉक्टर साहब से सलाह ले लेती हूँ, किसी भी डॉक्टर से, फिर पता चला आपके द्वारा। तो
0: जी आपके भतीजे की उम्र क्या होगी?
1: 21 साल है अभी।
0: जी, उम्र तो अभी ठीक है, तो 3 साल शादी को हो गए हैं, तो अब जरूर आपको डॉक्टर को दिखवाना चाहिए। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को ले जाकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, कुछ टेस्ट
1: जी
0: कराने चाहिए, और इसमें अब देरी मत करिए। 3 साल एक अच्छा समय है,
1: हाँ जी।
0: तो उनको जरूर डॉक्टर को दिखाने जाइए।
1: और कुछ पूछना था मुझे,
0: जी
1: बहन की लड़की है,
0: जी
1: उसको भी यही प्रॉब्लम है कि उसको पहला बच्चा हुआ, फिर उसके बाद दूसरा बच्चा नहीं ठहर रहा है, फिर मैं क्या करूँ?
0: जी ऐसा भी होता है, ऐसी स्थिति को हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, या पहली बार बच्चा हो जाना उसके बाद इनफर्टिलिटी का होना। ऐसा तब होता है जब महिला की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, या पुरुष, महिला पुरुष दोनों की उम्र ज्यादा है, तो AMH की कमी या किसी और वजह से, गर्भाशय में गांठ होने की वजह से कभी कभी दूसरी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में भी डॉक्टर की सलाह जरूर लें और उचित इलाज कराएं।
1: जी बिंदु जी,
0: नमस्कार।
1: आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक
0: मैडम।
1: यू।
0: कभी कभी जब आप IVF की सलाह देते हैं
1: जी
0: लोगों को इनफर्टिलिटी के केस में, तो बहुत लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं और उनको लगता है कि ये सुरक्षित नहीं है। तो क्या IVF के अतिरिक्त भी कुछ और इलाज हो सकता है?
1: जी बिल्कुल
0: प्रश्न का उत्तर जानेंगे इस फोन के बाद।
1: जी
0: हेलो,
1: जी मैम नमस्ते। ठीक
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर?
1: है मैम, मैं परवेज अहमद सुकुलपुरा बनारस से आपसे जुड़ गया हूँ
0: जी
1: आरोग्यम
0: जी
1: में।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्यम से, ऐसे ही जुड़े रहिए। आज इनफर्टिलिटी पर बात हो रही है, तो डॉक्टर साहिबा से क्या पूछना चाहते हैं पूछ लें।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बहुत बढ़िया टॉपिक है। डॉक्टर साहब से मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे अगर किसी की उम्र ज्यादा हो जाती है, क्या उन्हें चांस है क्या कि फिर मतलब 40 तक की उम्र के बच्चे मतलब हो सकते हैं क्या किसी को, किसी स्त्री को? जी
0: जी क्या उस स्त्री को पहले कोई बच्चा है या पहले?
1: जी मैम, बच्चा तो बड़ा हो गया है, लगभग 20-22 साल के हो गए हैं, क्या उनको चांस है क्या मैम?
0: ऐसा है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ एग और स्पर्म यानी अंडों की जो क्वालिटी होती है और गुणवत्ता होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ऐसे में आप
1: जी
0: जरूर किसी विशेषज्ञ को दिखाइए, प्रॉपर डॉक्टरी सलाह के बाद ही करिए, ताकि आपके हार्मोन की और आपके हर तरह की जांच के बाद ही कोशिश करिए, क्योंकि एक लंबा अंतराल है, पहला बच्चा 22 साल का हो गया है, तो
1: जी
0: ऐसे
1: जी
0: में हो सकता है कि आपको किसी डॉक्टर की सलाह के अंतर्गत ही गर्भधारण की सलाह दी जाए। बहुत अच्छा समय तो 20 से 30 या 20 से 35 माना जाता है, फिर धीरे
1: जी
0: धीरे जो एग्स की क्वालिटी होती है या जो गुणवत्ता होती है जो आपका एक स्वस्थ बच्चे के लिए जरूरी है, वो धीरे धीरे
1: जी
0: कम
1: जी
0: होने लगती है। लेकिन अच्छे डॉक्टर या विशेषज्ञ के सलाह के साथ अगर आपने गर्भधारण किया है, तो वो इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, या हो सकता है आपको किसी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक या किसी और तरीके से आपको IUI या IVF का आपको सहारा लेना पड़ता है।
1: जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शिखा मैम जी, आपको मेरे जी मेरा प्रणाम, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई आप।
0: बहुत
1: थैंक यू।
0: बहुत धन्यवाद। हाँ मैडम, IVF के अतिरिक्त जो अन्य तरीका है, इसके विषय में हम लोग बातें कर रहे थे।
1: जी
0: IVF तो बहुत बाद की कंडीशन होती है, पहले ही IVF के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहले बेसिक चीजें, जो बेसिक टेस्ट हैं, हार्मोन के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड, बहुत से नॉर्मल चीजों से ही कभी कभी पता चल जाता है कि क्यों संतान नहीं हो रही है। तो IVF तब होता है जब किसी भी और तरीके से आपको गर्भ धारण नहीं हो रहा है,
1: जी
0: ऐसे केस में ही IVF या ICSI की जरूरत पड़ती है। तो जरूर किसी विशेषज्ञ की सलाह पर ही IVF कराएं।
1: जी
0: और IVF से ये बहुत ही भ्रम है कि बच्चे सही नहीं

0: जब किसी भी और तरीके से गर्भ नहीं ठहर रहा है या कुछ शारीरिक संरचना में गड़बड़ी है महिला की या पुरुष की, जिसकी वजह से गर्भ नहीं रुक रहा है, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, ऐसे में सलाह दी जाती है किसी एडवांस टेक्निक की। और ऐसी कोई टेक्निक ये नहीं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है या ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस कपल की बात हो रही है, उस महिला को दिक्कत क्या है। तो वैसे सबसे एडवांस तो आजकल ICSI या IVF ही है। इसमें क्या होता है कि एक चुनाव करके एक अच्छे क्वालिटी के एग को एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो लैब में होता है वो फर्टिलाइज कराता है एक अच्छे उत्तम स्पर्म से। तो ये सबसे एडवांस तरीका है, ICSI बोला जाता है इसको। तो ये सबसे एडवांस है, लेकिन ये तभी होता है जब किसी और वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। और बात करते हैं सरोगेसी की, तो ये तो पहले इंडिया में बैन था, लेकिन अब फिर इसका बैन हट गया है। ये किसी खास सेंटर पर ही होता है, बहुत कम सेंटर हैं इसके जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। इसमें उसी दंपति को सरोगेसी अलाउड होती है जिसको कुछ शारीरिक ऐसी संरचना में गड़बड़ी है, जैसे महिला में यूट्रस नहीं होना, यूट्रस है ही नहीं, जन्मजात यूट्रस नहीं है, या किसी वजह से उसका यूट्रस निकाला जा चुका है ऑपरेशन के द्वारा, या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है महिला की, जैसे कुछ दिल की बीमारी या कुछ ऐसा जिसकी वजह से उसको गर्भ नहीं धारण करना है, तभी सरोगेसी अलाउड है इंडिया में। महिला या पुरुष को किसी वजह से गर्भ मना किया गया है कि आप प्रेगनेंसी नहीं करेंगे, तब उनको सरोगेसी अलाउड है, जिसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है, एक वकील, एक एफिडेविट होता है जो गवर्नमेंट अप्रूव होता है, जिसमें ये क्लियर होता है कि किसी मेडिकल रीजन से महिला गर्भ नहीं धारण कर सकती या महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तब एक अननोन सरोगेट, जिसको बोलते हैं कि आप उसको जान भी नहीं पाएंगे कि किसने आपका गर्भ धारण किया था, ताकि आगे जाकर कोई लीगल इश्यू ना हो, ऐसे में ही सरोगेसी होती है। इसके लिए आप किसी विशेषज्ञ की सलाह लें और ज्यादा जानकारी के लिए उनसे ही बात करें।
1: स्वाति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरोग्यम में फोन करने के लिए। फोन और आ रहा है मैडम। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
2: मैं नम्रता बात कर रही हूँ।
1: नम्रता जी, कहाँ से? कहाँ से?
2: मैं गाजीपुर से बात कर रही हूँ।
1: अच्छा, नम्रता जी गाजीपुर से आरोग्यम में आपने फोन किया है, बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय इनफर्टिलिटी पर है, तो डॉक्टर साहिबा से आप बात कर लें।
2: जी, आपसे मुझे ये जानना था कि इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
0: जी
2: मैं जहाँ भी देख रही हूँ न्यूज में या कहीं पर भी सोशल मीडिया पर, तो इसके क्या रीजंस हैं और इसके लिए क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है? जैसे आने वाली जो जनरेशन है वो क्या प्रिकॉशन ले जिससे कि इसका जो रेट बढ़ता जा रहा है वो कुछ कम हो।
0: जी, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल के युवाओं में सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी देखी जा रही है, क्योंकि ये उनकी जीवन शैली जो है ये पहले से चेंज हो गई है। बहुत देर रात तक जगना या धूम्रपान करना, इससे एग्स की और स्पर्म की क्वालिटी कम होती है। इसके अलावा जो भी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल में आपको चेंजेस लाने हैं, खान पान में चेंजेस लाने हैं, ये प्रिकॉशन ले सकते हैं। बेसिक एक्सरसाइज अपने जीवन शैली में शामिल करिए, जिससे वजन बहुत कम भी ना रहे, बहुत ज्यादा भी ना रहे। BMI की गड़बड़ी से भी इनफर्टिलिटी एक कॉज होता है। तो जो सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है या जो हमारी बिल्कुल हर चीज को समय से न करना, ये जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हो गया है, ये युवाओं में सबसे मेन कारण है इनफर्टिलिटी का। और एक PCOD भी एक टर्म है जो आपने सुना होगा, ये भी इसी की वजह से होता है। जो हमारी इरेगुलर लाइफ स्टाइल है या प्रोसेस्ड फूड खाना, जंक फूड खाना, इससे हमारा जो एग की क्वालिटी होती है महिलाओं में और पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी, ये गड़बड़ होती है। और बहुत ज्यादा उम्र तक इंतजार करना, ये भी गलत है। शादी भी समय से हो और बहुत ज्यादा उम्र पे बच्चे होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
2: बहुत इंसाइटफुल था, मुझे लग रहा है कि जो मेरी क्वेरी थी वो सॉल्व हुई है इससे। थैंक थैंक यू सो मच डॉक्टर.
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी. मैडम, जैसे आपने बताया कि ये पीसीओडी की समस्या है, पीसीओएस की समस्या है, गांठ की समस्या है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है. कई बार महिलाओं में ये भ्रम होता है कि अगर उनको सिस्ट हो गया, गांठ हो गया, तो अगर इसका इलाज ऑपरेशन होता है, कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑपरेशन के बिना ये संभव नहीं है

0: कि सही हो जाए। तो ऑपरेशन कराने में महिलाएं घबराती हैं, वो ये सोचती हैं कि अगर एक बार ऑपरेशन हो गया तो फिर हम किसी तरह से संतान प्राप्ति के योग्य नहीं रह जाएंगे। तो इस विषय में आप क्या सलाह देंगी और ये कितना सच है ये भी बताएं।
1: जी, ज़्यादातर गांठ जो होती हैं उससे घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी जो ओवरी की गांठें होती हैं वो सिर्फ एक सिंपल सिस्ट होती हैं जो पानी से भरी होती हैं,
0: जी
1: तो ऐसे में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये कभी कभी स्वतः ही ठीक हो जाते हैं या कुछ बेसिक इलाज से ठीक हो जाते हैं। फाइब्रॉइड भी जो है वो जब तक इतना बड़ा नहीं है जिससे आपकी प्रेगनेंसी को रुकने नहीं दे रहा है या वहां पर इम्प्लांट नहीं होने दे रहा है, तब तक फाइब्रॉइड भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ऐसे में भ्रम ना पालकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, प्रॉपर जांचें करानी चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जिससे जो गांठ है, फाइब्रॉइड है या कुछ सिस्ट है उसकी साइज और उसका क्या किस वजह से है ये पता चले। और कभी कभी बिना ऑपरेशन भी ठीक हो जाता है। और अगर ज्यादातर ये कोशिश की जाती है कि महिला को कम से कम उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, एक या दो बच्चे हो जाए, तभी ऑपरेशन करके हटाया जाए फाइब्रॉइड को। अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है या वो उसकी जीवन शैली में दिक्कत आ रही है, बहुत भारी पीरियड्स हो रहे हैं फाइब्रॉइड की वजह से, उसको कुछ असहजता या दर्द हो रहा है, ऐसे केस में हो सकता है कि ऑपरेशन करने की स्थिति आ भी सकती है। तो जरूर किसी विशेषज्ञ से सलाह लीजिए। और ऐसा नहीं है कि छोटे से ऑपरेशन के बाद प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, ऐसा कभी कभी बिना बच्चेदानी निकाले भी फाइब्रॉइड को ऑपरेशन हो जाता है। तो कभी कभी फाइब्रॉइड के साथ भी प्रेगनेंसी हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं आती है। बस हाँ, ऐसे केस में ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है।
0: जी जी, पुरुषों में अगर लो स्पर्म या स्पर्म क्वालिटी पर अगर इफेक्ट रहता है तो उसका क्या इलाज है?
1: जी, पुरुषों में जो स्पर्म क्वालिटी या लो स्पर्म काउंट है, ये इसका इलाज बहुत ही आसानी से संभव है। खान पान और कुछ नॉर्मल दवाइयों से इसका इलाज संभव है, लेकिन समस्या ये है कि पुरुष आगे बढ़कर आते नहीं हैं,
0: जी
1: दिखाने नहीं आते हैं, और ज्यादातर महिलाओं को ही लेकर जाया जाता है, उनके ससुराल के लोग या जो भी उनके संबंधी हैं, ज्यादातर महिलाओं को ही लेकर जाते हैं, और पुरुष की ये जो छोटी सी कमी है वो पीछे रह जाती है। और महिला का इलाज होता जा रहा है और क्या पता पुरुष का ही एक 2-3 महीने के इलाज से जो चीज ठीक हो सकती है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो लो स्पर्म काउंट या स्पर्म का जो क्वालिटी है, ये इलाज इसका संभव है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्पर्म की काउंट के साथ साथ स्पर्म की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो खराब है, मतलब टूटे हुए स्पर्म है या स्पर्म चल नहीं रहे हैं, ऐसे में कभी कभी IVF का भी साथ लेना पड़ता है।
0: जी जी
1: जी,
0: अच्छा, खान पान से क्या इस स्थिति को, जैसे आपने बताया कि खान पान अगर अच्छा रहे तो ये इनफर्टिलिटी को दूर किया जा सकता है, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको खान पान में हम शामिल कर लें तो जिनको इस तरह की समस्या है वो इस समस्या से थोड़ा आगे बढ़कर हल पा सकती हूँ?
1: जी, ऐसे में एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि आपके खाने में हर चीज अच्छी मात्रा में हो, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये दो टर्म होता है, मतलब कि कुछ ऐसे चीजें होती हैं जैसे जिंक है या मैग्नीशियम है, ये आपके स्पर्म और एग की क्वालिटी निर्धारित करता है। कुछ कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कभी कभी वेजिटेरियंस में नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे में कुछ ऊपर से सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं। ऐसे में विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज आप अपने खाने में इंक्लूड करिए या अपने दिनचर्या में इंक्लूड करिए जिससे आपको वो कमी ना हो। और कोशिश करना चाहिए कि जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड ये ना लें।
0: चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देंगी मैडम?
1: जी, जाते जाते संदेश यही है मेरा कि डॉक्टर की सलाह लेने में देरी ना करें और कोशिश करें कि समय से सारे इलाज कराएं। अगर किसी कपल को प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो रही है तो हिचकिचाएं ना, सहारा लें, ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं, कोशिश करें कि समय रहते ही डॉक्टर की सलाह लें और जीवन शैली अच्छी रखें, बाहर का जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, कोशिश करें कि वजन न ज्यादा कम रहे न ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़े।
0: बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी इनफर्टिलिटी पर और इससे हमारे श्रोताओं को जरूर लाभ मिलेगा। डॉक्टर श्रुति उपाध्याय जी, आप हमारे कार्यक्रम

0: में आई और श्रोताओं से इतनी अच्छी जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, आपका भी धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, आपने जाना कि इनफर्टिलिटी कोई शाप नहीं है, इसे धैर्य और संयम से दूर किया जा सकता है। बस सही जानकारी, सही इलाज और सही खान पान से आपके आंगन में भी किलकाली गूंज सकती है। तो इसमें देरी ना करें, सही समय पर सही इलाज कराएं। आज के अंक में निसंतानता पर हमने बात की, अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ, नए डॉक्टर के साथ हम फिर प्रस्तुत करेंगे अपना आरोग्यम। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी।
2: कॉर्बेट हेल्थ केयर, गुरुधाम कॉलोनी, दुर्गाकुंड, वाराणसी में आपका स्वागत है। यदि आप गठिया, घुटने के दर्द, कमर या गर्दन के दर्द से परेशान हैं, तो डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय, ऑर्थोपेडिक सर्जन एवं ऑर्थोरिमेटोलॉजिस्ट यानी हड्डी एवं गठिया रोग विशेषज्ञ से परामर्श ले सकते हैं। आधुनिक उपचारों के साथ हमारा प्रयास रहता है कि हर मरीज को उसकी आवश्यकता के अनुसार सबसे उपयुक्त उपचार मिले और जहां तक संभव हो अनावश्यक सर्जरी से बचा जा सके। इसी प्रकार गर्भावस्था की देखभाल, महिलाओं के स्वास्थ्य समस्याएं, इनफर्टिलिटी या कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के लिए डॉक्टर श्रुति उपाध्याय, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ आपकी सेवा में उपलब्ध है। कॉर्बेट हेल्थ केयर में हमारा विश्वास है, यही सलाह, सही सलाह, वैज्ञानिक उपचार और संवेदनशील देखभाल। अपॉइंटमेंट के लिए आज ही व्हाट्सएप या कॉल करें 9161810777 या फिर 9161810222। कॉर्बेट हेल्थ केयर, गुरुधाम कॉलोनी, दुर्गाकुंड, वाराणसी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कॉगमेड हेल्थ केयर, दुर्गाकुंड, गुरुधाम कॉलोनी, वाराणसी।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। आज का विषय था निःसंतानता यानी इनफर्टिलिटी पर जानकारी। विशेषज्ञ थी डॉक्टर श्रुति उपाध्याय, इनसे बातचीत की शिखा श्रीवास्तव ने। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम वेव्स, ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं, आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज। न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTR DRM और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: बच्चों जय हिंद। कहीं नन्हा मुन्ना कि देखा हो आज तो तुम लोगों से मिले दीदी इमृति दीदी आयल हैं, लेकिन कहीं कि आज का दिन न कुछ विशेष भी हो। विशेष ये बदे हो कि भाई कुछ बच्चा लोग जानत भी हुई हैं और कुछ लोग ना भी जानत हुई हैं। तो भाई सबके बदे हम ये बता दें कि आज पूरे देश में विशेष दिन मनावल जात हो, जिगे कि हम कारगिल विजय दिवस के रूप में जानीला। और ये दिन हमारे देश में जौन हो ना कि भाई एक बहुत बड़ा जौन हो, कहें कि हम लोग अपन देश के दुश्मन के हाथ से बचोले रह ली, और देश का हमारे सेना जौन हो कि अपने जान के गवाते हुए और बलिदान होते हुए अपने देश के सम्मान का रक्षा के लिए। और कहीं कारगिल ना बच्चा लोग सुन ले भी हुई हैं, पढ़ ले भी हुई हैं किताबन में, और जे ना जान लो कि भी हम बता दें कि भाई ये लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाके में हो जगह, और कहीं कि कारगिल के जो दुर्गम बर्फीली चोटी हैं उनमें हमारे भारतीय सैनिक जौन हो कि खड़ा होकर के अपने साहस शौर्य और बलिदान से जौन हो वो समय अपने प्राण का जौन हो चिंता ना कैले बिना, और एक ही समझ ला बच्चा लोग कि वहाँ पे रहना इतना मुश्किल हो कि न खाना न पानी और ना वहाँ पे सामान्य आदमी रह सकेला। ये हमारे देश के वीर जवानन का सैनिकन का ही हिम्मत हो कि भाई ऐसने स्थान पर भी वो डटल रहना, और जबकि अपने देश पर वो समय जौन हो कि आक्रमण होता हल अपने दुश्मन देश से, और वो समय ये लगल कि भाई अपने देश का सम्मान जौन हो खतरे में पड़ल हो। तो ऐसने समय में अपने देश के जौन सैनिक हुए वीर जवान हुए बलिदानी हुए वो अपने राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण नमन रखते हुए अपने देश के जौन हो दे

0: अपने प्राण के न्यौछावर के ना गंवाना है, और अपने देश के तिरंगा के सम्मान में जो हो कि सब कुछ न्यौछावर के देनी। तो कहीं कि अपने देश के वीर बलिदानी से, सैनिकन से हमें नन्हा मुन्हा लोगन के भी सीखे के चाहिए कि भाई हमारे देश पर जब भी ए तरह के कोनो संकट आवे या अपने देश के सम्मान का बात आवे, तो जब भी आप बड़ा हों, अप जौने भी लायक जे देश के नागरिक हुए, अपने सम्मान बदे, अपने देश के सम्मान बदे आप जरूर जौन हो कि वो कर्तव्य के निभावें जेके कि आप निभा सकन है, तब कहीं कि अपने देश का मान सम्मान और गौरव रहे। और नन्हा मुन्ना आप लोगन के हम लोग ये अच्छी बात यही बते बतावल जला कि आप भी उन वीर जवान सैनिकन के जीवन से कुछ सीख सकें, अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सकें, कुछ अपने भी जो हो कि चरित्र में उनके लिया सकें कि भाई हमें भी अपने जीवन में अगर कुछ करना हो तो इनके जीवन से कुछ सीखना हो। कहीं कि आगे तो नन्हा मुन्हा से हम बत कही करबे करब, लेकिन कहीं ना कि एक बढ़िया सा तुम लोग के वार्ता भी हम सुनवा दें कि आंगन की शोभा गौरैया, इसके बारे में बच्चा लोग तो बहुत है भाई, गौरैया का नाम सुनते हैं मन में उत्साह जो आ जाला, तो इप्पे जो वार्ताकार हुआ सुभाष चंद्र गोस्वामी, तो बच्चा लोग इके सुने।
1: आंगन की शोभा गौरैया। प्यारे बच्चों, यह लाइन सुनते ही अपना बचपन याद आ जाता है। गौरैया यानी घरेलू चिड़िया जो कभी घर आंगन की रौनक हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि घर में गौरैया का घोंसला बनाना शुभ होता है, लक्ष्मी का आगमन समझा जाता है। दादी नानी की कहानियों में सुबह की चहचहाहट, दाना डालने की आदत में घर आंगन, नीम का पेड़, हर जगह गौरैया थी। गौरैया की मौजूदगी बताती थी कि माहौल शुद्ध है, इंसान और प्रकृति में संतुलन है। लेकिन कुछ वर्षों के पूर्व और आज के परिवेश में गांव का परिदृश्य बदल रहा है। शहरी सभ्यता का, शहरी रहन सहन का असर गांव पर भी पड़ रहा है, तो गौरैया कहीं न कहीं ये पक्षी गुम होती जा रही है। पहले बच्चे देखते थे कच्चे घर, खपरैल, आंगन में बिखरा अनाज गौरैया के लिए जन्नत थी। अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ फुदकती हुई गौरैया बच्चों और बड़ों दोनों के मन को अनायास आकर्षित करती थी और वह हमारे जीवन का एक अंग थी। परिवर्तन आया, अब पक्के मकान, मोबाइल टावर, कीटनाशक दवाएं और कम होती हरियाली से गौरैया शहर और गांव दोनों से रूठ सी गई है। इसीलिए कहते हैं, जिस आंगन में गौरैया नहीं वह आंगन सूना सूना सा लगता है। अब बच्चों, बात यहाँ ये उठती है कि इनकी संख्या बढ़ाने के लिए, इनको आकर्षित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। छत अथवा बालकनी में मिट्टी के बर्तन में उनके पीने के लिए पानी रखा जाए, दाना डालने की परंपरा फिर शुरू किया जाए, घोंसले के लिए लकड़ी के छोटे डिब्बे टांगें, आंगन की गौरैया पर कुछ सुंदर पंक्तियां हम आपके सामने देना चाहते हैं। सुबह सुबह जो खिड़की पर आकर चींची शोर मचाती है, वो नन्ही सी गौरैया मेरे पूरे आंगन को महकाती है। तिनका तिनका जोड़कर जो अपना घर बनाती है, वो प्यारी सी गौरैया ही घर की शोभा कहलाती है। गौरैया के संबंध में कुछ साहित्यिक कृतियां भी लिखी गई हैं। आंगन की गौरैया एक काव्य संग्रह है। इसकी लेखिका मुक्ति शाह देव का प्रसिद्ध प्रथम काव्य संग्रह है, जिसमें उन्होंने घरेलू भावनाओं और प्रकृति को पिरोया है। आंगन में गौरैया हाइकू संग्रह है, डॉक्टर कुंवर दिनेश सिंह द्वारा रचित लघु कविताओं हाइकू की एक जीवंत पुस्तक है। गौरैया को आकर्षित करने के आसान तरीके

हम क्या क्या अपना सकते हैं। आंगन में रोजाना सुबह बाजरा, चावल या भुट्टा जमीन पर किसी खुले बर्तन में डालें। धूप से बचने के लिए एक मिट्टी के सकोरे, जिसे हम कटोरे भी कहते हैं, उसमें साफ पानी भर करके रखें। घोंसले के लिए सुरक्षित स्थान अगर मिल सके तो आप घर के बाहरी हिस्सों, छज्जों या रोशनदान में छोटी लकड़ी के घोंसले लगा सकते हैं। यदि आपके आंगन में पुराने पेड़ पौधे या बेलें हैं तो वे गौरैया के छिपने और घोंसला बनाने के लिए बेहतरीन प्राकृतिक जगह हो सकती है। एक चीज का हमें और ध्यान रखना है कि अपने पौधों को, बाग बगीचे के पौधों को बचाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का धुआंधार प्रयोग करते हैं, इससे बचना चाहिए। आंगन या बगीचे या पौधों में कीटनाशक दवाओं का कम से कम प्रयोग किया जाए ताकि उन्हें खाने के लिए प्राकृतिक कीड़े मकोड़े मिल सकें। और आंगन का हरा भरा होना भी जरूरी है। इस क्रम में आप अपने घर में तुलसी, गुड़हल या अन्य छोटे छोटे पौधे लगाएं। हरियाली उन्हें स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है। इस प्रकार वह नन्हा सा प्राणी जो हमसे रूठ सा गया है, दिखाई नहीं देता, जिसकी संख्या लगातार गिरती जा रही है, उसे आकर्षित करने के लिए जो भी सारे उपाय अगर हम करते हैं तो उसके द्वारा फिर से हमारे घर आंगन में गौरैया का आगमन हो

0: हरा भरा होना भी जरूरी है। इस क्रम में आप अपने घर में तुलसी, गुड़हल या अन्य छोटे छोटे पौधे लगाएं। हरियाली उन्हें स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है। इस प्रकार वह नन्हा सा प्राणी जो हमसे रूठ सा गया है, दिखाई नहीं देता, जिसकी संख्या लगातार गिरती जा रही है, उसे आकर्षित करने के लिए जो भी सारे उपाय अगर हम करते हैं तो उसके द्वारा फिर से हमारे घर आंगन में गौरैया का आगमन होगा और माहौल सुखद बनेगा। इस संदर्भ में प्यारे बच्चों, हम अपने बचपन की कुछ यादें संजो करके आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हम लोगों का बचपन, हमारा विशेष करके बचपन गांव में बीता है और गांव के उस रमणीय वातावरण में पक्षियां, चाहे वो कोयल हो, चाहे गौरैया हो, अन्य तमाम पक्षियां कलरव मचाती थीं। बगीचों में हम लोग उनके पीछे सोचते थे इनको पकड़ा जाए, लेकिन सचमुच ये इतने चालाक होते थे कि हमारी मंशा को, हमारे आशय को देख करके, समझ करके ये फुर्र दे उड़ जाते थे। वह मनोरम दृश्य हम बच्चों के मन मयूर को इतना आकर्षित करता था कि उसमें हम लोग अपने को भूल जाते थे। लेकिन आज जब गांव हम लोग जाते हैं, घर जाते हैं, तो वो सारी चीजें, चाहे कोयल की कूक हो, गौरैया का आगमन हो, कुछ तो ऐसा लगता है जो ये मोबाइल वगैरह के टावर वगैरह बने हैं उनकी वजह से इन पक्षियों के जीवन को खतरा हुआ है और ये आते नहीं हैं। दूसरा ये है कि मानव विकास के क्रम में इन छोटी छोटी बातों को भूल गया है। अगर हम बागों में, बगीचों में, अपने घरों के पास छोटे छोटे डिब्बे बना दें, छोटे से दाने उनके लिए थोड़े से रख दें किसी जगह, तो हम ये मानते हैं कि वो फिर से आएंगी और प्रकृति के साथ साथ हमारे मन को भी बड़ा सुखद आनंद मिलेगा। इस प्रकार जो जीवन से थोड़ा हम हट गए हैं, पक्षियों के जीवन से थोड़ा सा हमें अलगाव सा मालूम होता है, बिखराव सा मालूम होता है, अगर इस प्रकार के छोटे छोटे से कार्य हम कर डालें तो हम समझते हैं कि प्रकृति के साथ साथ हमारे जीवन में भी बड़ा आनंद आएगा और बड़ी अच्छी एक सोच हमारी पनपेगी, इसका विस्तार हो।
1: तो देखा बच्चा लोग, जब आंगन में गौरैया आवत रहे, छोट छोट बच्चा सब लोग देखें और उकरे पीछे पीछे दौड़े तो कितना अच्छा लगे। आज भी ये हो कि भाई कैसे भी हो गौरैया के अपने आंगन में हम लोग के ले आना हो, सुरक्षित रखना हो, तो कहें कि यही पर तो लोग वार्ता सुन रहा है आंगन की शोभा गौरैया, वार्ताकार रहना है सुभाष चंद्र गोस्वामी। तो बिना देर के लिए अब नन्हा मुन्हा के हम एक बढ़िया सा बालगीत सुनाओ चलती, तो सुन जाओ।

चलूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। देने बाएं देने बाएं।

0: देखो ना नमुना कितना बढ़िया गीत रल है। ए गीत के माध्यम से भी तो लोग बदे एक संदेश रल है, तो कहें कि अब घड़ी भी इशारा करत हो कि तुम लोगों से विदा लेने का समय हो गल हो, तो चलिए हम तुम लोगों से विदा लें। बच्चों जय हिंद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल गोपाल, प्रसारण आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी।

0: दोस्तों, अगर आज हम सुकून की नींद सोते हैं, अगर तिरंगा आज भी उतनी ही शान से लहराता है, अगर हमारी सुबह आज़ादी की हवा के साथ होती है, तो इसकी कीमत किसी ने अपनी आखिरी सांस देकर चुकाई है।
1: कुछ जीतें सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होती, वे हर भारतीय के दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। ऐसी ही एक अमर गाथा है कारगिल विजय की गाथा।
0: उस शौर्य को सलाम, उस साहस को नमन और उस वीरों को हमारी भावहीन श्रद्धांजलि, जिन्होंने अपनी आस को हमारे कल के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे जाबाज वीरों को दिल से हमारा सलाम
1: और आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं जयशालिनी
0: और मैं हूँ मोनिशा, लेकर प्रस्तुत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।
1: आज 26 जुलाई हम उन वीर सपूतों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए न्यौछावर कर दिया। आइए कारगिल विजय दिवस पर याद करते हैं उस अदम्य साहस, देशभक्ति और बलिदान को जिसने भारत को विजय दिलाई।
0: आज की तारीख 26 जुलाई सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं, बल्कि भारत के शौर्य, साहस और अदम्य पराक्रम की वह गाथा है जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अपनी एक एक इंच जमीन की रक्षा करना जानता है।
1: साल 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की ऊंची ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने अवैध कब्जा कर लिया था।
0: भारत ने इस चुनौती का जब

0: जवाब ऑपरेशन विजय के माध्यम से किया। लगभग 2 महीने तक चले कठिन संघर्ष में हमारे जवानों ने बर्फ से ढकी पहाड़ियों, माइनस तापमान और दुश्मन की गोलाबारी के बीच असाधारण साहस का परिचय दिया।
1: आखिरकार 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय प्राप्त की और हर इंच जमीन को दुश्मन से मुक्त कराया। तभी से हर वर्ष 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं।
0: दोस्तों, देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर लड़ने का नाम नहीं है। आज का युवा अगर ईमानदारी से पढ़ाई करता है, अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है, समाज के प्रति जिम्मेदार बनता है और देश के विकास में अपना योगदान देता है, तो वह भी सच्चा राष्ट्र निर्माता बन सकता है।
1: कारगिल के वीर हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हौसला अडिग हो तो जीत निश्चित होती है। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। 500 से अधिक भारतीय सैनिकों ने इसमें अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था।
0: कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार जैसे वीरों ने अद्वितीय साहस दिखाया। इनमें से कई को परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। किसी ने खूबी कहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा।
1: और कैप्टन विक्रम बत्रा का यह स्लोगन जो जवानों के भीतर जोश भर देता था, ये दिल मांगे मोर, जो आज भी हर भारतीय के मन में वही ऊर्जा भर देता है।
0: कारगिल विजय दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि आज हम जिस खुले आसमान में आज़ादी की सांस लेते हैं, उसके पीछे अनगिनत वीरों का त्याग और बलिदान है। ऐसे महान शहीदों को हमारा शत शत नमन।

0: कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
2: 0542227658।
3: 0542227658।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
2: दोस्तों सोचिए, अगर धरती का कोई ऐसा सुपर हीरो हो जो बिना किसी सुपर पावर के समुद्री तूफानों से हमारी रक्षा करे, हवा को साफ रखे, हजारों जीवों को घर दे और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी हमारी मदद करे। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा जंगल भी है जो समुद्र के खारे पानी में उगता है, जिसकी जड़ें ज़मीन के ऊपर दिखाई देती है और जो चक्रवातों के सामने ढाल बनकर खड़ा रहता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो मैं बता दूं कि ऐसा सच है। यही है मैग्रोव का अद्भुत संसार।
4: प्रकृति का यह अनमोल उपहार हमें हर पल सुरक्षा देता है, लेकिन अफसोस आज यही जीवनदायी पारिस्थितिकी तंत्र खुद हमारी सुरक्षा और संवेदनशीलता का इंतजार कर रहा है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया हर वर्ष 26 जुलाई यानी कि आज के दिन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाकर इनके महत्व को याद करती है और इनके संरक्षण का संकल्प दोहराती है।
2: दोस्तों मैंग्रोव कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये ऐसे पेड़ हैं जो समुद्र के खारे पानी और दलदली जमीन में भी मजबूती से खड़े रहते हैं। इनकी जड़ें जितनी अनोखी दिखती है उतनी ही अनोखा इनका काम भी है।
4: जब समुद्र में तेज लहरें उठती हैं या चक्रवात आता है तो यही मैंग्रोव सबसे पहले उस ताकत को अपने ऊपर झेलते हैं और तटीय इलाकों को बचाते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति की सुरक्षा दीवार भी कहा जाता है।
2: क्या आप जानते हैं मैंग्रोव जंगल सामान्य वनों की तुलना में कई गुना अधिक कार्बन अपने अंदर संग्रहित कर सकते हैं, यानी ये ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में हमारी मदद करते हैं।
4: इतना ही नहीं दोस्तों, मछलियों, केकड़ों, झींगों, पक्षियों और कई दुर्लभ जीवों का जीवन भी इन्हीं जंगलों पर निर्भर करता है। अगर मैंग्रोव खत्म होंगे तो समुद्री जैव विविधता भी गंभीर खतरे में पड़ सकती है।
2: लेकिन दुख की बात यह है कि शहरीकरण, प्रदूषण, अवैध कटाई और तटीय विकास के कारण दुनिया भर में मैंग्रोव तेजी से कम हो रहे हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने इस अमूल्य पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझाने और इसके संरक्षण के लिए 26 जुलाई को यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया।
4: अब सवाल है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बहुत कुछ, और शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं बल्कि अपनी छोटी छोटी आदतों से कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, जब भी समुद्र, नदी या किसी जल स्रोत के किनारे जाएं, वहां प्लास्टिक या अन्य कचरा ना फैलाएं, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों में भाग लें, अपने परिवार, दोस्तों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूक करें। यदि कभी मैंग्रोव संरक्षण या वृक्षारोपण का अवसर मिले तो उसमें अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें।
4: याद रखिए दोस्तों, प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकारों या पर्यावरणविदों की नहीं है, यह जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तब प्रकृति भी हमारी रक्षा करती है। मैंग्रोव सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है बल्कि तटीय इलाकों की सुरक्षा कवच है। ये अनगिनत जीवों का घर है, मछुआरों की आजीविका का आधार है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद भी।
2: बिल्कुल, सोचिए अगर ये जंगल ना रहे तो समुद्र की हर लहर तेज तटीय बस्तियों के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन अगर मैंग्रोव सुरक्षित रहेंगे तो समुद्र भी सुरक्षित रहेंगे, समुद्र सुरक्षित रहेंगे तो वहाँ का जीवन सुरक्षित रहेगा, और जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
4: दोस्तों याद रखिए, प्रकृति को हमारी ज़रूरत नहीं है लेकिन हमें प्रकृति की ज़रूरत हमेशा रहेगी। और जब हम आज एक पेड़, एक जंगल और एक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाते हैं तो दरअसल हम अपना ही कल सुरक्षित कर रहे होते हैं।
2: बिल्कुल, इसलिए अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आज हम एक कदम बढ़ाना होगा हमें, और अपनी भूमिका सुनिश्चित करना होगा। पर्यावरण संरक्षण को केवल एक अभियान नहीं बल्कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि एक छोटा सा प्रयास भी तब बड़ा बदलाव बन जाता है जब उसमें हर व्यक्ति अपनी भागीदारी जोड़ता है।

0: वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क

0: दोस्तों, इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना जीवन नहीं जीते, बल्कि पूरी एक पीढ़ी की सोच बदल देते हैं। कुछ नाम किताबों में लिखे जाते हैं और कुछ नाम लोगों के दिलों में। ऐसा ही एक नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
1: जरा कल्पना कीजिए, एक युवा जिसकी बुद्धिमत्ता पर पूरे देश को गर्व है, जिसने भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS जैसी कठिन परीक्षा शानदार रैंक के साथ पास कर ली हो, एक ऐसी नौकरी जिसे उस समय सम्मान, सुरक्षा और प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। लेकिन वही युवा एक दिन उस नौकरी को यह कहकर छोड़ देता है कि मैं उस शासन की सेवा नहीं कर सकता।

0: था जिसने मेरे देश को गुलाम बनाकर रखा है। यही थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
1: 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी, अनुशासित और संवेदनशील थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस प्रसिद्ध वकील थे और चाहते थे कि उनका बेटा भी प्रशासनिक अधिकारी बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के सपनों की दिशा कुछ और थी। उनके भीतर देश प्रेम की लौ बहुत कम उम्र में ही जल उठी थी। स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों ने उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला था। यही कारण था कि उनके लिए व्यक्तिगत सफलता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था राष्ट्र का सम्मान।
0: सन 1920 में उन्होंने ICS परीक्षा उत्कीर्ण की, लेकिन 1921 में अंग्रेजी सरकार की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि उस समय लाखों भारतीय ऐसी नौकरी पाने का सपना देखते थे, लेकिन नेताजी ने दिखा दिया कि जब लक्ष्य राष्ट्र हो तो व्यक्तिगत सुविधाएं छोटी पड़ जाती है।
1: और इसके बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और अपने तेज विचारों, अद्भुत संगठन क्षमता और निर्भीक नेतृत्व के कारण जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने लगे। वर्ष 1938 में वे कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में भी अध्यक्ष चुने गए। हालांकि विचारों में मतभेद के कारण उन्होंने बाद में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
0: लेकिन नेताजी का संघर्ष यहीं नहीं रुका। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कई बार जेल में डाला और नज़रबंद भी किया। वर्ष 1941 में उन्होंने कोलकाता स्थित अपने घर से एक साहसिक योजना के तहत गुप्त रूप से निकलकर भारत छोड़ दिया। ये घटना आज भी भारतीय इतिहास के सबसे रोमांचक अध्यायों में गिनी जाती है। वे अफगानिस्तान, सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंचे और बाद में दक्षिण पूर्व एशिया जाकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया।
1: वर्ष 1943 में नेताजी ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज यानी इंटरनेशनल आर्मी का नेतृत्व संभाला। उन्होंने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक आह्वान किया जिसने पूरी देश में एक नई ऊर्जा भर दी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि स्वतंत्र भारत का सपना देखने वाले करोड़ों लोगों की आवाज़ बन गया था।
0: नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने भारत की सीमाओं तक पहुंचकर अंग्रेजी शासन को यह संदेश दे दिया कि भारत की आज़ादी अब दूर नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज और उसके मुकदमों ने भारतीय सेना और जनता के मन में गहरा प्रभाव छोड़ा, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति दी।
1: दोस्तों, नेताजी सिर्फ एक महान सेनानी नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके युवा होते हैं। उनका विश्वास था कि साहस, अनुशासन, आत्मविश्वास और त्याग, यही किसी व्यक्ति और राष्ट्र को महान बनाते हैं। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, जीवन में संघर्ष न हो, जोखिम न हो, तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। यह विचार आज भी युवाओं को चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा देता है।
0: दोस्तों, नेताजी के जीवन का एक रहस्य आज भी चर्चा का विषय है। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनके निधन की खबर सामने आई। हालांकि इस घटना को लेकर वर्षों तक अलग अलग दावे और जांच होती रही, लेकिन उनके जीवन और मृत्यु से जुड़ा यह अध्याय आज भी इतिहास के सबसे चर्चित रहस्यों में से एक माना जाता है।
1: दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमें सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व पद से नहीं बल्कि उद्देश्य से पैदा होता है। राष्ट्रप्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होता है। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए हम कठिन रास्तों पर चलने का साहस रखते हैं।
0: दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमारा शत शत नमन। दोस्तों, उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर इरादे अटल हो, उद्देश्य स्पष्ट हो और मन में देश व समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं।

0: चलिए दोस्तों, अब समय है आज के शब्द का, जहां हम सीखते हैं रोज़मर्रा के में काम आने वाले एक हिंदी और एक अंग्रेजी का शब्द और उसके अर्थ और साथ ही उसके वाक्य प्रयोग।
1: तो दोस्तों, आज का हमारा हिंदी का शब्द है दुर्निवार, जिसका अर्थ होता है जिसे रोका ना जा सके, जिसे कोई बाधा रोक ना पाए, यानी अजेय या अपरिहार्य। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का साहस, उसका संकल्प या उसका हौसला इतना मजबूत हो कि कोई भी कठिनाई उसे रोक ना सके, तो उसे व्यक्त करने के लिए दुर्निवार जैसा सशक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसे वाक्य में हम कुछ यूं समझ सकते हैं, देश के वीर सैनिकों का साहस दुर्निवार था।
0: और आज का अंग्रेजी शब्द है जेफर, जिसकी स्पेलिंग है ZEPHYR, जेफर। जेफर का अर्थ है अ सॉफ्ट जेंटल ब्रीज, यानी मंद शीतल और सुकून देने वाली बयार यानी हवा। ज़रा कल्पना कीजिए, सुबह सुबह जब हल्की ठंडी हवा आपके चेहरे को छूकर गुजरती है और मन अपने आप खिल उठता है, यही एहसास को अंग्रेजी में कहते हैं जेफर। आइए इसे एक वाक्य से समझते हैं। अ जेंटल जेफर मेट द इवनिंग काम एंड प्लीजेंट। तो आज की दो नए शब्द याद रखिएगा दोस्तों, दुर्निवार यानी जिसे रोका ना जा सके, और जेफर यानी मन शीतल और सुकून देने वाली बयार। उम्मीद है ये दोनों शब्द आपके शब्द भंडार को और भी समृद्ध बनाएंगे।
1: जानकारी और जागरूकता आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है दोस्तों। देश और दुनिया में हर दिन ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जो हमारे जीवन और भविष्य को प्रभावित करती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। तभी तो दोस्त हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं विश्व घटना चक्र, ताकि कोई जानकारी या खबर आपसे छूट ना जाए।
1: तो दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल बने हैं। उन्होंने 21 जुलाई 2026 को इस पद का कार्यभार संभाला है और इसी के साथ इसकी उपाध्यक्ष बनी है एस मुनावारी बेगम।
0: दोस्तों, भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के फाइनल में जापान की खिलाड़ी अकाने यामागुची को हराकर पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया है।
1: और साल 2026 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को दिया जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें 1 अगस्त 2026 को पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाएगा।
0: दोस्तों कहते हैं ज्ञान वही है जो सही समय पर सही जवाब बनकर सामने आए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त है आपके पसंदीदा सेगमेंट क्वेश्चन ऑफ द डे का।
1: बिल्कुल, यहाँ सिर्फ सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि हर दिन आपके ज्ञान, आपकी जिज्ञासा और आपकी सोच को मिलता है एक नया मंच। कौन जाने, आज का सही सवाल आपको भी हमारे विजेताओं की सूची में शामिल कर दे।
0: लेकिन आज का सवाल पूछने से पहले तालियां तो बनती हैं उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने कल के प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर देकर अपनी शानदार पहचान बनाई है।
1: तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कल के सवाल पर, जो कि था, सौर मंडल में सौंदर्य का यह ग्रह किसे कहा जाता है? जिसका सही जवाब है शुक्र यानी वीनस।
0: और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले हमारे विजेता हैं, जिनका नाम है मुकेश कुमार प्रजापति सिगरा वाराणसी से, रवि मौर्य सिमरौर आजमगढ़ से, चंदा चंदौली से,
1: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाक से, और इसी के साथ बाबू दिव्यांश रिंग रोड नर्मदा नगर से हैं, सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
0: ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से है प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। इसी के साथ हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, भारती बघेल, लगान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से। इसी के साथ प्रवीण चौहान खरगोन MP से हैं, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: तो बारी है अब आज के प्रश्न की दोस्तों, जो कि है, हाल ही में रामायण मास को किस

0: राज्य में शुरू किया गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, हाल ही में रामायण मास किस राज्य में शुरू किया गया है?
1: अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो बिना देरी किए हमें अपना उत्तर भेजिए हमारे इंस्टा आईडी youthairvaranasi पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं youthairvaranasi@gmail.com पर। तो जल्दी से अपना जवाब हमें भेजिए और बन जाइए विनर्स। और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए ये गाना उन साथियों के लिए जो है आज के विनर्स।

0: दोस्तों अब बारी है रोजगार सूचना की, तो चलिए बिना देरी के जानते हैं आज की रोजगार सूचना।
1: रेलवे ने आधिकारिक वेबसाइट पर सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं और इन भर्तियों की टोटल पदों की संख्या है 119।
0: दोस्तों आरआरबी के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई 2026 को शुरू हो गई है और उम्मीदवार 14 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष होनी चाहिए।
1: साथियों और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी www.rrbapply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: दोस्तों सुबह की चाय हो, ताज़ी सब्जियां हो या शाम के गर्मा गर्म समोसे, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के में जो रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं की भूमिका बहुत होती है ना, अहम, जो हमारे जीवन में बहुत अहम होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों की ज़रूरत पूरी करने वाले इन मेहनतकश लोगों के लिए कौन सहारा बनता है?
1: इसी सोच के साथ भारत सरकार ने शुरू की है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना यानी पीएम स्वनिधि स्कीम। यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि लाखों छोटे कारोबारियों के लिए आत्मनिर्भर बनने का मजबूत कदम है।
0: दोस्तों यह योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को

0: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है रेहड़ी ठेला फेरी या सड़क किनारे छोटे दुकान लगातार रोजगार करने वाले विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ताकि वे अपने कारोबार को फिर से शुरू कर सके और आगे बढ़े।
1: इस योजना के तहत पात्र विक्रेताओं को शुरुआत में 10,000 रुपए तक बिना गारंटी का ऋण दिया जाता है। समय पर ऋण चुकाने पर अगली बार 20,000 और 50,000 तक का ऋण भी मिल सकता है। इतना ही नहीं, समय पर भुगतान करने वाले को 7% तक की ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है।
0: दोस्तों, आज के डिजिटल दौर को देखते हुए योजना डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा देती है। यानी अगर कोई विक्रेता UPI या QR कोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करता है तो उसे प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। इसके उनका कारोबार आधुनिक बनता है और वे बैंकिंग व्यवस्था से भी जुड़ते हैं।
1: दोस्तों, इस योजना का लाभ सब्जी और फल बेचने वालों, चाय और नाश्ता के ठेले वालों, गोलगप्पे और पकौड़े विक्रेताओं, कपड़े जूते किताब बेचने वाले, मोची नाई पान विक्रेता, धोबी या ऐसे ही अनेक छोटे कारोबारियों को मिल सकता है।
0: दोस्तों, याद रखिए, किसी भी शहर की असली पहचान सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि उन मेहनतकश हाथों से बनती है जो हर दिन ईमानदारी से अपनी मेहनत का ठेला सजाते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन्हीं हाथों को मजबूत करने और उनके सपनों को नई उड़ान देने का एक सार्थक पहल है।
1: अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी रेहड़ी या ठेला लगाकर अपना परिवार चला रहा है तो इस योजना की जानकारी उन्हें ज़रूर दें, क्योंकि यही सही समय पर सही जानकारी ज़िंदगी बदल सकती है।
0: और इसी के साथ जानकारी और मनोरंजन का ये सफ़र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। अब समय हमसे विदा मांग रहा है। और दोस्तों, जाने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अपना और अपनों का रखिए ख्याल और आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम के किसी अगले अंक में। और आज के कार्यक्रम में आपके साथ ही मैं मोनिशा
1: और मैं जयशालिनी,
0: हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचार अंत के साथ हम शिवानी अरोरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम का 136वां कड़ी में देशवासियों से आपन विचार साझा कर ले। वहां के कहले कि भारत रक्षा निर्यात राजनीतिक सहयोग आ मित्र देशन के मामला में लगातार नया ऊंचाई छू रहल हो। कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकन के यादिकर्त श्री मोदी कहले कि ई दिन देशवासियों के अपने बहादुर सैनिकन का असाधारण शौर्य का याद ही दियावेला।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया।
0: कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री कहले कि 4 जुलाई से ईबीसीएस राष्ट्रव्यापी अभियान चलावल जा रहे हो।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही।
0: प्रधानमंत्री 15 अगस्त के मनावल जाए वाला स्वतंत्रता दिवस के बारे में जिक्र कैले। वहां के कहले कि ई दिन वो अनगिनत वीरन की यादी कैले का हो जी भारत माता की स्वतंत्रता बदे आपन सब कुछ समर्पित कई दिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए आपन विचार साझा कैले के क्रम में उत्तर प्रदेश का सराहना कैले। वहां के कहले कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान में प्रदेश में जनशक्ति का अद्भुत संकल्प देखे के मिलल हो। श्री मोदी कहले कि उत्तर प्रदेश का सांसद भैले के नाते उनके खाते

0: ये गर्व का बाती बा। मन की बात में प्रदेश का सराहना करे बदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के प्रति आभार जतवले हवे। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर मुख्यमंत्री लिख ले की ये पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रदेश का सामूहिक चेतना का सम्मान हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा के डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकन उनके आश्रितन की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करे वाला मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ के लिए इन मौका पर वहाँ के कहले की बदला दौर में शिक्षकन का जिम्मेदारी बढ़ी गयी बा। परिवर्तन तब भी आई जब शिक्षक और छात्र के बीच सार्थक बातचीत हुई। वहाँ के शिक्षक लोग उनसे अपील कहले की वो जब नया सत्र का पहला कक्षा ले तो जे पाठ्यक्रम शुरू करने के बजाय ओके परिचयात्मक आरोचक बनावे। कैशलेस चिकित्सा योजना का जानकारी देते मुख्यमंत्री कहले
1: घटनाएं दुर्घटनाएं अगर बोल करके नहीं आती है, मूर्त देख करके नहीं आती है, कोई भी व्यक्ति उसकी चपेट में आ सकता है, लेकिन जब आता है तो उस समय वह व्यक्ति या उसका परिवार अपने आप को असहाय महसूस न करे, बल्कि सिस्टम उसके साथ खड़ा है, शासन उसके साथ खड़ा है, जिसमें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा राज्य सरकार आज को उपलब्ध करा रही है।
0: इन मौका पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, प्रदेश सरकार के मंत्री जोगेंद्र उपाध्याय मौजूद रहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अजियो इटावा पहुंच के ओइजा के नुमाइश पंडाल में 604 करोड़ रुपया का 128 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कर ले। यह मौका पर आयोजित जनसभा के संबोधित करत वहां के प्रदेश में फैल विकास कार्य का पुरहर जानकारी दी ली। राष्ट्र आज कारगिल विजय दिवस मनायल जा रहा हो। यह मौका पर परिस 1999 के कारगिल युद्ध में देश प्रदेश सर्वोच्च बलिदान देवे वाले सैनिकन के श्रद्धांजलि दे रहे हो। सुल्तानपुर में यह मौका पर गोमती मित्र लोगी माँ गोमती का स्वच्छता और संरक्षण बदे श्रम दान कैले। वाराणसी में कारगिल विजय दिवस के मौका पर काशी विश्वनाथ धाम में नमामि गंगे के ओरी से भारतीय सेना का शौर्य बलिदान के नमन कैल गयी। लखनऊ में यह मौका पर विविध कार्यक्रम आयोजित कैल जा रहे बा। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश वर्ष 2027 का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा बदी व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी हले हो। व्यक्तिगत परीक्षार्थी अपन आवेदन संबंधित अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य के 5 अगस्त ले दे देवे की हुई। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें आज के शेष और कल यानी 27 जुलाई सन 2026 को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा सुनिएगा रात 10 बजे से, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। गैर फिल्म गीत एवं गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात 9:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत की कलाकार होंगी आबिदा परवीन। पत्र के लिए धन्यवाद। आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। आपके ईमेल पत्रों के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत। बातचीत का विषय होगा टमाटर की खेती से अधिक आय कैसे। इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं पारसनाथ बागी और साथियों गाया लोकगीत। फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:10 पर। शाम 7:50 पर कार्यक्रम रसरंग में और रात 8:15 पर कार्यक्रम रसमाधुरी में। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब एक नजर कल के

प्रमुख कार्यक्रमों पर। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण सुनिएगा रात 10 बजे से और संसद समीक्षा आप सुन सकते हैं रात 8 बजे से। ये दोनों कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे। उर्दू कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा सुबह 9:30 पर। अंजुमन की महफिल सजेगी रात 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर और सुबह 7:31 पर सुनिएगा पंडित कृष्णाराम चौधरी और साथियों का शहनाई वादन। और दिन 12:45 पर सुनिएगा डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे का गायन। कृषि रथ कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनिएगा इंजीनियर अनूप कुमार सिंह से सतीश कुमार यादव की बातचीत। विषय होगा आवासीय भवन बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। और इसी कार्यक्रम में सुनिएगा खुशबू कुमारी का गाया लोकगीत। इन्हीं का गाया लोकगीत सुबह 9:50 पर और दिन 1:45 पर भी होगा। युवा दोस्तों की वाणी सजेगी शाम 5:15 पर जिसमें होगी आज की बात। सौरव त्रिपाठी की वार्ता कारगिल विजय साहस शौर्य और राष्ट्रभक्ति। यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन। रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में कल आप सुनिएगा भोजपुरी गाने। समय याद कीजिए दिन 2:30 पर। बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सुनेगा दिन 1:15 पर जिसमें रश्मि शर्मा की वार्ता का विषय होगा सोशल मीडिया और डिजिटल विज्ञापनों का प्रभाव। इसके अलावा सेहत ज्ञान की बातें और फिल्म संगीत भी होगा। दिन 12:30 पर सुगम संगीत के कलाकार होंगी चारुलता मुखर्जी। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दिन 12 बजे से। मधुरमा सुनिएगा

रश्मि शर्मा की वार्ता का विषय होगा सोशल मीडिया और डिजिटल विज्ञापनों का प्रभाव। इसके अलावा सेहत ज्ञान की बातें और फिल्म संगीत भी होगा। दिन 12:30 पर सुगम संगीत की कलाकार होंगी चारुलता मुखर्जी। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दिन 12 बजे से। मधुरमा सुनिएगा सुबह 8:45 पर और गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 बजे से। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ सुनिएगा सुबह 6:40 पर। दांतों का प्रत्यारोपण कब और कैसे, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर ठाकुर प्रसाद चतुर्वेदी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:35 पर। तो रहिए स्वस्थ और सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। विचार बिंदु का समय होगा सुबह 6:30। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना सुनिएगा सुबह 6:10 पर। लोबिया की खेती, इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह कार्यक्रम खेती की बातें में सुबह 6:05 पर। तो ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत बस थोड़ी ही देर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: ढलती शाम की साय में आप हैं आकाशवाणी वाराणसी के संग। आइए सुने फिल्म संगीत। जान तेरे नाम, यह है फिल्म का नाम।

0: तुम मेरे हो। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे की आवाज में। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थे आनंद मिलिंद। इस गीत से पहले आप सुन रहे थे जान तेरे नाम फिल्म का गाना कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार थे रानी मलिक और संगीतकार नदीम श्रवण। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र और सुनते हैं संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणः उद्बोधनम्। प्रख्यापितं तेन सामूहिक सहभागितायाः वैशिष्ट्यम्। कारगिल विजय दिवसावसरे प्रधानमन्त्री प्रभृतयः हुतात्म वीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समार्पयन्। प्रधानमन्त्रिणा अद्य कारगिल विजय दिवसे राष्ट्रस्य अतुल्य हुतात्म पुरुषाः ससंभ्रमं संस्मृताः प्रोक्तं च यत् देशाय तेषां महाबलिदानं सर्वान् गौरवपूर्णान् करोति। मातृभूमेः रक्षणाय हुतात्म वीरेभ्यः राष्ट्रपत्यादिभिः भावाञ्जलिः समर्पितः। कृष्णसागर मार्गेषु पोत सेवायाः पूर्वं सुरक्षा संकटं परीक्षणाय विदेश मन्त्रालयस्य भारतीयानां कृते तीव्रा संचेतना। ग्लास्को नगरे समायोजितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु ऋषिकांत सिंह चनम्बम 60 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धायां अनुपमं कौशलं प्रदर्श्य रजत पदकं समुपार्जितवान्। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोर्मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः तृतीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् भारतस्य सांस्कृतिक मूल्येषु सामूहिक सहभागित्वं सर्वदा बलस्य स्तोत्रो वर्तते। श्रीमोदी अद्य दृश्य श्रव्य माध्यमेन 26,000 विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इत्यस्य प्रतिभागिभिः सह वार्तालापावधौ एतद् उक्तवान्। अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रस्य अतुल्य पराक्रमिणः शौर्य पुरुषान् ससंभ्रमं सस्मार। तेन उद्घोषितं यत् भारतं अद्य निरन्तरं नूतनान् उच्च शिखरान् आरोहति। तद्यथा सैन्य उत्पादने सैन्य निर्याते अथवा मित्र राष्ट्रैः सह राजनैतिक सहयोगे भवतु। आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देशवासिनः संबोधयन् श्रीमोदी आह यत् अद्य जुलाई मासस्य 26 दिनांको वर्तते। यो हि सा तिथिः यस्याः संस्मरणाय कस्यापि पञ्चाङ्गस्य आवश्यकता नैव वर्तते, यतो हि अद्य सम्पूर्णे राष्ट्रे कारगिल विजय दिवसः परिपाल्यते।
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: श्री मोदी न्यगादीत यत् भारतम् अश्रान्तं स्वकीयस्य प्राविधिक सामर्थ्यस्य सुदृढीकरणं विदधाति। तेन भारतीय नौसेनायां INS महेन्द्र

0: एतादृशदायित्व द्वायित्वस्वीकरणात् पूर्वं प्रवृत्तसुरक्षासङ्कटस्य सूक्ष्मेक्षया परीक्षणं कुर्युः इति साग्रहम् उद्बोधिताः। पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोर्मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः तृतीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। भारतेन जिम्बाब्वे देशस्य सम्मुखे 93-100 धावनांकानां लक्ष्यम् उपस्थापितम्। अद्यत्वे प्रचलितासु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य ऋषिकांत सिंह चनम्बम इत्येषः ग्लास्को नगरे पुरुषाणां 60 किलोग्राम मितायां भारोत्तोलन स्पर्धायां रजत पदकम् अवाप्तवान् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: इमरती बहन,
1: हाँ रमेश्वर भैया,
0: का हाल चाल बा? गांव गिराव खेत
1: हाल
0: खरिहान
1: चाल एक
0: कहा?
1: टाइम बढ़िया हुआ जब भगवान भी जो है कि मनसायन हुआ रह रहे के बरस जात हुए
0: हाँ
1: और खेती क्यारी में जो है पानी हो गया बा, तब धान का रोपाई भी शुरू हो गई बा।
0: बिल्कुल, धान का रोपाई शुरू हो गई तो बहुत बढ़िया बात बा। जे रोप भइल बा ओकर तो कुल चीज चोंख चोंख हो गल, लेकिन जौन पहले कहलू है कि भगवान का जौन मन बा ना, तो देखा आज तक दई का मन कोई न जनलेस ना कोई जान पाई। बस यह बा कि सोच अच्छा रहे, काम अच्छा रहे, तब बरक्कत अपने आप होई। आ अपने खेती किसानी में देखें प्रगतिशील किसान भी अभी लोग जोन अपन सोच पहले से बनौले रहना कि देखें हमके रवि के फसल में ही करे के है, जायद में ही करे के है, खरीफ में ही करे के है, आ अगर महीना दो महीना पहले से बिया का योजना बना ले बना कि हमकी ये प्रजाति है का बिया डाले के है। जैसे अपने कतवारू भैया के लेला हो, इन यहाँ पर ये मोट बनौले रहना है कि 10 साल से मोट चाउर का धान बिया डालत रहना है।
1: ऐसा बा भैया ना
0: हाँ
1: कि देखा अब अपने किसानी में भी ना
0: हाँ
1: बहुत तरह के तकनीक आ गई हो,
0: हाँ हाँ
1: और तकनीक ये आ गई हुआ कि अब पहले रहे कि लोग एक ही तरह का खेती करें,
0: हाँ
1: लेकिन अब तो हर समय हर फसल आप उगा सकन है। अब देखा हमें व्यावसायिक फसल भी उगाल जाते हैं, खाए पिए वाला भी उगाल जाते हैं, और साथ ही
0: बिल्कुल
1: साथ एक बात ये भी हो ना कि अब जो
0: हाँ
1: नई नई तकनीक, नई नई मशीन, नई नई जो हो कि जैविक खाद के बात हम लोग करीला,
0: हाँ
1: तो इस तरह का जो व्यवस्था हो गई हो ना, तो
0: हाँ
1: अपन खेती किसानी अब बहुत आगे हो गई।
0: बस वह कहल चाहत रही कि जैसे कतवारू भैया अपन यहाँ पर ही मन बनौले हम कि महीन चाहूर के बिया डलिए, और डलले भी हम आ बढ़िया प्रजाति का जो उनके का दाम लगभग मोट चाउर का दूना होला, वो प्रजाति का बिया लिया के डले हम रोप के खाली हो गल हम। और जो कहलू है कि खेती का बहुत सा ऐसा विधि आ गल है, तो देखें अपने रामू भैया जो हम आ अपने श्यामू भैया, ये दोनों लोग इस समय धान चाउर की खेती के लिए छोड़ दिले हम, पकड़ ले हम बरियार बाजार, आ इन लोग के बरहो मास लौकल तरकारी का
1: रमेश्वर
0: व्यवसाय।
1: भैया कहीं ना कि
0: हाँ
1: जमाना बदलल हो,
0: हाँ
1: खर्चा बदलल, अब देखा महंगाई बदलल, तो मन ही
0: हाँ
1: खाली जोन हो ना कि ऐसा ना,
0: परंपरागत
1: हाँ
0: खेती पर
1: भुखना,
0: न रही, समझ
1: हाँ
0: गई बात जो उन
1: तो
0: कहल चाहत
1: व्यावसायिक
0: हो।
1: फसल न उगाई है, दो पैसा
0: हाँ
1: का आमदनी न करी है, तो बाल
0: हाँ
1: बच्चन के पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ कैसे आगे
0: बिल्कुल
1: कैसे बढ़ी है, और
0: हाँ
1: जनता हुआ कि देखा जमाने के अनुसार अगर कदम से कदम मिला के न चलवा तो
0: हाँ
1: बहुत पीछे रह जाएगा, और कही कि अब
0: बिल्कुल
1: वही पढ़ाई की बात कैली है ना, तो
0: हाँ
1: हमार सरकार भी देखा हमें कहीं भी पीछे ना हुआ है,
0: हाँ
1: ये तरह तरह के व्यवस्था करत हो, तरह तरह के सुविधा देत हो, और खास करके अपने अल्पसंख्यक छात्रन हित बुद्ध सरकार तो ऐसा बहुत सारी योजना लेके आवत हो, जैसे कि भाई अगर जे स्कूल जाए वाला भी ना हो, जेके कोनो सहायता भी ना हो आर्थिक सहायता, वो भी अगर उकरे अंदर ऐसा हुनर हो तो वो
0: हाँ
1: पढ़ लिख के आगे बढ़ सकत हो।
0: बिल्कुल, आ यही क्रम में आज हम जानल जाइए अल्पसंख्यक छात्रन बदे सरकार का क्या योजना है, और ऐसन भी अपने बीच समाज में बहुत से अल्पसंख्यक भैया लोग हम जो आर्थिक रूप से कमजोर हम, जो पढ़ाई में उतना खर्चा उठावे लायक अपने आप के महसूस नहीं करना, तो सरकार ऐसा लोगों बदे बहुत सारी योजना बनौले है, जमन एक विशेष योजना है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति।

0: योजना जेकरे माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक का जौन भी निर्धन छात्र हमारे अल्पसंख्यक वर्ग में उनके छात्रवृत्ति के माध्यम से मदद करके, आर्थिक मदद करके उन लोगों के पढ़ाई लिखाई में मदद मिलेगा।
1: और
0: और
1: इतना कहीं ना तू
0: हाँ
1: कह देला कि भाई 1 से 10 तक, हम तो कहीं कि ओकरे बाद अगर केहू पढ़ा चाहत हो, ओकरे अंदर इच्छा हो कि हम पढ़ लिख के आगे बढ़ी
0: हाँ
1: कुछ
0: वो
1: करी,
0: उच्च
1: तो
0: शिक्षा में,
1: हाँ तो ओकरे बदे भी कहीं ना 11वीं से लेके उच्च शिक्षा जितना भी पढ़े चाहें
0: हाँ
1: ओकरे बदे जो भी ना पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का व्यवस्था सरकार के द्वारा से कैल गेल हो। और
0: हाँ
1: इतना ना ही हो रामेश्वर भैया,
0: हाँ
1: हम कहीं ना कि
0: हाँ
1: भाई जैसे तकनीकी शिक्षा जो बात लोग कह जाए, क्योंकि तरह तरह का तकनीक हो,
0: हाँ कोई
1: व्यावसायिक
0: आईटीआई
1: शिक्षा,
0: करे चाहत बा, कोई
1: हाँ
0: पॉलिटेक्निक करे चाहत
1: तो
0: बा,
1: एकरे बदे भी सरकार जोन हो ना तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए भी मदद करत हो कि भाई जे तरह का भी आप हुनर हो, जे तरह के कौशल विकास आपके अंदर हो, करे चाहत हो, तो ओकरे बदे भी सरकार जोन हो कि व्यवस्था करत हो।
0: ए मृति बहनी, यो इतने पर गाड़ी नहीं रुकत बा ये योजना का। देश के साथे साथे अगर विदेश में भी जैसे पीएचडी करल चाहत हुआ, उच्च शिक्षा के माध्यम से कोनो पढ़ाई लिखाई करे चाहत हुआ, आ उनके अंदर हुनर बा, योग्यता बा, खाली निर्धनता कारण बनत बा, तई अल्पसंख्यक वर्ग के जौन छात्र लोग, हमारे छात्रा बहन हैं, इन लोगन बदे उच्च शिक्षा से लेकर के शोध कार्य तक बदे भी छात्रवृत्ति का योजना बा।
1: इतने नहीं रमेश्वर भैया, कहीं कि निःशुल्क कोचिंग नया सवेरा के नाम से मेडिकल इंजीनियरिंग और
0: हाँ
1: प्रतियोगी परीक्षा भी जी तैयारी करा चाहत हो ना, ओकरे
0: हाँ
1: बदे भी व्यवस्था गई हो। साथ में छात्रावास का सुविधा भी हो कि भैया मुफ्त भोजन आवास का रह के व्यवस्था हो, अध्ययन सामग्री हो। और
0: हाँ
1: कहीं कि अगर आप यूपीएससी में जाए चाहत हुए और बड़ी और बड़ी नौकरी करा
0: हाँ
1: चाहत
0: हाँ
1: हुए,
0: बढ़िया पा
1: हाँ
0: नौकरी वाला
1: तो
0: पढ़ाई
1: ओकरे
0: करल
1: बदे भी
0: चाहत
1: एक
0: हुआ।
1: नई उड़ान योजना भी शुरू करी गई हो सरकार की तरफ से। तो
0: हाँ
1: भाई देखा रमेश्वर भैया,
0: हाँ
1: सरकार का काम हो कि हम लोगन के योजना देना, आर्थिक सहायता देना, व्यवस्था कर देना, लेकिन इनमें भैया लोगन के भी ये काम हो कि भाई जे भी तरह के उनके पास हुनर हो, जे तरह के पढ़ाई करना चाहते हुए, वो आगे आ करके ये तरह की योजना का लाभ लें और समाज के साथ जुड़ करके आगे बढ़ें।
0: एकरे साथे साथे जौन भी पंच भैया लोगन तक की बात पहुँचत है, अगर उनके जानकारी में कोई ऐसा भाई है जे आर्थिक रूप से पिछड़ल बा, लेकिन उनकर बेटवा बिटिया पढ़े में तेज हम, उनकर हुनर है, तो निश्चित रूप से उन लोगन के जे अभी सुविधा से वंचित हों, उनके लाभ दियाओ में अपन मदद करें, उनके जानकारी दें। तो इस तरह बात अल्पसंख्यक लोगन बदे, देखें ये समय अपने खेती किसानी की तरफ फिर लौटल जा, कुछ बात बत कही हुई लेकिन
1: लेकिन
0: समय हो था
1: हाँ जरूरी संदेश का,
0: तो
1: तो भैया लोग संदेश सुने।
0: सुन लेवल जा।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: It's another six.
1: रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा।
2: ये क्या किया?
3: मैच तो गया।
1: पेमेंट कैसे करेंगे?
4: टोकनाइज कार्ड से।
3: टोकन?
4: हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट, वही सुविधा अधिक सुरक्षित।
3: ऑलराउंडर
4: ओके भाई। RBI कहता है कि
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सनेश तो हो गई मृत्यु बहन।
7: और भाई हम लोग कहते हैं ना कि भैया लोगन तरह तरह के खेती करत हुए, हाँ
6: हाँ।
7: और आय का साधन जुटावत हुए,
6: हाँ हाँ।
7: तो कहीं यही में बढ़िया सा हम लोग भैया लोग की बतकही सुना चल थी, हाँ। कि टमाटर की खेती से अधिक आय कैसे, हाँ? पे डॉक्टर जगेश कुमार तिवारी से बतियोले हुए दिनेश कुमार सिंह जी, तो भैया लोग बतकही सुन।
6: अब सुनल जाए।
8: डॉक्टर जगेश कुमार तिवारी, आप प्रधान वैज्ञानिक हुए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। आज मैं आपसे टमाटर की खेती के संबंध में जानना चाहूँगा।

0: किसान भाई एकर खेती अगर करे चाहते हैं तो कौन कौन सा वैज्ञानिक तकनीक अपनावे हो जोने से उनका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले।
1: धन्यवाद दिनेश जी। टमाटर की खेती के लिए अभी जो समय आ रहा है मेन सीजन, तो अक्टूबर में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, रोपण लगाते हैं, उससे पहले एक बरसात वाली टमाटर लगाते हैं जो कि एक डेढ़ महीना पहले अधिक मुनाफा होने के लिए हम लगाते हैं। तो उसमें आप नर्सरी की तैयारी करते हैं, नर्सरी मतलब जो बीज को लगाते हैं उसके लिए मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरी बना करके उसमें आप जो गोबर की खाद हो, केचुए की खाद हो, FYM हो, उसमें बालू हो, मीन्स दोमट मिट्टी जिसको कहते हैं, उस तरह से मिट्टी को तैयार करके
0: जी।
1: आप अगर प्रति हेक्टेयर, हम चार बीघा हम लोग तरफ होता है, एक हेक्टेयर में चार बीघा उसके लिए लगाना चाहते हैं तो 150 से 200 मीटर स्क्वायर का एक नर्सरी आप तैयार करेंगे। नर्सरी थोड़ी ऊंची होनी चाहिए जो आपको पता है, जिसपे की पानी नहीं लगता है, तो उस तरह से आप नर्सरी 150 से 200 मीटर स्क्वायर बना करके आप अगर हाइब्रिड
0: 150 से 200 वर्ग मीटर
1: वर्ग मीटर एरिया का एक हेक्टेयर के लिए
0: अगर पौध तैयार की जाए तो एक हेक्टेयर के लिए हो जाए,
1: एक हेक्टेयर के लिए हो जाए, तो उसमें आप अगर संकर किस्म लेते हैं तो 150 ग्राम से 200 ग्राम संकर किस्म की बीज होगी। अगर आप ओपन पोलिनेटेड जो वेराइटी होती है अगर उसको लेते हैं तो 300 से 400 ग्राम, थोड़ी ज्यादा की मात्रा लेना पड़ता है। तो उसको ले करके आप बीज का शोधन करके, मतलब उसमें फंगीसाइड के साथ उसको ट्रीट करके तब आप उसका रोपण करें, उसकी एक क्यारी में बुआई करें ताकि वो बीज को आप अच्छे से उसका देखभाल कर सकें, उसमें फंगीसाइड से ट्रीट करके एक लाइन में कतार में बना करके क्यारी को आप उसका वो नर्सरी पे बीज को रोपित कर दें, फिर फुहारे से उसको पानी दे सकते हैं। उससे पहले आप उसमें नर्सरी में थोड़ा खाद वगैरह का, जैसा मैं बताया, गोबर की खाद हो, केचुए की खाद हो या DAP वगैरह, 1 किलो प्रति 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से DAP होता है, यूरिया होता है, आप म्यूरेट ऑफ पोटास होता है, तो DAP जरूर डालें, तो खाद की मात्रा भी जरूर होनी चाहिए।
0: खाद कितना डालें गोबर के?
1: गोबर के खाद तो अगर आप 100 मीटर से 150 से 200 मीटर स्क्वायर करते हैं तो कम से कम 2 क्विंटल गोबर की खाद हो, गोबर की खाद जरूर दें, या फिर DAP की मात्रा 1 किलो प्रति 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से, यानी 2 किलो आप DAP दें, उसको मिला करके, केचुए की खाद है तो केचुए की खाद भी 1 क्विंटल आप दे सकते हैं। तो इस तरह से मिला करके नर्सरी अच्छे से तैयार करके,
0: तो नर्सरी जुलाई में डालिए कि अगस्त?
1: नर्सरी आप अगस्त में डाल के सितंबर में आप लगा सकते हैं जो अगेती खेती करना चाहते हैं, अगेती खेती के लिए।
0: और बाकी लोग जो
1: बाकी लोग सितंबर में डाल के अक्टूबर में लगा सकते हैं, तो अगेती अच्छा। के लिए आप अगस्त में डाल के सितंबर में लगाइए, अब मेन सीजन जिसको करना है वो सितंबर में डाल के अक्टूबर में रोपण कर सकते हैं।
0: तो प्रजाति कोनो फर्क पड़े?
1: प्रजाति में फर्क पड़ी, अगर आप थोड़ी अच्छी किस्म है, हमारे यहाँ प्रजाति रिलीज हुई है तो उसमें काशी अमन और काशी चयन जो है वो किस्म है, उसको आप मेन सीजन में लगा सकते हैं।
0: अच्छा।
1: अगेती किस्म के लिए हमारे यहाँ 2 हाइब्रिड निकल रही है जो कि अगर काशी श्रेष्ठ के नाम से है और काशी श्रेष्ठ के नाम से और काशी दक्ष के नाम से है जो कि कम पानी में भी हो सकती है।
0: तो अच्छा, छिलका कड़ा हुए हुए खाए हुए में?
1: हाँ, तो काशी चयन जो है एक बहुत अच्छी किस्म है जो कि हम देसी टमाटर, कजला टाइप का टमाटर जो बोलते हैं,
0: अच्छा,
1: काशी चयन है। और काशी अमन है जो थोड़ा सख्त होता है।
0: अच्छा।
1: तो सख्त है वो, दूर के बाजार के लिए बहुत अच्छी है, तो उसको आप लगा सकते हैं। नई किस्म जो बताया मैंने, संकर किस्म काशी दक्ष जो कि कम पानी में भी होता है और काशी श्रेष्ठ, वो तीनों सीजन में होता है।
0: अच्छा।
1: बरसात में भी लगा सकते हैं, जाड़े में भी लगा सकते हैं और गर्मी में भी लगा सकते हैं। तो काशी दक्ष की सीड कम मिलेगी, वो अगर हम किसान भाई कोई इच्छुक हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे संस्थान में, उनको हम बीज प्रोवाइड करेंगे। अभी ये जो किस्म है, जो संकर किस्म है, अभी रिलीज नहीं हुई है, अभी राज्य सरकार के अंतर्गत में है, तो जब रिलीज हो जाएगी तब उसकी बीज की मात्रा ज्यादा उपलब्ध होगी। तो ये ध्यान रखना है कि उत्तम बीज का उपयोग जरूर करें, नर्सरी अच्छी से अच्छी आप लगाएं, उसका देखभाल करें। नर्सरी में आपको जो रोग होता है डैम्पिंग ऑफ, जो गलन होता है, वो गिरने लगता है, उसके लिए आपको, रोग के लिए आपको, अगर शुरू में आपने ट्राइकोडर्मा वगैरह से ट्रीट किया है मिट्टी को तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो फंगीसाइड वगैरह आते हैं, एलियट वगैरह के नाम से दवाएं चलती हैं बाजार में, तो आपको फंगीसाइड देना पड़ेगा।

0: ताकि बीज आपका मरे नहीं, आपका जो पौध तैयार हो वो अच्छे से तैयार हो, जिसको कि आप रोपण कर सकें। तो
1: जी।
0: उसमें गलन के रोग का रोकथाम करना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह देते रहना है ताकि उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट वगैरह बीमारी ना आए। तो इसी तरह बैक्टीरियल ब्लाइट है चाहे गलन की रोग है, इससे आपको देख रेख करना है नर्सरी के दिनों में।
1: जी, तो कीड़ा भी तो लगत हुई है नर्सरी
0: कीड़ा
1: में।
0: नर्सरी में ज्यादा कीड़ा का नहीं होता है, आप इंडोक्साकार वगैरह जो इंसेक्टिसाइड वगैरह होता है, कीटनाशक होता है, एक कीटनाशक वगैरह देते हैं। सबसे ज्यादा गलन की बीमारी होती है जो डैम्पिंग वॉर्म बोलते हैं, जो कि एक तरह से पौधे सूख जाते हैं उसमें गिर
1: जी।
0: जाते हैं, तो डैम्पिंग ऑफ का ज्यादा है, उसका रोकथाम करना है। जब आप
1: कितने दिन में पौध तैयार हो जाए?
0: पौध आपके 1 महीने के अंदर में तैयार हो जाए, शुरू में आप 1 सप्ताह उसको जाली से ढक के रखते हैं, 1 सप्ताह के बाद जब जर्मिनेशन हो जाता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं।
1: तो
0: और
1: एक
0: आप
1: महीना का पौधा लोग इस्तेमाल करें कि या 2 महीना 1.5 महीना हो गया जितना बड़ा
0: ना
1: हुआ?
0: ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर वो उसमें फायदा ना हो, उससे बढ़िया कि 25 से 30 दिन के अंदर में पौधा तैयार हो जाता है। उस पौधे को तैयार होके आप खेत में लगा सकते हैं। आप जो पद्धति डबल कतार वाली जो पद्धति होती है, मतलब 1 मीटर के बेड बना करके दोनों साइड में दोनों किनारे आप पौधे लगाते हैं
1: अच्छा।
0: और दोनों तरफ से पानी का उसमें फरो इरिगेशन जो होता है पानी आप देते हैं,
1: एक
0: और
1: मीटर चौड़ा बेड
0: हाँ
1: बना
0: एक
1: रखा है।
0: मीटर 1.25 मीटर का चौड़ा बेड होता है, बेड के दोनों तरफ पौधे आप किनारे किनारे लगाते हैं
1: जी।
0: और बीच में आप पोल गाड़ देते हैं। पोल गाड़ के आप तार के सहारे जिस तरह से आप लौकी वगैरह चढ़ाते हैं, करेला वगैरह चढ़ाते हैं, उसी तरह इसको भी सहारा दे करके, तो उसमें पैदावार बढ़ती है, उसको स्टेकिंग कहते
1: तो
0: हैं।
1: चढ़े वाला तो प्रजाति ना है ना ये?
0: ना वो चढ़े वाला प्रजाति है ये,
1: अच्छा।
0: इसको जितने जो कमर्शियल खेती करते हैं इसको वैसा ही करना चाहिए। आप
1: लगभग
0: स्टेकिंग
1: कितना लंबा हो जाए पौधा?
0: पौधा लंबा 1 मीटर से ज्यादा ना हो, 1 मीटर के अंदर ही रही, 1 मीटर 1.25 मीटर, अलग अलग प्रजाति है। जैसे हम काशी दक्ष बोले हैं तो काशी दक्ष आपको 1 मीटर के आसपास रहता है, काशी चयन है थोड़ा वो भी 1 मीटर के आसपास रहता है, जो
1: जी।
0: काशी श्रेष्ठ है वो 1 मीटर से कम ही रहता है। तो लेकिन उससे फायदा ये होता है कि पानी अब जब देते हैं तो जो फल है वो सड़ता नहीं है और फल की गुणवत्ता बनी रहती है। तो
1: अच्छा,
0: इस
1: तो एक पौधा है बढ़िया
0: हाँ
1: प्रजाति के, तो कितना पैदावार में मिले?
0: पैदावार अगर एक पौधा पे अच्छी किस्म है, जो हमारी जो संकर किस्म है जिसको हम बता रहे हैं, वो 2 से 3 किलो, 3-3 किलो तक प्रति पौधा पैदावार है। जो संकर किस्म नहीं है उसमें भी आपको 2-2 किलो तक प्रति पौधा टमाटर मिलता है।
1: जी, तो फल बड़े आकार होते हैं?
0: फल बड़े आकार के फल जो हमारी नॉर्मल किस्म जो है, चाहे अमन हो चाहे चयन हो, 70 से 80 ग्राम 90 ग्राम तक इनकी फल होते हैं। जो संकर किस्म है उसका 100 ग्राम से भी ऊपर हमारी होती है, 100 से 110 ग्राम तक
1: अच्छा।
0: प्रति फल का जो भार होता है।
1: अच्छा, मान ले पौध तैयार हो गया, रोपाई करे बाटे,
0: हाँ
1: तो रोपाई कौन तरह से करी है?
0: रोपाई के लिए जैसा हम अभी बताए कि आप 1 मीटर चौड़ा बेड आप बना लीजिए, 1 मीटर चौड़ा चौड़ा होना चाहिए, 5 मीटर का लंबा आप समझ लीजिए।
1: खाद
0: तो
1: वगैरह?
0: खाद वगैरह की जो मात्रा होती है, जो नाइट्रोजन फास्फोरस या पोटेशियम, आप उसमें 150 150 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बता रहे हैं, 150 किलो आप नाइट्रोजन हो गया, आप 60 से 80 किलो फास्फोरस हो गया और 50 से 60 किलो पोटेशियम हो गया, जिसको कि एनपीके हम बोलते हैं।
1: जी।
0: तो इस तरह से कैलकुलेट करके चाहे फर्टिलाइजर आप उस तरह दे सकते हैं। इससे पहले ध्यान रखना है कि 20 से 25 टन गोबर का खाद खेत में जरूर पड़ा हो शुरू में। आप गर्मी के दिन में जैसे अभी बरसात है तो उसमें ढैंचा जरूर लगाए हों, ढैंचा का पलेवा आप उसको ढैंचा लगा के 1 महीना उसका उसमें ग्रीन मैन्यूरिंग जिसको बोलते हैं वो सब भी हुआ हो, गोबर की खाद पड़ी हो, फिर फर्टिलाइजर आप जो खाद है उसको आप दे सकते हैं। तो 1 मीटर चौड़ा 1.25 मीटर चौड़ा बेड एक तरह से कह सकते हैं, 5 मीटर लंबा, इस तरह से बेड आप बना करके बेड के दोनों किनारे आप टमाटर का 60x45 स्पेसिंग हम बोलते हैं, मतलब पौधा से पौधा आप आधा मीटर एक तरह से मोटा मोटी रखिए, आधा मीटर दूरी होनी चाहिए पौधा से पौधा के बीच में। तो दोनों जो 1.25 मीटर का बेड है उस पर आप दोनों किनारे लगाइए, दोनों तरफ फिर पानी लगती है। तो इस तरह से लगा करके आप अपना नर्सरी से पौधे को लगा सकते हैं, बीच में पोल गाड़ सकते हैं, पोल के सहारे पौधे को चढ़ा सकते हैं।
1: जी।
0: तो
1: तो सिंचाई कितना करेक्ट पड़ेंगे?
0: सिंचाई देखिए, जैसे अगर जाड़े के दिनों में है तो कम से कम आपको 6 से 8 इरिगेशन पानी हो जाता है, हम जनरली फरो इरिगेशन की बात कर रहे हैं। अगर जिसके पास टपक

0: सिंचाई की सुविधा है, ड्रिप की सुविधा है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप मल्चिंग कर सकते हैं, मल्चिंग मतलब प्लास्टिक से आप उसको बेड को कवर कर सकते हैं, तो उसमें वीड का घास फूस का ग्रोथ नहीं होगा, तो उससे
1: जब मल्चिंग उनका रहते हैं
0: हाँ
1: तो उधर पहले बिछा देते हैं तब अगर बात
0: हाँ
1: लगा
0: मल्चिंग में आप पहले बिछा देते हैं, मल्चिंग में भी अलग अलग आजकल आ रहा है। अगर मल्चिंग मैट एक होता है मोटा सा होता है, उसको आप 2-3 साल तक लगा सकते हैं,
1: अच्छा
0: काला होता है, तो उससे वीड का ग्रोथ, पौधे वीड का ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता है, और उस
1: खरपतवार वगैरह
0: खरपतवार वगैरह सब बंद हो जाता है। तो उसमें आपका खर्चा, एक तरह से वीडिंग करने का जो खर्चा होता है वो बचता है। अगर आपके पास ड्रिप का है, टपक सिंचाई की सुविधा है, वो आप नीचे नीचे दे सकते हैं, नहीं है तो आप फरो इरीगेशन, पानी 6 से 8 इरीगेशन तक पड़ता है जाड़े के दिनों में, गर्मी के दिनों में लेकिन ज्यादा पड़ता है। अगर गर्मी का भी टमाटर आप लगाते हैं तो एक नया चीज मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ अलग किस्म है, काशी अद्भुत और काशी तपस, एक गर्मी की किस्म है जिसको कि हम नर्सरी जनवरी में डालते हैं और फरवरी में पौधे को खेत में लगाते हैं, तो वो गर्मी की है, अभी गर्मी का समय नहीं है।
1: जी
0: लेकिन मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि आप किसान भाई अगर आगे इच्छुक होंगे गर्मी के लिए, तो आप इसका बीज हमारे संस्थान से, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपको हम बीज देंगे काशी अद्भुत और काशी तपस का, गर्मी के टमाटर के लिए।
1: अच्छा,
0: बाकी
1: तो
0: सब
1: फल फल छोटा हुए थे कि बड़ा है
0: गर्मी में
1: फिर?
0: थोड़ा सा फल छोटा जरूर होता है, लेकिन गर्मी में आपका मुनाफा उसी हिसाब से अलग हो जाता है। जाड़े में आप देखते हैं कि टमाटर ज्यादा हो जाता है तो आपको दाम कम मिलता है,
1: जी
0: लेकिन उसके लिए अलग से उपाय है हमने जो काशी श्रेष्ठ बताया। काशी श्रेष्ठ हमारी प्रसंस्करण के लिए भी उपयुक्त है, ये ड्यूअल टाइप की किस्म है, इसमें आप प्रसंस्करण के लिए प्यूरी केचप के तरफ जा सकते हैं। जब दाम कम मिलता है टमाटर में, 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो हो जाता है, तो आप प्रसंस्करण के लिए अगर कुछ FPO के साथ किसान भाई अगर जुड़े हैं, वो टमाटर सारा खरीद करके अगर प्रसंस्करण के मशीन में ले जाकर के उसको प्यूरी या केचप बनवा सकते हैं, तो उसमें हमें मुनाफा हो सकता है। तो हमें हर तरह से कृषि को देखना होगा, मुनाफा हमें किधर से चाहिए। आप अगेती करके मुनाफा ले सकते हैं, प्रसंस्करण के तरफ जाके मुनाफा ले सकते हैं, और गर्मी की खेती करके आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो अलग अलग विधियों से खेती करके, अच्छे बीजों का चुनाव करके, ये सब एकत्रित खेती हमें करके हमें मुनाफा अर्जित करना
1: कितना
0: होगा।
1: पैदावार मिल जाए?
0: पैदावार अगर गर्मी के दिन में आप करते हैं तो 400 क्विंटल अच्छा पैदावार कहा जाएगा गर्मी के दिनों में। जाड़े के दिनों में अगर हाइब्रिड किस्म है, संकर है, तो आपको 1000 क्विंटल से भी मिलेगा। अगेती किस्म है तो आपको 700 से 800 क्विंटल अच्छी किस्म में मिलेगा।
1: अच्छा
0: तो अलग अलग किस्मों की अलग अलग पैदावार होगी, मोटा मोटी पैदावार 700 से 800 क्विंटल होनी चाहिए। अगर ओपी है, अगर संकर है, तो आपको 800 से 900 क्विंटल तक होनी चाहिए प्रति हेक्टेयर, मतलब 4 बीघा में पैदावार।
1: बीज बना सकते हैं अगर चाहे तो?
0: बीज ओपन पोलिनेटेड जो किस्म है उसका बीज आप रख सकते हैं, अगले साल लगा सकते हैं। संकर किस्म का बीज आप किसान भाई घर पर तैयार नहीं कर सकते हैं, उसको आपको खरीदना होगा, चाहे वो संस्थान से चाहे जो ऑर्गेनाइजेशन से है, वहां से नई बीज आपको लेना होगा।
1: अच्छा, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज दे हैं। टमाटर खेती किसान भाई कौन तरह से करें कि उनका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रविचर भैया।
3: हाँ मिर्ची बहन।
2: डॉक्टर जगेश कुमार तिवारी से बतिया उतना दिनेश कुमार सिंह। अब भैया बड़ी फरिया की जानकारी देना है कि अपने टमाटर की खेती से का का अपना करके कैसे कैसे बीज लगा के और अधिक से अधिक आय पार।
3: मिर्ची बहन आप जाना कि ये टमाटर का पैदावार अब ऐसा हो गल बा कि बरहो मास, चाहे तपन हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, आ गाहक भी एक नरम आ जौन कहला कि गरम दोनों दाम देवे बदे तैयार हों, चाहे पौआ में वह दाम हो, चाहे किलो में वह दाम हो, चटनी सबके चाहत बा, सब्जी में सबके टमाटर चाहत बा, बरहो मास।
2: ए भाई देखा कहें कि भाई खाइले पियले से सब कुछ हुआ है।
3: हाँ,
2: ठीक है। हाँ, तो मन ही खाए पिए चाहे तो भाई बाजारे में अगर माला कोनो चीज बहुत महंगा बात है का काम करे कि ओकर तेस कम मात्रा में ले।
3: हाँ,
2: लेकिन खाई तो जरूर
3: बिल्कुल है। ये बरसात के महीना में तो श्यामू भैया के रोज पकौड़ी चाहत बा, तो चटनी चाहबे करी, चाहे पौआ में 20 रुपया हो, चाहे किलो में 20 रुपया हो, तो समझ ला कि उनके घरे तो टमाटर इसमें रोज आवत बा।
2: तोहरे ना हो तो का हमरे के अंदर रोज
3: आवत। देखा जब पौआ वाला रेट हो जाला किलो में तब तो आवाला, लेकिन जब किलो वाला रेट पौआ में हो जाला भैया, तो इस समय महंगाई में तनी सा
2: हाथ दबाए के काम करे के होला। चला यही लगे जब तू बात करत हुआ तो हम कही कि अपने भैया लोग के जो उन्होंने एक बढ़िया सा लोकगीत सुनवा दी, पारसनाथ बागी और उनके साथी।
3: अब सुन लिया।

0: तो कहें कि भाई जरूरी बात कही हुआ काहे से भाई अभी सभी लोग जो कि
1: घर द्वार बनावे चाहत हो बिल्कुल बिल्कुल
0: का विशेष रूप से ध्यान देवल जाए पे बात पे चर्चा हुई
1: काल सुनल जाए
0: हाँ तो सुनल
1: लेकिन आज घड़ी का इशारा कर रहा था चला चले के तो पंचो राम राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

आपकी सेवा में है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आइए सुने फिल्म संगीत। यह कार्यक्रम की पहली पेशकश।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की रचना। यह आवाज थी कुमार सानू की और फिल्म थी चमत्कार। बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में ये सुने हिम्मतवर का गीत। गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। शाम के 7:06 और 24 सेकंड। आकाशवाणी वाराणसी आपके साथ और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में आप सुन रहे थे हिम्मत और फिल्म का ये गाना। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण। कार्यक्रम का आखिरी गाना, फिल्म का नाम रामगढ़ के शोले, मोहम्मद अजीज और कुमार सानू की आवाजें, गीतकार देव कोहली और संगीतकार अन्नू मलिक। ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र से प्राप्त सूचना अनुसार रवि सोनी पुत्र स्वर्गीय सियाराम सोनी निवासी वार्ड नंबर 3 अंबेडकर नगर थाना रावर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र कहीं खो गए हैं। रवि सोनी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 27 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट 6 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है। लापता के समय रवि सोनी ने नीले रंग की जींस पैंट और नीले रंग का शर्ट पहन रखा था। वो गोपाल चौरसिया पुत्र स्वर्गीय श्रीराम चौरसिया निवासी खाड़ पाथर थाना पिपरी जिला सोनभद्र कहीं गुम हो गए हैं। गोपाल चौरसिया के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 28 वर्ष, लंबाई 5 फीट 7 इंच, रंग सांवला और चेहरा लंबा है। वह बॉबी पत्नी इंद्रेश कुमार निवासनी पटना, पोस्ट सिलथम थाना कर्मा जिला सोनभद्र कहीं गुम हो गई हैं। बॉबी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 22 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। इन सभी खोए हुए व्यक्तियों के बारे में यदि कोई जानकारी हो तो इस पते पर दे। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र या अपने निकटतम थाने को भी सूचित कर सकते हैं। पता एक बार पुनः सुन लें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सोनभद्र या अपने निकटतम थाने को भी आप सूचित कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:18 हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे ये देव कोहली की रचना। मोहम्मद अजीज और कुमार सानू की आवाजें थी, फिल्म थी रामगढ़ के शोले। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत हम फिर लेकर आएंगे शाम 7:50 पर कार्यक्रम रसरंग में और रात 8:15 पर कार्यक्रम रसमाधुरी में।

0: हाँ सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
4: चाहिए
5: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
6: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
4: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
6: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी।

0: या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
0: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा, निर्यात और राजनीतिक सहयोग में नई ऊंचाइयां छू रहा है देश। आकाशवाणी पर मन की बात में कारगिल शहीदों को भी किया याद। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने को बताया अद्भुत जनशक्ति। बिजनौर की महिलाओं द्वारा तैयार की गई विदुर चाय का भी किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। इटावा और मैनपुरी में विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और पीलीभीत में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कासगंज से लखनऊ के ऐशबाग तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
3: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
2: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
3: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जनशक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है।
3: एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जनशक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहाँ एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है।
2: प्रधानमंत्री ने बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के द्वारा तैयार चाय का जिक्र करते हुए कहा कि इस चाय ने सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है।
3: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई।
2: प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी आज बात की।
3: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों,

0: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: प्रदेश में पिछले दिनों चलाए गए माँ के नाम एक पेड़ अभियान की प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में सराहना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके प्रति आभार जताया है। श्री योगी ने कहा कि इस अभियान में एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने का जिक्र पर्यावरण संरक्षण, सामूहिक चेतना और जन भागीदारी की बड़ी सफलता का सम्मान है। वहीं बिजनौर जिले की महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा हर्बल टी तैयार किए जाने की तारीफ किए जाने पर समूह की महिला सदस्य ने प्रसन्नता व्यक्त की है।
2: बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं। जैसे कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने हमारी विदुर हर्बल टी के बारे में बात की है, इससे लग रहा है कि जैसे जितनी भी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं उन सब के मन की बात कर दी है। जो प्रोडक्ट्स हैं विदुर हर्बल टी और या विदुर से जुड़े हुए और जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनको एक नेशनल मार्केटिंग मिलेगा और उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो हम लोग सभी दीदियां बहुत खुश हैं कि अब हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग और बढ़ जाएगी, हमारी आजीविका में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1.5 से 3 करोड़ रुपए तक की एक्सीडेंटल बीमा कवर योजना का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से विश्वविद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों के 1,28,000 शिक्षकों और उनके परिवारजनों को लाभ मिलेगा। कैशलेस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार उनकी क्षमताओं को निखारने में सक्रिय भूमिका निभाएं। श्री योगी ने कहा कि बदलते दौर में सोशल और डिजिटल मीडिया के सही उपयोग की जरूरत है।
3: राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 12 डिग्री को आप लेने की सामर्थ्य रख सकते हैं और देने की सामर्थ्य रखते हैं। हर शिक्षक के लिए, हर छात्र के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसको पारंगत करेंगे, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कैसे हम उस फील्ड में अपनी धमाकेदार उपस्थिति के माध्यम से उसको अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप, समाज के अनुरूप और देश के अनुरूप बना सकते हैं।
1: मुख्यमंत्री ने आज मैनपुरी में 682 करोड़ रुपए की 111 विकास परियोजनाओं और इटावा में 604 करोड़ रुपए की 128 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि भाजपा सरकार में पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए युवाओं को बिना किसी सिफारिश और रिश्वत के नौकरी मिल रही है। बदायूं जिले के उजानी रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा ने कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले रेलवे परिसर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं पीलीभीत के पूरनपुर रेलवे स्टेशन से केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें प्रदेश सरकार जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। इससे पहले सरकार ने नई विशेष जांच टीम SIT का गठन कर दिया है। इसमें 3 सदस्य हैं। इसकी कमान IG लखनऊ रेंज किरण एस को सौंपी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने साल 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को अपना आवेदन संबंधित अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य को 5 अगस्त तक देना होगा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी भाग में कई स्थानों पर मेघ गर्जन और बिजली के साथ कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वांचल में कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का ये क्रम 31 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा, निर्यात और राजनीतिक सहयोग में नई ऊंचाइयां छू रहा है देश। आकाशवाणी पर मन की बात में कारगिल शहीदों को भी किया याद। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने को बताया अद्भुत जनशक्ति। बिजनौर की महिलाओं द्वारा तैयार की गई विदुर चाय का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। इटावा और मैनपुरी में विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा और पीलीभीत में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कासगंज से लखनऊ के ऐशबाग तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है पत्र के लिए धन्यवाद। आज आपके ईमेल पत्रों के साथ हैं अरुण पांडे और सना सलीम।

0: पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, आपके बहुत सारे मेल हैं हमारे पास, नए पुराने, जिस तरह गाने होते हैं उसी तरह से मेल हैं। और उन ईमेल के साथ हैं सना सलीम जी, और उनकी मुस्कान ने बता दिया होगा कि वो हाजिर भी हैं, मौजूद भी। सना जी नमस्कार, स्वागत
1: जी,
0: है आपका।
1: आपको भी नमस्कार अरुण जी, और प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार।
0: तो नान खटाई वाला किस्सा तो अब पुराना हो गया, मुख्तसर हो गया, लेकिन अब हरियाली है तो अब सना जी हरी भरी नजर आ रही हैं।
1: हरी भरे आप भी नजर आ रहे हैं, और ये कंप्यूटर स्क्रीन भी बड़ी हरी भरी नजर आ रही है।
0: तो सावन का महीना आने वाला है और उसका इंतजार हम सबको रहता है। खासतौर से बनारस में तो श्रावण मास का बड़ा महात्म्य है, दूर दराज से तीर्थयात्री पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं। तो ये पावन महीना शुरू होने वाला है, और अब शुरू होने वाला है ये कार्यक्रम आपके ईमेल के साथ सना सलीम की मधुर आवाज में।
1: ये पहला मेल आज का हम शामिल कर रहे हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से। मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और निलोफर फातिमा का।
0: सावन में ना जो श्रृंगार की सामग्री होती है, चूड़ी वगैरह, हाँ। उसमें थोड़ा सा यहाँ पर रिवाज है, लेकिन हमें लग रहा है कि इसहाक जी ने आज तक नहीं बताया कि चूड़ियाँ अब फिरोजाबाद के अलावा कभी मुंगेली में बनती थी क्या, तो उनकी क्या डिजाइन होती थी। ये छत्तीसगढ़ में है
1: जी। कार्यक्रमों के बारे में लिखते हैं कि पत्र के लिए धन्यवाद, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता को हमारा नमस्कार। आकाशवाणी वाराणसी से फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम दिनांक 29 मई को किरण सिंह ने प्रस्तुत किया था, और 6 जून को श्री अरुण पांडे जी ने अपनी प्रस्तुति दी। दोनों ही कार्यक्रम में हमने पहले ही गीत के लिए व्हाट्सएप फरमाइश भेजा, लेकिन हमारा फरमाइशी नाम वाला संदेश 5वें गीत में शामिल हुआ।
0: हाँ, शामिल हुआ ना। अब आपको मैं बता दूं, हमेशा मतलब हम ये बता दें आपको कि जैसे ही हम लोग 11 बजे फिल्मों के नाम बताते हैं तो 100-200 इस तरह से संदेश आ जाते हैं। तो आप अगर इधर बैठेंगे कभी तो आपको वो 200 संदेश, अगर मान लीजिए एक ही फिल्म के लिए आ भी गए और आपको पढ़ने लगेंगे तो उस दिन सिर्फ 2 ही गाने बच पाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैनेज करना होता है। और दूसरी एक बात, और जैसा हमने एक बार और प्रोग्राम में कहा था कि कई बार जैसे आपने शुरुआत में भेज भले ही दिया हो, लेकिन इंटरनेट और व्हाट्सएप के भी सर्वर के कारण कई बार मैसेजेस देर से डिलीवर होते हैं, क्योंकि एक साथ उस नंबर पर संदेश आते हैं, तो जहां नेटवर्क तेज होता है जैसे वैसा संपर्क होता है तो वो संदेश आ जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपका नाम जरूर शामिल हो जाए, भले थोड़ा आगे पीछे हो।
1: हमें

0: खुशी तो हुई और गुस्सा भी आया
1: जी। अच्छा, गुस्सा इस चीज के लिए कि उस फिल्म में नहीं,
0: पांचवें नंबर पे
1: जी
0: इनका
1: जी
0: नाम
1: जी। तो वो पांचवें पे क्या होता, हम लोग तो स्क्रीन रोज देखते हैं, 11:03-4 तक के भी भेजे हुए मैसेज कई बार हम लोगों को 11:30-11:40 तक पढ़ना होता है। उसका रीजन यही है कि 200-300-400 मैसेज, और पूरे अगर आप जानिए तो कई बार 700-800 तक मैसेज उस एक घंटे में आते हैं
0: जी। आगे लिखते हैं कि साथ ही हमने संदेश में जितने नाम भेजे पूरा नहीं पढ़ा गया।
1: हाँ, ये तो होता है, उस प्रोग्राम में इतने आते हैं ना कि हम हमेशा श्रोताओं से हम लोग ये कहते हैं कि नाम सिर्फ 3-4 ही लिखें। कई लोग 15-20 नाम भेजते हैं, तो अगर एक व्यक्ति के ही नाम 15-20 हम लोग पढ़ें तो 3-4 लोगों में ही 3-4 हो जाएगा। इस वजह से सभी को समान हक मिले, इसलिए हम लोग बता भी देते हैं कि आप एक ही स्थान के संदेश भेजें और 3-4 ही नाम भेजें, खासतौर से फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में, जहां की देश दुनिया से बहुत सारे श्रोता एक साथ नाम भेजते हैं।
0: और इन्होंने ये भी लिखा है कि एक श्रोता का लंबा चौड़ा संदेश के नामों को पूरा शामिल किया गया।
1: नहीं, उनका भी हम लोग जो जिनका आपने कहा वो श्रोता भी समझ रहे हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, और हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन जब ये चीज होती है और खासतौर से हम रहते हैं तो उनके भी एक ही स्थान के नाम पढ़े जाते हैं, और उन्हें भी हम लोग कहते हैं हमेशा, ऐसे 2-3 श्रोता है, सिर्फ एक ही नहीं है, जो कि एक साथ कई नाम भेजते हैं और उनके नाम एक ही स्थान के पढ़े जाते हैं, तो सबके साथ बराबर होता है, इसका तो यकीन रखिए
0: जी। इस मेल के लिए आपका शुक्रिया, और हम आशा करेंगे कि आप और भी प्रोग्राम सुनेंगे और उसके बारे भी अपनी प्रतिक्रिया,
1: और थोड़ा संयत में, और हम लोग आपकी हर शिकायत और सलाह को बहुत ध्यान से सुनते हैं। आकाशवाणी जो है वो मनोरंजन आपका हो और आपको संतोषप्रद प्रसारण मिले, हम सबकी कोशिश तो होती है
0: जी। इस मेल के लिए आपका शुक्रिया। अगला ये मेल है सोन वर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से, अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर का
1: जी।
0: ये वाइब्स और बीट्स वाले हैं।
1: हाँ,
0: दिनांक 21 जून 2026, अरुण पांडे सर द्वारा हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब था। उसी दिन अरुण सर द्वारा लोकरंग कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था। 22 जून को अंजना झा द्वारा भोजपुरी कार्यक्रम बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। दिनांक 23 जून को अरुण पांडे सर द्वारा व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम पसंद आया।
1: तो यानी आप वो जो फरमाइशी प्रोग्राम है वो ज्यादा सुनते हैं, तो बाकी कार्यक्रम का भी जिक्र करेंगे अच्छा लगेगा, और बाकी जो हमारे प्रेजेंटर हैं आरजे हैं उनका भी प्रोग्राम सुनिए और जरूर भेजिए। इन तमाम प्रोग्राम को आपने
0: सुना, इनका नाम सुबह बनारस बीट्स और वाराणसी वाइब्स में ज्यादा पाया।
1: हाँ, तो उसके बारे में भी जरूर हमें आप लिख कर भेजिए कि वो प्रोग्राम कैसे लगते हैं आपको
0: जी। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। लेवाई छत्तीसगढ़ से हमें मेल किया है गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी रानी और उज्जवल दास मानिकपुरी ने। 3 जुलाई को प्रसारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, जिसे आदरणीय अरुण पांडे जी ने पेश किया, सुनकर मन बाग बाग हो गया। मजे की बात यह रही कि मॉनसून के रिमझिम फुहार के बीच रिमझिम गीतों का साथ रहा। इसी कड़ी में अरुण जी ने सभी संदेश को शामिल किया, कार्यक्रम सुनकर मजा आ गया।
1: बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आया, और ये बात है कि हम सभी प्रयास करते हैं कि मौसम त्योहार और समय के अनुकूल आपसे बातें की जाएं और गीत भी उसी के मूड के हिसाब से हो, तो आपके इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं।
0: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे ने हमें मेल किया है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। लिखते हैं, हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हम आपका कार्यक्रम डीटीएच पर सुनते हैं। 28 जून 2026 का कार्यक्रम लोकरंग बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में श्रोताओं की फरमाइश पर जो लोकगीत सुनाए गए वो हमें बहुत ही कर्णप्रिय लगे। प्रेजेंटर नीलू तिवारी जी को हार्दिक बधाई।
1: तो बहुत शुक्रिया कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, खासतौर से नीलू तिवारी जी को अच्छा लगेगा कि आप उनके भी कार्यक्रम सुनते हैं और वो कार्यक्रम आपको कर्णप्रिय लगते हैं।
0: और आखिर में लिखते हैं कि दिनांक 27 जून 2026 का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए अरुण पांडे जी को हार्दिक बधाई।
1: जी जी बिल्कुल, चूंकि आप नागनपुरे से लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा, कभी हमने पूछा भी था आपसे कि ये जो जगह का नाम है इसके बारे में कोई किंवदंती, कोई ऐतिहासिक तथ्य हो तो जरूर हमें बताइएगा। मेल के लिए शुक्रिया फिर से आपको।
0: ये एक नए श्रोता दिख रहे हैं, अर्जुन शुक्ल,
1: और ये निरंतर
0: श्रोता। वाराणसी वाइब्स की टीम को मेरा सादर प्रणाम।
1: अब श्रोताओं में निरंतर श्रोता बनने की भी होड़ लग जाएगी। पहले नियमित श्रोता बनने के लिए लोग लिखते थे कि हम भी नियमित श्रोता हैं।
0: कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग सकुशल होंगे। निजी कार्यों की व्यस्तता के कारण काफी दिनों बाद कल आपका कार्यक्रम सुना। निराली निवेदिता जी की कल कार्यक्रम में प्रस्तुति काफी सराहनीय थी।
1: कल जो है थोड़ा सा तिथि लिख दिया करें, क्योंकि कई बार मेल एक दो हफ्ते बाद शामिल होते हैं तो तिथि रहती है, तो थोड़ा सा सहूलियत होती है। वैसे आपकी बधाई निवेदिता जी तक पहुंच रही है
0: जी। समय प्रबंधन के बारे

0: में काफी कुछ सीखने को मिला। मेरे हिसाब से ऐसे सकारात्मक विषयों पर चर्चा होनी चाहिए।
1: नहीं तो हम लोग तो कभी नकारात्मक विषयों पर चर्चा करते ही नहीं है, सकारात्मक ही विषय इतने हैं और हमारे श्रोता इतने सकारात्मक हैं और उससे ज्यादा तो हमारे आरजे ज्यादा ही सकारात्मक हैं। तो सकारात्मक बातें हम लोग
0: मोटिवेशन सुबह शाम सुनने मिल रहा है। कार्यक्रम सुनकर मुझे हर्ष की अनुभूति हुई, किंतु मन में कहीं ना कहीं दुख भी है कि आप मेरे पत्र को अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं करते हैं।
1: लेकिन हमारे यहाँ तो जो भी अगर पत्र आते हैं आपके यानी मेल, तो वो शामिल होते हैं। हम लोग कोई भी मेल को जानबूझ करके ऐसा कभी नहीं होता। ये बिल्कुल हमारे इस नए दौर में तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, कुछ भी लिखा हो और अगर वो थोड़ा सा सीमित लहजे में आपने अपनी बात हमें भेजी है तो हर ये जरूर आप चेक कर लीजिएगा कि आपने सही मेल आईडी लिखी है और भेजा है और कार्यक्रमों का जिक्र किया है। तो जरूर से मेल किसी भी श्रोता का हो, नए पुराने सभी का हम लोग शामिल करते हैं।
0: जी, इस मेल के लिए आपका शुक्रिया। ये अगला मेल है श्याम यादव का।
1: तो जब भी श्रोता लिखें तो पूरा थोड़ा सा नाम पता लिखें, कौन सी जगह से आप लिख रहे हैं, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे प्रोग्राम कौन कौन कहाँ कहाँ सुन रहे हैं।
0: जी, लिखते हैं कि हम लोकगीत, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, कृषि जगत प्रोग्राम के नियमित रूप से सुनते हैं। हमारे पत्र में शिकायत के सिवाय कुछ होता ही नहीं है। रविवार को लोक रंग दोपहर 1:30 बजे पूरे लोकगीत नहीं बजाए जाते हैं, बीच बीच में कट कर दिया जाता है। लोक रंग टाइम बढ़ाया जाए, 6:10 पर भक्ति संध्या या भोजपुरी फिल्मी सॉन्ग या भोजपुरी गीत चलाए जाएं। ये एक बार और
1: श्याम
0: उन्होंने लिखा था।
1: हम ये कहें कि हमें भी वही बात हम कहने जा रहे थे कि कई बार ये भी होता है कि श्रोता अगर एक दो हफ्ते मेल शामिल न हो या रह जाए कई कुछ कारण से तो दोबारा भेज देते हैं। तो ये बिल्कुल न करें, हर मेल हम लोग रखते हैं और आपका कॉन्टेंट रिपीट न हो इसका ख्याल आपको रखना है। ऐसी सलाह एक दो हफ्ते पहले भी आई थी, वो आपने भेजा या किसी अन्य श्रोता ने, लेकिन आपकी बातों पर हम लोग गौर कर रहे हैं। रही बात लोकरंग में लोकगीतों को कम करने काटने की, तो कई बार जब मैच वगैरह होते हैं या विज्ञापन ज्यादा होते हैं तभी ऐसी स्थिति आती है, वरना लोकगीत के कार्यक्रमों में चूंकि मेल व्हाट्सएप संदेश कम आते हैं तो वहां तो पूरे के पूरे लोकगीत आप सुन पाते होंगे और नाम भी शामिल होते हैं। आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा हमें।
0: जी, पाकुड़ झारखंड से हमें मेल किया है उत्तम कुमार भगत ने। 7 जुलाई का फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम शिद्दत से सुना। हमेशा की तरह आदरणीय अरुण पांडे जी ने अपनी लाजवाब प्रस्तुति से हम श्रोताओं का दिल जीत लिया। खूबसूरत आवाज, खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत गीत से आगाज किया। बेशुमार श्रोताओं को भागीदार बनाया, जो आपकी मोहब्बत को दर्शाता है। इस दिलकश प्रस्तुति के लिए अरुण सर जी, आपका दिल से शुक्रिया।
1: तो हम आपको दिल से शुक्रिया।
0: आपकी तारीफ के लिए कोई शब्द नहीं है।
1: अच्छा, नहीं, शब्द तो आपने बड़े अच्छे उपयोग किए हैं और बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ये जरूर कीजिए कि और भी प्रोग्राम सुनिए और उसके बारे में भी लिखिए। इस मेल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
0: जी, अब ये मेल हम शामिल कर रहे हैं शिवपुर से असगर अली जी का। लिखते हैं, पूरा पत्र शामिल करेंगे तो अच्छा लगेगा,
1: नहीं तो ओवर एंड आउट हो जाएंगे।
0: जी, सम्मानित प्रस्तुता व प्रस्तुति की अटूट जोड़ी को सादर और सप्रेम प्रणाम स्वीकार।
1: अच्छा,
0: करने
1: प्रस्तोता
0: की
1: का इन्होंने फीमेल भी बनाया है शब्द क्या। अच्छा,
0: स्वीकार करने की कृपा करें। ओके नाउ।
1: अच्छा अच्छा, वो अभी ओवर आउट नहीं हुआ है।
0: वो आखिर में होगा। सबसे पहले उनको याद कर लें जिन्होंने आकाशवाणी के 90 वर्ष एनिवर्सरी पर चौचकपुर के एक विशेष श्रोता ने 2-3-4-5 रेडियो बांटा और पूरे गांव का मुंह मीठा कराया। बहुत खुशी हुई। ये समझ नहीं आया कि इतना रेडियो चौचकपुर के कहां से खरीदा।
1: आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन है, वहां भी मिल जाता है और लोकल मार्केट है गांव-गांव में, चूंकि रेडियो सुना जाता है असगर जी, तो बहुत सारी जगहों पर रेडियो मिलते भी है आज भी।
0: जी, बता दें तो हम भी जाकर खरीदें। और आदरणीय सीनियर उद्घोषक जी ने उनसे घड़ी देखकर
1: 16 मिनट 35 सेकंड
0: तक गॉसिपिंग किया।
1: उसके बाद जैसे जिन्होंने रेडियो बांटा उनसे।
0: हाँ,
1: अच्छा,
0: उसके बाद एक
1: तो 5 रेडियो बांटे होंगे, हालांकि 16 मिनट तो किसी से बात होती नहीं है। लगता है हिंदी में थोड़ा सा जो माहिर नूर है उन्होंने टाइप इधर उधर कर दिया है। कुछ मिनट बात हुई होगी, लेकिन इतना लंबी बात तो हम लोग नहीं कर पाते हैं किसी एक व्यक्ति से।
0: जी, उसके बाद एक श्रोता का कॉल, नाम पता और गाने की फरमाइश सुनकर ओवर एंड आउट कर दिया।
1: हाँ, ये जैसे हर बार स्पष्ट आपको कर दें कि श्रोता बात कर पाते हैं कि नहीं, ये इस पर वो उसकी लंबाई जो अवधि है बात करने की वो डिपेंड करती है। जैसे हम और सना जी जिस तरह इस प्रोग्राम में बात करते हैं, हर बार बार वो होता भी नहीं है। राग पाग रस पागड़ी जो कहा गया कि कभी कभी ये चीजें बन जाती हैं, तो हर बार हर प्रेजेंटेशन हर प्रस्तुति अच्छी हो जरूरी नहीं है, लेकिन ये होता है कि कई श्रोता बात ही नहीं कर पा

0: आते 2-3 मिनट तक, वो स्वयं आपको चाहते हैं कि जल्दी से उनका नाम पता बता दिया जाए। इस वजह से कुछ श्रोताओं से बड़ी मुख्तसर एक आध मिनट ही या 50 सेकंड भी बात हो पाती है, ये भी हम लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। और कुछ श्रोता लंबी भी बातें करें तो वो बातें सुनने में श्रोताओं को पसंद आती है, अच्छी लगती है, उन्हीं से बात हो पाती है।
1: और हम सभी प्रेजेंटर्स के लिए हर श्रोता जो है वो बराबर ही
0: बिल्कुल
1: है। और आगे इन्होंने लिखा है कि स से सना, स से सलीम।
0: अच्छा, ये ककहरा जैसा ससहरा हो गया है।
1: स से सूरज, त्रिवेणी सलामत रहे।
0: भला हो स से निजात मिली, त्रिवेणी आ गई।
1: नातिन सना जी, नातिन इसलिए कि आप मेरी बड़ी नातिन से छोटी हैं, अगर बुरा लगा तो गलती माफ।
0: अभी तो जब लगेगा तो अगले प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा।
1: नाउ ऑन द पॉइंट ऑफ रेडियो प्रोग्राम, रिस्पेक्टेड अनाउंसर अरुण पांडे जी के डेलीगेंट हार्ड वर्क और सना जी के सहयोग से बहुत ही अच्छा चल रहा है।
0: इनायत तो सना जी की है, इस प्रोग्राम के बारे में आप अगर कह रहे हैं तो,
1: जिसकी तारीफ करना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है।
0: अच्छा, दिया दिखाते हैं लोग सूरज को, इन्होंने चिराग दिखा दिया।
1: ओवर एंड आउट, अल्लाह हाफिज।
0: जी बिल्कुल, आपके इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं, और आप यूं ही प्रोग्राम सुनते रहें और आपका हमारा साथ यूं ही बना रहे, आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे।
1: जगदीश चंद्र पांडे का ये मेल हमें मिला है खटीमा उत्तराखंड से।
0: जी, इन्होंने बहुत दिनों बाद लिखा है, उधर लिखते थे और बड़ा काव्यमय लिखते थे शुरुआत में,
1: इस बार भी वैसे ही लिखा है इन्होंने। रिमझिम बरसे मेघ, धरा हरित चुनर मुस्काए।
0: वो जो शुरुआत में हम लोगों ने कहा ना कि सावन में हरी भरी वसुंधरा जो बात कही गई है, तो वो हरियाली आ गई इस प्रोग्राम में।
1: जी, सावन का मधुर स्पर्श, वन उपवन में नवजीवन गाए, हर बूंद यही संदेश सुनाए, वृक्षों से जीवन महकाएं, प्रकृति का आंचल सहेजें, मिलकर हरियाली बढ़ाएं, वर्षा ऋतु में स्वच्छता, संयम और सावधानी अपनाएं, रोग रहें हमसे कोसों दूर, स्वस्थ रहें सुख गीत सुनाएं।
0: कविता आपने अच्छी लिखी और हर बात का इसमें समावेश हो गया, जैसे प्रकृति वर्णन और सेहत सावधानी हर बात आ गई। बाकी प्रोग्राम के बारे में क्या लिख रहे हैं?
1: लिखते हैं कि सर्वप्रथम आकाशवाणी की गौरवशाली 90वीं वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। 9 दशकों से ज्ञान, संस्कृति, साहित्य, संगीत और जन जागरण का जो अविरल दीप आपने प्रज्वलित रखा है, वो सचमुच राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। सना सलीम जी
0: नहीं, लिखा है आदरणीय उद्घोषिका सुश्री सना सलीम।
1: एवं आदरणीय अरुण जी से विनम्र क्षमा याचना करना चाहता हूँ। पूर्व में मैं नियमित रूप से अपने पत्र भेजता था, किंतु शैक्षिक और शोध कार्य में व्यस्त रहने के कारण कुछ समय से पत्र नहीं भेज सका।
0: बिल्कुल, हम लोग भी ये नहीं कहते कि अगर आप इस तरह पढ़ाई लिखाई या व्यस्तता के समय से गुजर रहे हैं, तो यही बड़ी बात है कि आप महसूस करते हैं कि आप आकाशवाणी के प्रोग्राम को समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे इस चीज के लिए हम आपको खासतौर से शुक्रिया कह रहे हैं, और जब भी मौका मिले, पूरी उम्र है, पहले रोजी रोजगार की व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए, हम लोग भी यही चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं।
1: जी, लिखते हैं कि हाल के प्रसारित कार्यक्रमों ने पुनः पत्र लिखने की प्रेरणा दी। 4 जुलाई को प्रसारित कहकशां कार्यक्रम में साबरी ब्रदर्स की प्रस्तुत कव्वालियां मन को गहराई तक स्पर्श कर गईं। उनकी सूफियाना गायकी ने वातावरण को आध्यात्मिक रस से भर दिया।
0: बिल्कुल, वो जो शनिवार को कहकशां प्रोग्राम है, उसमें हम लोग की कोशिश होती है कि आपको ऐसे कलाकारों की पेशकश से रूबरू कराया जाए।
1: और कहकशां गुरुवार को भी प्रसारित होता है, दिन में 2:30 बजे।
0: हाँ, लेकिन ये जो साबरी वाला मैटर है ना, ये शनिवार को दिन का है।
1: अच्छा, शनिवार को प्रसारित हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम भी अत्यंत मनोरम लगा। श्रोताओं की पसंद के मधुर गीतों ने कार्यक्रम को आत्मीयता और अपनत्व से भर दिया। लोक रंग कार्यक्रम के अंतर्गत लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के मधुर लोक गीत सुनकर भारतीय लोक संस्कृति की सुगंध मन में देर तक महकती रही।
0: बिल्कुल, आज हम भले ही बहुत शहरीकरण के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी जो लोक परंपरा है, लोक संगीत की, लोक भाषा की, वो समृद्ध ऐसे ही कलाकारों से हुई, और उनकी प्रस्तुतियां हमारे बीच हैं श्रोताओं के लिए, वो सौभाग्य की बात है। और वक्त वक्त पर हम ऐसे जो सुप्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, उनकी गायकी से आपको प्रोग्राम अवगत कराते रहते हैं, ये हमारी भी खुशनसीबी है और आप उसका उल्लेख करते हैं, इसके लिए शुक्रिया आपका
1: जी। अंत में समस्त आकाशवाणी वाराणसी परिवार के उत्तम स्वास्थ्य, निरंतर प्रगति और उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामनाएं। आप इसी प्रकार ज्ञान, संस्कृति और संगीत का ये अमृत प्रवाह जन जन तक पहुंचा।
0: बिल्कुल, आपकी बातों में हमारा भी स्वर शामिल है और यही शुभकामनाएं तमाम श्रोताओं के लिए और आपके लिए भी हैं। और इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया करें। जब भी मौका मिले पढ़ाई लिखाई से आप हमें

0: भेजते रहेंगे मेल, ऐसी हम उम्मीद करते हैं
1: जी। और अब आज का ये कार्यक्रम यही मुकम्मल होता है,
0: इख्तिताम पजीर होता है। नहीं, हमें लगा आप यही बोलने जा रही हैं
1: जी। तो अपने मेल जो है ऐसे ही करते रहिए, सावन का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन आप अपने मेल की जो
0: रिमझिम फुहार
1: है वो ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारी ईमेल आईडी पर pkldaiarvaranasi@gmail.com पर आपकी ढेर सारी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा।
0: अगले हफ्ते आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए अरुण पांडेय
1: और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: पत्र के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम। आपके ईमेल पत्रों के साथ थे अरुण पांडे और सना सलीम। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। आपकी सेवा में है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। सबसे पहले सुनते हैं शारदा फिल्म का ये गाना।

लता मंगेशकर की आवाज़ में शारदा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। एक बार फिर यही आवाज़ आपके रेडियो सेट पर। बहुत प्यारा सा गीत है, फिल्म का नाम पलकों की छांव में। आवाज़ लता मंगेशकर की, गीतकार गुलशन बावरा और संगीतकार एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

की छांव में इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। फिल्म संगीत हम फिर लेकर आएंगे रात 8:15 पर कार्यक्रम रस माधुरी में। तो सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को रात 11:10 तक। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने दाग की ये गजल, आवाज आबिदा परवीन की।

आपकी सेवा में है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आइए आप सुने फैज़ अहमद फैज़ का कलाम, आवाज़ आबिदा परवीन की।

0: संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी।
1: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

आबिदा परवीन की आवाज़ में आप सुन रहे थे शायर फैज़ अहमद फैज़ का ये कलाम। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में खट्टा मीठा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे राजेश रोशन। नाखुदा फिल्म का गाना आपके रेडियो सेट पर, आवाजें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की। गीत के बोल लिखे हैं निदा फाजली ने और संगीत दिया है खयाम ने। आइए सुनिए ये एक और प्यारा सा गीत।

नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ना खुदा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीत करते निदा फाजली और संगीत करते खयाम। बुढ़ा मिल गया यह फिल्म का नाम। ये आवाज़ किशोर कुमार की, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

ढलती रात के साए में आप हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के संग रात्र के 8:27 और 22 सेकेंड्स। आइए अब सुने स्वीकार किया मैंने फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार निदा फाजली और संगीतकार उषा खन्ना।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे निदा फाजली की ये रचना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें थी। स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गाना था। एक बार फिर लता मंगेशकर की आवाज़, साथ में मोहम्मद रफ़ी। गुलजार के बोल राजेश रोशन की तर्ज। स्वयंवर फिल्म का ये बहुत प्यारा संगीत, आइए सुनिए।

रसमाधुरी कार्यक्रम का ये आखिरी गाना यशुदास की आवाज़।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में रविंद्र जैन की रचना आप सुन रहे थे। यशदास की आवाज, दादा फिल्म का ये गाना। आज रसमाधुरी का सफर बस यहीं तक। इस कार्यक्रम को हमने सजाया इन फिल्मों के गीतों से। खट्टा मीठा ना खुदा बुढ़ा मिल गया, स्वीकार किया मैंने, स्वयंवर आप तो ऐसे ना थे, और दादा

0: तो सुनते रहिए रसमाधुरी हर रोज रात 8:15 पर आकाशवाणी वाराणसी से, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक गीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्र के 8:45 होने वाले हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र और सुनते हैं समाचार संध्या।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए 30वें T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्य अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
3: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल

0: पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार्ज दिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम

0: तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री यमुनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंजीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
3: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया

0: पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से उड़ीसा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगत सिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Diwas. Prime Minister Modi urges citizens to honour Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event and Rishikant Singh Chanambang bagged silver in the men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somanath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities. Mr. Modi reaffirmed the government's commitment to protecting the integrity of competitive examinations and safeguarding the future of millions of students.
3: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान

0: मान रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा.
1: यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी टुडे अज्यूम चार्ज एट द एजुकेशन मिनिस्टर. मिस्टर जोशी वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट यस्टरडे फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान. मिस्टर जोशी ऑल्सो कंटिन्यूज टू होल्ड द पोर्टफोलियोज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, food and public distribution, and new and renewable energy. Later, speaking to media, Union Minister Prahlad Joshi expressed gratitude to Prime Minister Modi for entrusting him with this responsibility.
2: पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है.
3: आई एम रिव्यूइंग ऑल द डिटेल्स एंड द डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन. आई हैव बीन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर मिनिस्ट्री. वी हैव कंटिन्यूअस मीटिंग्स टुडे. दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी. आई हैव टेकन चार्ज टुडे एंड हेल्ड डिटेल्ड डिस्कशंस विद द सीनियर ऑफिसर्स. इट इज अ वेरी बिग डिपार्टमेंट, सो आई विल स्पीक टू यू इन डिटेल आफ्टर आई हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली.
2: बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूंगा.
1: Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. He highlighted that despite facing challenges, residents of border villages have always maintained an unwavering spirit of patriotism.
4: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है. देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है. और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के अलग अलग जिलों के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें.
1: Kargil Vijay Divas is being observed today. Entire nation salutes the indomitable courage and supreme sacrifice of our soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said today, the 26th of July is a date that does not require a calendar to be remembered. He urged citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India.
4: आज कारगिल विजय दिवस है. ये दिन हमें गर्व से भर देता है. ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था. उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ.
1: The main function of the Kargil Vijay Divas was held today at the Kargil War Memorial in Dras, Ladakh. Addressing the event, Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which he described as an integral part of India.
5: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का.
6: इंडिया हैज द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी मिस एडवेंचर ऑफ पाकिस्तान इन अ मैनर फार मोर सेवियर देन इट्स इमेजिनेशन एंड आई वांट टू गिव दिस क्लियर मैसेज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी सिंगल मिस एडवेंचर एम्ड एट इंडिया सॉवरेनिटी. फ्रेंड्स, आवर इंटेंशन इज क्लियर. देर विल बी नो टॉक्स विद पाकिस्तान एंड इफ देर आर टॉक्स दे विल ओनली बी अबाउट पीओके विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया दैट वॉज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान,
5: जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया.
1: The defense minister also highlighted the success of Operation Sindoor as a proof that India possesses the capability to respond to Pakistan's every misadventure with a severity far beyond its imagination. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at IR News Alerts, and for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR

0: बहादुर सिपाहियों को याद किया। उन्होंने शहीदों और सिपाहियों को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मादरे वतन के दिफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जनाब मोदी ने हरेक से कहा कि वो इन शहीदों को खिराज अकीदत पेश करे और एक महफूज, बासलाहियत और खुदकफील भारत की तामीर के अज़्म को मजीद मुस्तहकम बनाए। उन्होंने कहा कि भारत लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, खाह वो दिफाई साजो सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हों या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी तआवुन। जनाब मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए कहा कि 24 जुलाई एक ऐसी तारीख है जिसे याद करने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं, क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत अपनी टेक्नोलॉजिकल सलाहियतों को लगातार मजबूत बना रहा है। उन्होंने हाल ही में आईएनएस महेंद्र गिरी को भारतीय बहरिया के कामकाज में शामिल किए जाने का खास तौर पर जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि पिछले इतवार को विक्रम 1 को कामयाबी के साथ खला में भेजे जाने से हर भारतीय का सख्र फख्र से बुलंद हुआ है। कैच द रैन मुहिम के बारे में वजीर आजम ने कहा कि 4 जुलाई से एक खसूसी मुल्कगीर मुहिम जारी है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: आज मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने कहा कि हर एक भारतीय दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स की हौसला अफजाई कर रहा है। वजीर आजम ने साइंस ओलंपियाड्स के बारे में भी कहा कि इन मुकाबलों में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया। मन की बात के इस नशरिए में जनाब मोदी ने कश्मीर की रवायती वागो चटाई का जिक्र किया, जिसे सरकंडों और धान की बालियों से बुना जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से जोर देकर कहा कि वो कश्मीर की वागु चटाई को अपने घरों की जीनत बनाएं। जनाब मोदी ने हरेक से कहा कि वो भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार की गई मूर्तियों के बजाय उन मूर्तियों की पूजा करें जिन्हें गणेश उत्सव के दौरान मुल्क की अपनी मिट्टी से बनाया जाता है। कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी है। जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम की शख्सियत के कई तहरीक देने वाले पहलू हैं और एक उस्ताद का रोल उनके दिल के सबसे करीब है। जनाब मोदी ने अपने खिताब का अख्तिताम करते हुए यौम आज़ादी के बारे में इजहार ख्याल किया। उन्होंने सभी से जोर देकर कहा कि वो माई गवर्नमेंट पर हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले बेशुमार ख्यालात और तजवीज़ों से नवाजें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के नौजवानों का एक विकसित भारत की तामीर में अहम रोल है। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ एक तरक्की याफ्ता भारत की मुहिम को आगे ले जाने वाले हैं, बल्कि वो इसके सबसे बड़े मुस्तफिदीन भी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित दरख्शां गांव प्रोग्राम के शुरका से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि तरक्की याफ्ता गांव एक विकसित भारत की बुनियाद हैं और नौजवानों का इस तस्वुर को हासिल करने में एक अहम रोल है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि सरहदी गांव के बाशिंदों में चैलेंजों के बावजूद वतन परस्ती का एक पुख्ता जज्बा बरकरार रहा है।
1: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور کسی بھی مذاکرے میں پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر پر ہی توجہ مرکوز کی جائے گی. انہوں نے اسے بھارت کا ایک اٹوٹ حصہ قرار دیا جسے پاکستان نے غیر قانونی طور پر اپنے قبضے میں لے رکھا ہے.

0: ढलती रात की सहन में आप हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ और सजी है अंजुमन की महफिल।
1: गुजरता जाएगी
0: गुलाम अली की आवाज में जफर ताहिर का ये कलाम।

भूपेंद्र सिंह की आवाज में ये गजल आप सुन रहे थे। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुने चित्रा सिंह की आवाज में मुजफ्फर वारसी का ये कलाम।

मुजफ्फर वारसी का ये कलाम आप सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंजुमन। प्रसारण आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से हो रहा था।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज। न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH, DRM और वेब्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया इस वाद्य संगीत के साथ प्रतीक्षा करें।
1: अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा के आज के इस गरिमामय समारोह में हम भारत की प्रथम महिला संतूर वादिका विदुषी डॉ. वर्षा अग्रवाल जी, जो कि सूफियाना घराने की एकमात्र ऐसी भारतीय महिला कलाकार हैं जिन्हें संतूर वादन में

0: The Sufiana Gharana to achieve international acclaim in Santur playing.
1: Dr. Varsha ji ne gayan aur tabla ki shiksha matr 6 varsh ki ayu mein prarambh ki thi aur aage chalkar prakhyat tabla vadak Pandit Lalit Mahant ji se sangeet ka gahan margdarshan prapt kiya. Aap prakhyat santur vadak Padma Shri Pandit Bhajan Sopori ji ki gandabaddh shishya hai. Aap Akashwani aur Doordarshan ki टॉप ग्रेड कलाकार होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में संतूर वादन हेतु आमंत्रित की जाने वाली देश की पहली महिला संतूर वादिका का गौरव भी रखती हैं।
0: डॉक्टर वर्षा जी बिगन हर ट्रेनिंग इन वोकल म्यूजिक एंड तबला एट द मेयर एज ऑफ 6 एंड लेटर रिसीव प्रोफाउंड म्यूजिकल गाइडेंस फ्रॉम द रेनाउंड तबला प्लेयर पंडित ललित महंत जी. She is a Gandaband disciple of the eminent Santur Maestro, Padma Shri Pandit Bhajan Sopori ji. Along with being a top grade artist of All India Radio and Doordarshan, she also holds the proud distinction of being the first female Santur player of the country to be invited by the Ministry of External Affairs for Santur concerts abroad.
1: Vartaman mein Shaski Kanya Snatkottar Utkrisht Mahavidyalaya Ujjain mein संगीत प्राध्यापिका के रूप में सेवारत डॉक्टर वर्षा जी को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित शिखर सम्मान सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है.
0: करंटली सर्विंग एज अ प्रोफेसर ऑफ म्यूजिक एट द गवर्नमेंट कल्स पीजी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी उज्जैन, डॉक्टर वर्षा जी हैज बीन ऑनर्ड विद सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल एकोलेट्स, including the First Lady Award by the Honorable President of India and MP Government Shikhar Samman also.
1: Vidushi Varsha Agrawal, Bharati Shastri Sangeet Jagat ka ek aisa hi pratishthit naam hai. Santur ke shatatantri taro par unki ungliyan jab thirakti hai, to shrota bhav vibhor ho uthte hain. Apni anvarat sadhana, laykari par adbhut pakad aur pratishthit mancho par di gayi apni sumudhar prastutiyon ke madhyam se उन्होंने संतूर वादन के क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है.
0: विदुषी वर्षा अग्रवाल इज वन सच एमिनेंट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. व्हेन हर फिंगर्स डांस ऑन द 100 स्ट्रिंग्स ऑफ संतूर, द लिसनर्स आर लेफ्ट स्पेलबाउंड. थ्रू हर रिलेंटलेस डेडिकेशन, रिमार्केबल कमांड ओवर रिदम एंड मेलोडियस परफॉर्मेंसेज ऑन प्रेस्टिजियस स्टेजेस, शी हैज लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क इन द फील्ड ऑफ संतूर प्लेइंग.
1: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल अपने संतूर वादन की शुरुआत राग झंझोटी से कर रही हैं. इसमें वे आलाप, जोड़ और झाला के पश्चात विलंबित गत जो त्रिताल में है, मध्य गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित हितेंद्र दीक्षित.
0: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल इज बिगनिंग हर संतूर रिसाइटल विद राग झंझोटी. इन दिस After the Alap, Jod and Jhala, she will present a Vilambit Gat in Teen Tal, a Madhya Gat in Ek Tal and a Drut Gat in Teen Tal. Accompanying her on the tabla is Pandit Hitendra Dikshit.

0: राग झंझोटी में अभी आपने सुना विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन। विदुषी वर्षा अग्रवाल अब प्रस्तुत करने जा रही है राग किरवानी। इसमें वे आलाप के पश्चात मध्यगत जो रूपक ताल में और द्रुतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी।
1: यू जस्ट लिसन टू द संतूर रेसाइटल इन राग झंझोटी बाय विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल इज नाउ गोइंग टू प्रेजेंट राग किरवानी। इन दिस After the alap, she will present a madhyagat in rupak tal and a dhrutgat in teen tal.

0: ये था विदुषी वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत राग किरवानी। विदुषी वर्षा अग्रवाल अपने कार्यक्रम का समापन एक मिश्र राग आधारित मधुर धुन से कर रही हैं।
1: That was राग किरवानी presented by विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल is concluding her performance with a melodious धुन based on a मिश्र राग।

0: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत ये थी मिश्र राग पर आधारित मधुर धुन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित हितेंद्र दीक्षित। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was a melodious धुन based on a मिश्र राग presented by विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। Accompanying her on the tabla was Pandit Hitendra Dikshit. This program was presentation by All India Radio, Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha concludes.
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
4: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स

0: बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल हैं। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
0: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
2: Union Minister Prahlad